ये आकाशवाणी है और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं विविध भारती इंदौर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की भाद्रपद मास की 9वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 31 अगस्त वर्ष 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को है। आइए अब आरंभ करते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालिफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों

बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का ये चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज का चिंतन। चाणक्य का कथन है, जो व्यक्ति अपने मन, क्रोध और इंद्रियों पर काबू पा लेता है वो किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। अब सुनिए भक्ति रचनाएं। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब झरोका के अंतर्गत आपको बता देते हैं आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

इस झरोखा के तुरंत बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस सुंदर कांड का भाग 297। संगीत सरता सुबह 6:45 पर सुनेंगे श्रृंखला विविध भारती के खजाने से कलाकार गायक दिलशाद खां से बातचीत प्रस्तुति छाया गांगुली, इसे आप शाम को 6:45 पर सुन सकते हैं। 7:00 भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम है राही प्यार के, 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी कार्यक्रम, आलेख एवं स्वर सविता सिंह, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। यही कार्यक्रम आप दिन में पुनः 2:00 सुन सकते हैं। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक, 9:30 पर आज के फनकार, ये केंद्रित होगा अभिनेता केएन सिंह पर, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले। इस कार्यक्रम को आप रात 9:30 पर पुनः सुन सकते हैं। दिन में 10:00 पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के नाट्य निर्देशक शिक्षाविद और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD नई दिल्ली के पूर्व निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3, संपादन सहयोग मनीषा सिंह, प्रस्तुति तेजश्री कामले। दिन में 11:00 कार्यक्रम रंग तरंग, दिन में 12:00 समाचार, दिन में 12:05 पर सुनेगा कार्यक्रम यादों की महफिल, दोपहर 1:00 आप सुनिएगा कार्यक्रम सुरीला सफर, 2:15 पर सुनिए दोपहर समाचार, 2:30 पर कार्यक्रम सदाबहार नगमे, 3:00 सखी सहेली, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, दोपहर 4:00 सुनिएगा पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा में बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धुरत डर्मेटोलॉजिस्ट से यूनुस खान की बातचीत का भाग 2, संपादन प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। शाम 5:00 छाया गीत, 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम तराने नए पुराने, शाम

रात 8 बजे कार्यक्रम हवा महल में सुनिए प्रसन्न तू मैं लेखन अशरफ अली सिद्दीकी, निर्देशन मुख्तार अहमद। रात 8:15 पर सुनिएगा चित्रलोक कार्यक्रम। रात 8:45 पर समाचार संध्या। रात 9 बजे सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। रात 10 बजे कार्यक्रम छाया गीत, आलेख एवं स्वर सलमा सैयद, प्रस्तुत करता राघवेंद्र सिंह नेगी।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का भाग 297। आज आप सुनेंगे।

विभीषण के श्रीराम के शरण जाने के साथ ही शत्रु की सेना का भेद जानने को रावण ने जो गुप्तचर भेजे थे उनकी वास्तविकता वानरों से अधिक देर तक छिपी न रह सकी। वे पकड़ लिए गए। सुग्रीव ने आदेश दिया कि उनका अंग भंग करके उन्हें लंका भेज दिया जाए। नाक कान काटे जाने की बात सुनकर गुप्तचर त्राही त्राही कर उठे और वानरों को ऐसा न करने के लिए श्रीराम की सौगंध दे दी। हाथ पांव बांधकर जब उन्हें लक्ष्मण जी के सम्मुख लाया गया तो दयालु लक्ष्मण ने उन्हें बंधन मुक्त कराया। रावण के नाम एक पत्र देकर गुप्तचरों को ये मौखिक संदेश पहुंचाने को कहा कि सीता जी को सादर वापस लाकर वो श्रीराम की शरण आए, अन्यथा अपना काल आया ही समझे। लंका पहुंचकर रावण से अपनी दुर्गति और लक्ष्मण का संदेश सुनाते हुए गुप्तचर शुक ने निवेदन किया, हे नाथ, वानर सेना का विवरण तो 100 करोड़ मुखों से भी करना संभव नहीं है। जिसने लंका जलाई और आपके पुत्र अक्षय कुमार का वध किया उसका बल तो अन्य वानरों की तुलना में कुछ भी नहीं है।

0: गीत सरिता
1: मित्रों नमस्कार। विविध भारती के खजाने से आज हम ले आए हैं सुप्रसिद्ध गायक मोहम्मद दिलशाद खान से कांता गुप्ता की बातचीत। ये बातचीत वर्ष 1985 में रिकॉर्ड की गई। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। आइए सुनते हैं।
2: ये हमारा सौभाग्य है कि इस समय हमारे स्टूडियो में मोहम्मद दिलशाद खान विराजमान हैं और संगीत सरिता के माध्यम से हमें उनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। नमस्कार दिलशाद खान साहब।
3: नमस्कार।
4: हाँ तो दिलशाद खान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि संगीत के प्रति आपका ये झुकाव कब से हुआ और कैसे हुआ?
3: मेरी जिंदगी में गाने बजाने की शुरुआत पहले हुई है, यानी 3 साल की उम्र से। हमारी शुरुआत हुई तबले पे पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी के हाथ में। बाद में हमारे घर में जो माहौल था वो गाने बजाने का माहौल, यानी बड़े गुलाम अली खान साहब, अमीर खान साहब, विलायत खान साहब, अलाउद्दीन खान साहब, हफीज अली खान साहब और हमारे वालिद साहब बहुत बड़े कनौशियर थे, उसी से ये जो शौक कहिए या पैशन कहिए इसकी शुरुआत वहां से है
2: जी।
3: और बाद में वोकल म्यूजिक, शास्त्रीय गायन, ख्याल गायकी में
2: मुड़ गए आप।
3: मुड़ गए बड़े गुलाम अली खान साहब की और सलामत अली खान साहब का गाना सुनने के बाद मुझे बहुत ही इंस्पिरेशन मिला था
2: जी।
3: और 1962 से हमारे जिंदगी में मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी तारीफ या इससे बढ़ के कोई मौका नहीं है कि मुझे पद्मश्री उस्ताद फैयाज अहमद नियाज़म खान साहब, जो किराने घराने के खलीफा हैं
2: जी,
3: उनकी शागिर्दी मुझे मिली और हमारे जिंदगी में ये सबसे फख्र की बात है
2: कि आप उनके शागिर्द हुए।
3: उन्होंने मुझे सारे गायकियों, जितने घराने में अच्छी अच्छी चीज है उनको किस तरीके से हमारे गले में बैठाना है, वो सब उन्हीं की देन है।
2: निशाद साहब, मैं ये अभी जानने ही वाली थी, आपसे पूछने वाली थी कि आपने घराने का जिक्र किया था और आपकी गायकी में एक ही घराने की नहीं बल्कि कई घरानों का असर मिलता है, तो ये आप क्या घराने में विश्वास नहीं करते या जो भी घराने की अच्छी चीज आपको लगी वो अपने आप?
3: बहुत सही कह दिया आपने। मैं ये मानता हूँ कि ये ख्याल है या ठुमरी है या ध्रुपद है, धमार है, मालकोस में पंचम नहीं लगाना है, ये सब घराने की बात है। जो स्टैंडिंग रूल्स जो होते,

0: तो घराने में जो बात बन जाती है वो कुछ स्पॉन्सरशिप की बात होती है, यानी महाराजा वगैरह
1: जैसे आप
0: किसी को साथ हाँ। रख ले, वो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो वो घराना बना लेता है। फिर साहब वो जहाँ रहते हैं उस जगह के नाम से दूसरा घराना तैयार हो जाता है। घराना जो है वो कलाकार की जो खूबी है और जो कमी है दोनों मिला के घराना बनता है।
1: गायकी में जिस सप्तक तक आप पहुँच जाते हैं वो आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है।
0: मालिक की मेहरबानी है सर।
1: और इसका राज क्या है? जो
0: राज ये है कि गुलाम अली खान साहब को मैंने 4 सप्तक गाते हुए सुना है। वो तार अति तार के मध्यम तक वो गाते थे
1: जी।
0: और तार तारा उदारा मुदारा और मुदारा के बाद भी अति मंद सप्तक कहते थे। एक खास सिस्टम स्टाइल है और कुछ टेक्निक है।
1: आप अपने ये गायन के सिलसिले में आप बहुत जगह गए हैं, हिंदुस्तान से बाहर गए हैं, जगह जगह आपके हिंदुस्तान में भी कंसर्ट हुए हैं लेकिन बाहर भी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ के जो ऑडियंस हैं, वहाँ के जो श्रोता हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं हमारे हिंदुस्तानी संगीत को सुन के? कुछ आपको फर्क लगा यहाँ के श्रोताओं में और विदेशी श्रोताओं में?
0: बहुत फर्क है। आप सुन के शायद चौंक जाएंगे कि मुझे कोई आकर पूछा कि साहब आप गौण मल्हार गा रहे थे, नट मल्हार गौण मल्हार के गंधर्व में अच्छा, क्या फर्क है? और मैं मालकोंस गाते वक्त जिसको स्वर भेद कह रहे हैं, अनोखा एक स्टाइल है गाने का, वो स्वर भेद में सरगम कर रहा था
1: जी।
0: और वो ऑडियंस में से आके उठ के कोई बाद में मुझसे मुलाकात करके बताया कि साहब आप स्केल चेंज करके गा रहे थे
1: पांचों
0: राग। तो मैं सोचता हूँ कि आप फॉरेन यानी विदेश या देश मत बोलिए, सिर्फ ये बोलिए जानकारी ऑडियंस में है और नहीं है बस।
1: हाँ, धीरे धीरे ये हम सभी जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि लोगों की कम हो रही है। जो आम जनता है उसकी रुचि उतनी नहीं है शास्त्रीय संगीत के प्रति। इसकी वजह क्या है और अगर वजह जो भी है उसमें हम कैसे उसके उनकी रुचि में सुधार ला सकते हैं?
0: अच्छा गाना समझने के लिए जानकारी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: और लव्ज ही इसका नाम ही है क्लासिकल म्यूजिक, यानी इट इज हैज गॉट अ क्लास बाय इटसेल्फ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मास के लिए नहीं है, मास अगर उसको समझ सकते हैं तो ही कैन बिकम ऑल्सो ए क्लास।
1: सही बात कही आप।
0: और क्लासिकल म्यूजिक अच्छी हो या बुरी हो तो ऑडियंस को जैसा गाना बजाना दिया जाएगा
1: वो वैसा ही
0: वही आदत पड़ जाएंगी उनकी।
1: एक नवीनता आपने दी है ऑडियंस को, सुनने वालों को, और वो नवीनता है जुगलबंदी के रूप में। सभी जानते हैं कि आपकी बेगम साहिबा श्रीमती जी हैं, परवीन सुल्ताना जी जो कि बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट हैं, उनके साथ शास्त्रीय संगीत में आपने पहली ये जुगल जोड़ी बनाई है। तो ये इसके पीछे मकसद क्या था आपका? बिल्कुल नवीन चीज लगी है ये।
0: पहले ये कहूंगा कि ये इंस्पिरेशन मुझे मिला है पंडित रविशंकर उस्ताद अली अकबर खान साहब की जोड़ी से। सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि जो जुगलबंदी दोनों गाएंगे वो एक उस्ताद के शागिर्द हो या उस्ताद शागिर्द हो तभी गा सकते हैं। यानी एक ही घराने की तालीम अगर दोनों के पास ना हो तो जुगलबंदी नहीं होती है। इत्तेफाक से परवीन हमारी मेरी शागिर्द है और उसे हमारे स्टाइल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। रागियत सच्चाई को कायम रखते हुए भी
1: जी
0: हाउ यू कैन एक्सप्लोर, आप किस तरीके से उसको नए ढंग से सवाल जवाब के तौर पे, यानी अगर एक साथ सवाल कर रहे हैं दूसरे से जवाब मिल रहा है उसी तरीके से। और हमारे उस्ताद ने खास तौर पे फयाज अहमद खान साहब के एक सिस्टम है भड़क के या सरगम के जिसमें सवाल जवाब आता है कि सबसे अच्छा जुगलबंदी गायन मैंने हमारे उस्ताद से सुना है, आप लोग सुने होंगे फयाज अहमद खान साहब के। तो उस जोड़ी से ही मुझे सब कुछ स्टाइल के बारे में जानकारी मिली है।
1: अच्छा, अभी एक सवाल और करना चाहेंगे।
0: हाँ जी।
1: आपने भी जहाँ तक मेरा ख्याल है फिल्मों में गाना गाया है।
0: बस क्लासिकल म्यूजिक के तौर पे
1: कुछ गाया है
0: कुछ,
1: तो अगर आपसे कहें कि सुगम संगीत फिल्मों में गाएं तो आपका ये गाना चाहेंगे? मेरा मतलब
0: गाना चाहेंगे जरूर गा सकते हैं अगर सबसे बड़ी बात हो गाना मुझे पसंद होना चाहिए
1: जी।
0: और आप शायद जानते हैं कि मैंने सिर्फ गाया ही नहीं, मैंने हाल ही में एक बहुत अच्छी आर्ट फिल्म आश्रय जो कि मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में फिल्म चुनी गई है
1: जी,
0: उसकी म्यूजिक मैंने दी है, उसमें कुछ गजलों हैं।

0: गवाई मैंने
1: गाय नहीं
0: गाय भी है।
1: अच्छा, वही मैं जानना चाह रहा
0: हूँ। सबसे बड़ी बात यह है
1: जी
0: कि वो गजल हो, ठुमरी हो, भजन हो, सुगम संगीत हो, ध्रुपद हो, धामार हो, मुझे ये जरूर पता है कि मुझे 12 स्वर चाहिए, मुझे कर्ण मुड़की सपाट गले का कंट्रोल चाहिए जो मैं किसी भी जगह जैसी मर्जी इस्तेमाल कर सकता हूँ।
1: बस मैं इसी
0: के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप कोई से भी गाने बजाने की स्टाइल कहिए उसके लिए क्लासिकल म्यूजिक की तालीम बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, मैं आपसे यही इत्तेफाक रखती हूँ इस मामले में तो, और ये जान के बेहद अच्छा लगा क्योंकि संगीत तो संगीत है। बातें तो आपसे और भी बहुत सी करने चाह रहे थे लेकिन हमारी जो घड़ी है ना ये बिल्कुल अब इजाजत नहीं दे रही है हमें, तो इसलिए आपसे कहना होगा नमस्कार और बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुनने वालों से भी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सुविख्यात गायक मोहम्मद दिलशाद खान से कांता गुप्ता की बातचीत। अब सुनते हैं मोहम्मद दिलशाद खान का गाया राग ललित।

ये था मोहम्मद दिलशाद खां का गाया राग ललित। आज विविध भारती के खजाने से हम चुन लाए थे इनसे की गई बातचीत और इनका गायन। इसके साथ ही आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी को मंजरी वर्मा का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस गीत के साथ।

0: अभी आपने सुना महल फिल्म का गीत राजकुमारी और जोराबाई की आवाजों में। रचना थी नक्षब जराचवी और धुन बनाई थी खेमचंद प्रकाश ने।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

अभी आपने सुना फिल्म बेकसूर का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़ में। रचना थी एहसान रिजवी की और धुन अनिल बिस्वास की।

0: अभी आपने सुना फिल्म जिंदगी का गीत, केएल सैगल की आवाज थी, रचना केदार शर्मा की, धुन पंकज मलिक की।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
1: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
1: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: बोले बिसे गीत में इस समय हो चला है एक अंतराल का, तो लेते हैं एक अंतराल।

0: जाने वाले पौधे वायु प्रदूषण को कम करने और शहर को हरा भरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: अभियान के दौरान नागरिकों ने पौधे के संरक्षण और पेड़ बनाने का संकल्प भी लिया। इतना ही नहीं, पौधे के साथ सेल्फी लेकर इंटरनेट मीडिया पर साझा कर उन्होंने अन्य लोगों को भी अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर।
2: प्रदेश में 12वीं में पहली बार 75% या उससे ज्यादा अंक लाने वाले करीब 1,22,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 सितंबर को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के खातों में ये राशि ट्रांसफर करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव 2 सितंबर को ग्वालियर में बलराम जयंती महोत्सव सहकारी किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। उज्जैन में सावन भादौ मास की परंपरा के तहत भगवान महाकाल की 5वीं सवारी आज निकलेगी। सवारी में बाबा महाकाल 5 अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे और शहर का भ्रमण कर अपनी प्रजा का हाल जानेंगे। भोपाल की नरेला विधानसभा में 18 साल से लगातार हो रहा रक्षाबंधन महोत्सव आज से शुरू होगा। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के नेतृत्व में 17 वार्डो में होने वाले इस आयोजन में लाखों बहनों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत ने महिला टी20 एशिया कप 2026 में शानदार शुरुआत करते हुए थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया। दुबई में पहली बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 9

विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत नगर निगम के सिविल लाइन स्थित जोन कार्यालय परिसर में शिविर आयोजित किया गया। कटनी में सनातन संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बारडोली उत्सव समिति द्वारा 2 दिवसीय कजलिया मेले का समापन हुआ। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आगरमालवा में कल कबड्डी खेल के खिलाड़ियों के बीच मैत्री मैच आयोजित किया गया। अशोकनगर में स्वास्थ्य विभाग बैक्टीरियाजनित रोगों, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव और नियंत्रण के लिए आवश्यक सलाह दी है। धार में नागरिकों को शुद्ध गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में सघन निरीक्षण और जांच अभियान चलाया जा रहा है। झाबुआ में गवली समाज द्वारा पारंपरिक रूप से भुजरिया का पर्व मनाया गया। शिवपुरी में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती कैंप आयोजित किए जाएंगे। बालाघाट के बिरसा विकासखंड के बीमारी प्रभावित ग्राम कुंडेकसा, कुरका और बुंदारी सहित आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर स्वास्थ्य सर्वे और उपचार की कार्रवाई लगातार जारी है। बैतूल में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान और यात्रा निकाली गई। अनूपपुर में आगामी 3-4 दिन भारी बारिश की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सीधी जिले में लगातार हो रही वर्षा और बाढ़ को देखते हुए कलेक्टर ने जिले में इससे निपटने की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर। प्रस्तुति है शिखा साहू की।

0: Good morning, good morning,
1: good morning, Indore.
0: Good morning.
2: कृष्ण जन्माष्टमी विशेष इस कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर में सभी श्रोताओं का स्वागत है। स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त शिखा का नमस्कार। जय श्री कृष्णा।

कहते हैं ना श्रोताओं कि कृष्ण को किसी एक रूप में बांध पाना संभव नहीं है। कभी वो नटखट बालक बनकर यशोदा की उंगली पकड़ते हैं, कभी वृंदावन की गलियों में माखन चुराते हैं और कभी बंसी की धुन से पूरे गोकुल को अपने प्रेम में बांध लेते हैं और कभी महाभारत के रण में सारथी बनकर जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा देते हैं। शायद इसीलिए तो कृष्ण के लिए

जी हाँ श्रोताओं, कान्हा की पहचान तो उसकी बंसी से है। वो बंसी जिसकी धुन सुनकर सारा गोकुल ठहर जाता था, गोपियां अपने काम भूल जाती थी और वृंदावन का कण कण जैसे कृष्णमय हो जाता था।

कृष्ण की बंसी की इस मधुर तान को सुनकर मन में एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है उस कान्हा में जो हजारों साल बाद भी उसका नाम लेते ही मन में प्रेम उमड़ आता है। शायद इसीलिए क्योंकि कृष्ण सिर्फ मंदिरों में नहीं मिलते, कभी वो किसी की मुस्कान में मिल जाते हैं, कभी किसी अनजान की मदद में मिल जाते हैं, और कभी किसी अपने के प्रेम में, तो कभी उस इंसान के रूप में जो हमारी मुश्किल घड़ी में बिना कुछ कहे हमारा हाथ थाम लेता है, और यही आकर कृष्ण की भक्ति एक खूबसूरत एहसास में बदल जाती है।

श्रोताओं, कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भगवान को केवल ढूंढना मत, उन्हें पहचानना सीखो, क्योंकि कृष्ण कभी बंसी बजाते हुए सामने आते हैं, तो कभी गीता सुनाते हुए, तो कभी बिल्कुल साधारण इंसान बनकर हमारी जिंदगी से गुजर जाते हैं। तो आइए इस जन्माष्टमी पर हम भी अपने मन के द्वार खोलें, उस प्रेम को महसूस करें, उस भक्ति को महसूस करें, उस कृष्ण को महसूस करें जो हर रूप में हमारे आसपास है। क्या पता आज के इस कार्यक्रम के किसी गीत में, किसी सुर में, किसी शब्द में हमारा कान्हा मिल जाए। तो आइए सुरों के साथ, भक्ति के साथ, कृष्ण के नाम के साथ शुरू करते हैं आज का ये विशेष कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंदौर। सभी को एक बार फिर से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।

0: सबकी लाज।
1: श्रोताओं, कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक और धार्मिक चरित्र नहीं है, बल्कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में प्रेम, कर्म, ज्ञान और भक्ति के गहरे दर्शन के प्रतीक है। और कृष्ण की इसी चेतना को आधुनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास करती है संस्था इस्कॉन। जी हाँ श्रोताओं, आज कृष्ण भक्ति और कृष्ण के आदर्शों को विश्व स्तर पर प्रचारित करने में इस्कॉन को प्रमुख रूप से जाना जाता है, एक अग्रणी संस्था के रूप में माना जाता है। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में इस्कॉन मंदिर इंदौर से प्रभु जी जगत जीवन दास जी पधारे हैं, तो आइए उनसे कृष्ण दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है प्रभु जी आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।
2: हरे कृष्णा। धन्यवाद शिखा जी।
3: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके आकाशवाणी प्रबंधन का, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया, जिनके माध्यम से आज हम समस्त श्रोताओं को जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर हृदय पूर्वक आमंत्रित करते हैं।
2: और आपके लिए बधाई, 90 वर्ष जो आकाशवाणी ने पूरे किए हैं।
3: आज इस्कॉन के माध्यम से जिसके संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी हैं, लगभग पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन, गीता भागवत की शिक्षाएं, सनातन वैदिक धर्म की शिक्षाएं प्रसारित हो रही हैं। भारत के हृदय मध्य प्रदेश के स्वच्छतम शहर इंदौर में
2: श्रील प्रभुपाद जी के वरिष्ठ शिष्य श्रीमान महामन प्रभु जी, जो की इस्कॉन ब्यूरो के वाइस चेयरमैन है
1: जी,
2: इस्कॉन के यहाँ के इंदौर के प्रेसिडेंट हैं, और लगभग 50 से ज्यादा वर्षों से इस्कॉन में जो है अपनी सेवाएं मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हम भी इस्कॉन इंदौर में सेवाएं दे रहे हैं।
1: प्रभु जी, कृष्ण केवल मंदिरों में विराजमान भगवान नहीं है, वे हमारे जीवन के उन प्रश्नों का उत्तर भी

0: है जिसका समाधान हम बाहर खोजते खोजते थक जाते हैं। तो आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के बहाने कृष्ण को थोड़ा और समझने की कोशिश करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों में तो हम कृष्ण जन्म करते हैं, घरों में कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जाता है, हम हमारे मन के भीतर कृष्ण का जन्म कैसे करें, हमारे मन के भीतर कृष्ण कैसे आए।
1: बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली जन्माष्टमी जो उत्सव है, उत्सव शब्द का अर्थ है उन्नत आसव, उच्च रस, और भक्ति का जो रस है वो उच्चतम रस है। कि हर जीवन में हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कोई बच्चा सिलेक्ट होना चाहता है, कोई प्रमोशन पाना चाहता है, कोई खेल की दुनिया में हो, पढ़ाई की दुनिया में हो, तो उसके लिए डूज एंड डोंट्स फॉलो करने पड़ते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं,
0: क्या नहीं करना,
1: विधि विधान। तो उसके लिए जैसे कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, उसको बोलते हैं मैनुअल या निर्देशिका, यूजर गाइड। तो इस प्रकार से जब भगवान ने संसार को बनाया तो उसका मैनुअल जो गाइड है वो वेद शास्त्र है
0: जी।
1: और उसका समराइज जो फॉर्म है, जो कुंजी जो गाइड बोल सकते हैं, दैट इज भगवत गीता
0: जी।
1: है ना, 700 श्लोक 18 अध्याय, उसमें सब समस्याओं का ही समाधान भी है, साथ साथ में कैसे हम भगवान को अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। वास्तव में बाह्य रूप से तो हम उत्सव मना रहे हैं, लेकिन कैसे भगवान को भी अपने अंदर मन में स्थापित कर सकते हैं, हमारे पहले हमारे घर को मंदिर कैसे बना सकते हैं। मंदिर या कोई भी स्थान है जहां पर इन्वाइट करते हैं हम किसी गेस्ट को, तो स्वच्छ रखना पड़ता है। इसी अगर भगवान को हृदय में आमंत्रित करना है तो उसको हृदय को शुद्ध भी करना पड़ेगा, तो उसकी प्रक्रिया का भी भगवान ने गीता में बताया है
0: जी। जी, अब चूंकि आज आप इस्कॉन की तरफ से हमारे श्रोताओं से बात कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि किस तरह के आयोजन इस बार वहाँ होने वाले हैं, हमारे जो श्रोता है वो किस तरह से दर्शन लाभ ले सकते हैं।
1: बहुत अच्छा अवसर है ये भगवान की कृपा प्राप्त करने का सभी के लिए। ऐसे तो भगवान हमेशा कृपालु है, हमेशा कृपा रहती है, लेकिन देखते हैं ना, जब आपका जन्मोत्सव होता है, आपके कुछ विवाह की सालगिरह होती है, तो उस दिन व्यक्ति विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं
0: जी।
1: तो इसी प्रकार जन्मोत्सव के दिन जो है भगवान की, कृष्ण की, राधा रानी की, भगवान के भक्तों की विशेष कृपा अनुकंपा होती है। जैसे कभी ऑफर चलते हैं ना, स्कीम चलती है, ऑफर चलते हैं, तो ये उत्सवों की जो भार है भी जो है 23 अगस्त से बहुत विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। हमारा 23 से लेके 28 तारीख तक जो है झूलन यात्रा हुई, जहां पर भगवान को, श्रीमती राधा रानी को, कृष्ण को झूले में भक्त लोग ले जाते हैं, झुलाते हैं। उसके पश्चात जो है 28 अगस्त को जो है बलराम पूर्णिमा, जिसको रक्षाबंधन बोलते हैं
0: जी।
1: तो मैं सामान्यतः लोगों को बोलता हूँ कि अच्छा है रक्षाबंधन मनाना चाहिए, लेकिन रक्षा करने वाले तो भगवान ही है, बाकी सब बंधन करने वाले हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो संसार के बंधन से छूटना है तो बलराम की कृपा प्राप्त करनी पड़ेगी। बलराम जी आदि गुरु हैं, इसलिए भगवान के आने के पहले बलराम आते हैं
0: जी बिल्कुल। हर षष्ठी के रूप में हम उनका जन्मदिन मनाते हैं।
1: इवन देवकी के गर्भ में भी भगवान के कृष्ण के प्रकट होने के पहले बलराम जी आते हैं, एक स्थान तैयार करने के। तो बलराम पूर्णिमा का आयोजन किया गया, बहुत सुंदर बाल कलाकार जो है मधुकंठ प्रभु जी जो वृंदावन में है, उनकी बहुत सुंदर कथा का आयोजन हुआ, हजारों भक्तों ने इसका लाभ लिया। और वो विश्व के सबसे कम उम्र के इस्कॉन में जो कथाकार है, बहुत मधुर कथा की उन्होंने। आने वाले 3 से लेकर 4 सितंबर तक विशेष तौर से सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल एक्टिविटीज जो है, उसमें भारतीय संस्कृति और गौड़ी वैष्णव परंपरा के अनुसार नृत्य है जो है, ड्रामा है, जो भगवान की लीलाओं पर आधारित जो नाटिकाएं हैं वो सब प्रस्तुत होने जा रही हैं। उसमें भी यदि आपके कुछ श्रोता इच्छुक हैं तो ये सब के लिए बहुत सुंदर अवसर है, संपर्क कर सकते हैं। 4 सितंबर जो है, जो कि हम सबके लिए मोस्ट अवेटेड भगवान का प्राकट्य उत्सव है, जो इसको समझ लेता है, इसलिए गीता में भगवान बोले हैं 4वें अध्याय में, जन्म कर्म च मे दिव्यम यौवन योवेति तत्वतः त्यक्त्या देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म जो दिव्य है उनको समझ लेता है ना, उसको संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता
0: जी।
1: तो इसीलिए जो बहुत सुंदर अवसर है ये जन्माष्टमी, इसमें लगभग हमारे मंदिर में 1,00,000 वर्ग स्क्वायर फीट का तो पंडाल बनाया गया है
0: जी।
1: और दिन भर कार्यक्रम चलेंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कीर्तन, सारे भक्तों के लिए, सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था पूरा 2 दिन तक जो है, और उसके अगले दिन भी, क्योंकि जन्माष्टमी के अगले दिन नंदोत्सव होता है भगवान गोकुल पहुंच जाते नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
0: जी जी।
1: तो नंदोत्सव, नंदोत्सव के दिन ही श्री प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य उनका आविर्भाव उसी दिन है। तो उस दिन भी जो है सारे दर्शनार्थियों के लिए दर्शन की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
2: और 6 तारीख को रविवार को इंदौर शहर में पहली बार जो है नरसिंह महायज्ञ भक्ति विघ्न विनाश के लिए विश्व के कल्याण के लिए

0: जयंती के लिए आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं।
1: क्या बात है प्रभु जी, बहुत अच्छा ये अवसर है। आपने बताया कि इतने सारे कार्यक्रम अभी वहाँ होने बाकी है, तो हमारे सभी श्रोता जो है वहाँ जाकर दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर राधा कृष्ण की झांकी बनी हुई है, प्रसाद की सुंदर व्यवस्था है, और इन सुंदर व्यवस्थाओं के बीच कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो एक यादगार अनुभव होगी सभी के लिए। प्रभु जी, मैं यहाँ जानना चाहती हूँ कि जब हम मंदिर जाते हैं, तो हम मंदिर गए, हमने ईश्वर का दर्शन किया, पर हम ईश्वर के किस भाव को लेकर वापस आए, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे कि हम जब मंदिर जाते हैं तो हमें वहां से लेकर क्या आना चाहिए।
2: बहुत अच्छा प्रश्न है शिखा जी। भगवान गीता में बोले हैं कि चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं
1: जी।
2: चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतो नर्जना, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। हे भरतवंशी, आर्त मतलब जो दुखी है, अर्थार्थी मतलब जिसकी इच्छाएं हैं, जिज्ञासु जो ये जानना चाहता है कि सृष्टि सब कुछ कैसे चल रहा है, और ज्ञानी जो ऑलरेडी जानता है कि सब भगवान का आयोजन है, लेकिन उन सब के अंदर क्या होना चाहिए, सुकृति, उसके इतने अच्छे पुण्य कर्म फल होते हैं तब वो व्यक्ति मंदिर तक आ पाता है। तो कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति मंदिर नहीं आ सकता, भगवान की कृपा है, साधु महात्माओं की कृपा, उसके वरिष्ठों पूर्वजों की कृपा है, उसके पूर्व जन्म के कर्म है, तब वो मंदिर आ पाएगा। तो वास्तव में भगवान के दर्शन के पहले हमें, हमारे दिमाग में कुछ दर्शन, कुछ ज्ञान होना चाहिए, और भगवान से क्या मांगना चाहिए, कैसे कैसे मनोभाव में प्रार्थना करना चाहिए, भगवान को हमारे हृदय में लेके जाएं, वो मैसेज, वो संदेश लेके जाएं। क्योंकि कलयुग में जो है बताते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान जो है अपने नाम के रूप में, अपनी कथा के रूप में प्रकट हुए हैं
1: जी।
2: है ना, तो वो हम लेके जा सकते हैं। छवि मोबाइल में छवि लेके जाना वो ठीक है, लेकिन वो हृदय में छवि लेके जाना चाहिए, कुछ ऐसा लेके जाए जिससे जीवन में कुछ परिवर्तन हो। वहां पर जाके भगवान के सामने प्रार्थना करें, और हमारी जो कमियां हैं, जो अवगुण हैं, उनको हम छोड़ें, कुछ वहां से कोई पॉजिटिव सद्गुण वहां से लेके, और कमिटमेंट लेके जीवन में अपने परिवर्तन के साथ साथ समाज के लिए कुछ करने के लिए भी जो है ऐसा कमिटमेंट लेके आना चाहिए
1: जी। बिल्कुल, हम कृष्ण के चरणों में अपने अवगुण को छोड़ सकते हैं, हम अपनी चिंताओं को छोड़ सकते हैं, चिंता को छोड़े, चेतना को ले आए।
2: बहुत अच्छा, बहुत
1: जी। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में गीता का ज्ञान दिया, पर आज के मनुष्य की अगर हम बात करें ना, तो हमारी युद्ध भूमि अलग है, हमारे जीवन में तनाव है, प्रतिस्पर्धा है, असफलता है, और भविष्य की चिंता है। तो ऐसे समय में कृष्ण का कौन सा संदेश प्रभु जी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा?
2: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, बहुत ही प्रासंगिक जो है आपका प्रश्न है, विशेष तौर से आज की परिस्थितियों को देखते हुए समाज में। तो गीता में है 18 अध्याय है, मैं बहुत कुछ सीखने को है, लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुए जो दो चीजें जो हम आसानी से जीवन में उतार सकते हैं, पहला भगवान बता रहे हैं जो 6वें अध्याय में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान बोल रहे हैं यदि आहार विहार भोजन आमोद प्रमोद यदि वो संयमित करता है तो अपने दुखों को काम कर सकता है। दूसरा, जब हम अनिर्णय की स्थितियां बनती हैं हमारे जीवन में, संशय होता है, असमंजस की स्थितियां होती है, उसके लिए 10वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तदामि बुद्धि योगम तम एन मामेव अपयान्ति ते। जो प्रीतिपूर्वक मेरा स्मरण करता है नियमित रूप से, मैं उसको बुद्धि देता हूँ, बुद्धि योगम सदबुद्धि देता हूँ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, बुद्धि और विवेक, इससे सही समय पर सही निर्णय दे पाए
1: जी। यानी भगवद गीता का पठन और श्रवण हमारे मानसिक द्वंद्व से हमें अलग कर सकता है। वाकई श्रोताओं कहते हैं कि जब आप अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर भी आपके संघर्ष को आशीर्वाद में बदल देता है। तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी आपसे बात करके, और अब चूंकि आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो मैं आपसे कोई एक गीत जानना चाहूंगी जो आज हम आपकी तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवाए, तो कोई बढ़िया से गीत बताइए
2: जी। शिखा जी, वैसे तो काफी इस कौन जगत में आने के बाद, क्योंकि हमारे भक्ति में ही इतना आनंद है कि बाह्य आनंद के लिए इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है, कई वर्षों से गाने नहीं सुने, मूवी नहीं देखी, लेकिन जो है काफी पहले एक बहुत अच्छी फिल्म रही है पूरा पश्चिम, तो उसका एक गाना है, वो मुझे बहुत इसलिए पसंद है कि ये जो गाना है वो व्यक्ति को अध्यात्म की तरफ आकर्षित करता है। मतलब ये एक भगवान का, परमात्मा का, जीवात्मा के प्रति एक संदेश है
1: जी,
2: कि जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम, क्योंकि भगवान का दरवाजा हमेशा उस जीवात्मा के लिए खुला है
1: जी। जी जी, बहुत सुंदर गाना, और आपके भावों ने, आपके नजरिए ने इस प्रेम गीत को भक्ति गीत बना दिया। वाकई ये कहा भी जाता है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो

0: श्रोताओ, कृष्ण हर जगह विराजमान है। मथुरा में वो कन्हैया है, बाकी बिहारी है, तो वही राजस्थान में श्रीनाथ जी और सांवरिया सेठ है। गुजरात के द्वारिका में द्वारकाधीश विराजमान है, तो डाकोर में रणछोड़ राय भी तो बैठे हुए हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, तो वही महाराष्ट्र के पंडरपुर में विट्ठल बनकर भक्तों का साथ दे रहे हैं। तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं पंडरपुर, जहां कृष्ण विट्ठल विठोबा और पांडुरंग के नाम से जाने जाते हैं। और इस यात्रा में हमारे साथ हैं शहर के जाने माने चित्रकार और छायाकार सचिन मतकर जी। तो सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: शिखा जी नमस्कार।
0: श्रोताओ, सचिन जी को आज हमने उनकी एक उपलब्धि के संदर्भ में इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। तो सचिन जी से ही जानते हैं कृष्ण के एक अत्यंत पूजनीय स्वरूप विट्ठल से जुड़ी हुई उनकी इस उपलब्धि के बारे में।
1: वैसे तो मैं प्राइवेट जॉब सर्विस करता हूँ पीतमपुर में, पोस्ट मोटर्स में एज ए सीनियर मैनेजर, और मेरा शौक जो है फोटोग्राफी वाइल्ड लाइफ की तरफ ज्यादा रहा है। पर मुझे जो धार्मिक प्लस कल्चरल जो प्रोग्राम होते हैं वो भी मुझे कैप्चर करने में बहुत आनंद होता है। जैसे मैंने पहले खजुराहो महोत्सव भी करा है, भगोरिया भी करा है, और अब की बार इस साल में जो पंडरपुर की वारी जो करके आया हूँ उसमें तो कुछ अलग ही आनंद आया है।
0: जी सचिन जी, पंडरी की वारी, आपने इस यात्रा का जो खूबसूरत चित्रण किया है अपने चित्रों के माध्यम से, अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से, उसकी चर्चा आज पूरे शहर में हो रही है। तो हम जानना चाहते हैं पंडरी की वारी इस यात्रा के बारे में और आपके अनुभवों के बारे में।
2: शिखा जी, पंडरी की वारी एक अद्भुत जीवंत और सामूहिक यात्रा है। इसे तीर्थ यात्रा कहना शायद कम होगा, क्योंकि यह भक्ति, अनुशासन, समानता, सेवा और संत परंपरा का चलता फिरता उत्सव है। पंडरपुर का विट्ठल भगवान कृष्ण का ही एक स्वरूप माना जाता है। वारकरी सुंदर फूलों से सुशोभित पालकियों के साथ चलते हैं, जिसमें संतों की पादुकाएं रखी जाती है, और सभी विट्ठल विट्ठल विट्ठल जय घोष और भजन गाते हुए चलते हैं। शिखा जी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यह यात्रा इतनी सुंदर, नियमबद्ध और अनुशासन के साथ की जाती है कि लगता है कि हमारे साथ खुद भगवान विट्ठल हमारी इस यात्रा में हमारी अगवानी कर रहे हैं। हर वर्ष लाखों वारकरी पैदल चलकर पंडरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए जाते हैं। वारी की यह प्रसिद्ध यात्रा आषाढ़ी एकादशी के दिन पंडरपुर पर समाप्त होती है। वारकरी संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जी की पादुकाओं वाली पालकियों के साथ पंडरपुर की ओर बढ़ते हैं।
0: बहुत ही सुंदर आपने वर्णन किया इस यात्रा का, पंडरपुर का। सचिन जी, जब आपने इस यात्रा को

0: भविष्य में आगे आपकी क्या योजना है?
1: आगे भविष्य की बात करूं तो मेरे मन में है कि जिस तरह से पंढरपुर की वारी इस यात्रा में आध्यात्मिक पक्ष को इंदौर वासियों को दिखाने की कोशिश की, इसी तरह से और भी धार्मिक यात्राएं करूं और उन भक्तों की भक्ति को सीधे लोगों तक पहुंचाऊं अपनी फोटोग्राफी के जरिए, अपनी चित्रकारी के जरिए।
0: आपको बहुत सारी शुभकामनाएं सचिन जी, और मैं यहाँ पर श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि सचिन जी की चित्रकारी और फोटोग्राफी के लिए इन्हें बहुत सारे सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, और आज की हमारी बातचीत जिस विषय पर हुई है यानी पंढरी की वारी, उससे संबंधित चित्रों को आप शहर के हर बड़े मंदिर में और कला वेदिकाओं में देख सकते हैं। तो सचिन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब मैं जानना चाहती हूँ आपकी पसंद का कोई बहुत खूबसूरत सा गाना जो आज हम आपकी तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवाए।
1: मुझे पुराने गाने ज़्यादा पसंद है। पुराने गानों में भी मुझे मुकेश की आवाज़ में जो गाया हुआ गाना है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा।
0: बहुत खूबसूरत गाना है, लीजिए सुनिए हमारे श्रोताओं के साथ अपनी पसंद का ये गाना आपके अपने रेडियो सेट पे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी।

0: श्रोताओं, कृष्ण तो सबके हैं और सबका उनको देखने का नजरिया भी अलग है, पर जो व्यक्ति अपने नजरिए को, अपने भावों को अपने रंगों के माध्यम से कैनवास पर उतार सके, उन कलाकारों पर तो हमें लगता है ईश्वर की असीम अनुकंपा होती है। कुछ ऐसे ही कलाकारों को इस बार जन्माष्टमी पर एक खास अवसर मिल रहा है कि अपने कृष्ण चित्रों को इंदौर के प्राचीनतम गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी के दिन प्रदर्शित कर सके। तो आइए इस विषय पर, इस आयोजन के बारे में बात करते हैं इस आयोजन के आयोजक पुष्कर सोनी जी से। तो पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
1: वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। बेहद खुश हूँ और उत्सुक हूँ आपके सवालों की।
0: जी बिल्कुल। पुष्कर जी, सबसे पहले तो बताइए कि श्री कृष्ण ही क्यों, और इस आयोजन के पीछे आपकी सोच क्या रही?
1: कृष्ण ही क्यों, जब आप श्री कृष्ण को रचते हैं तो आप सिर्फ एक भाव को नहीं रचते हैं, उसमें एक सागर होता है। आपके पास छोटा सा कैनवास होता है और उस कैनवास में उस सागर को उतारना, हर कलाकार के मन में ये चीज करने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहती है। इसलिए मैंने इस चीज को चुना कि श्री कृष्ण के अलावा और कोई ऐसा टॉपिक नहीं हो सकता है।
0: जी, इस खास प्रदर्शनी के पीछे सोच क्या रही?
1: प्रदर्शनी के, चूंकि प्रदर्शनी अपने आप में खास होती है, लेकिन इसको और ज्यादा खास कैसे बनाया जा सकता है। सोचिए कि कोई भक्ति में लीन भक्त प्रभु के दरबार में ही उसको ऐसा मौका मिल जाए, उसने वो प्रभु के भक्त ने भजनों को सुनते हुए, उनका स्मरण करते हुए, तरह तरह की रचनाएं, उनके जीवन का वृत्तांत सुनते हुए कोई रचना रची, बहुत ज्यादा सोचा, उसके बाद में वो कैनवास पर तरह तरह के रंगों का समायोजन करा उसने कि नहीं यार, कृष्ण जी, कान्हा जी, वासुदेव जी किस रंग में सबसे ज्यादा सुंदर लगेंगे। तो उसके पास में भाव दिन भर सिर्फ एक ही था, पूरे समय उस रचना को रचते हुए, उस रचना के पहले, उस रचना के बाद।

0: उस भाव के साथ में जब उसने वो चित्रित किया और उसके बाद में उसको अवसर मिल गया ऐसा कि प्रभु के दरबार में स्वयं गोपाल मंदिर में और गोपाल जी के सामने, वो भी जन्माष्टमी के विशेष दिन,
1: जी
0: अगर मौका मिल जाए अपनी कला को प्रदर्शित करने का और इतने सारे भक्तों के बीच में, जबकि मतलब हजारों सैकड़ों की तादाद में वहां पर भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है, उस दौरान उन्हीं भक्तों के बीच में वो अपनी अगर कला को प्रदर्शित करेंगे, वो भी कान्हा जी जो उन्होंने इतने मन से बनाए हैं, तो क्या इतना मतलब अंतस में इतना आनंद होगा। तो वो आनंद की अनुभूति जब मैं सोच रहा था तो मैंने कहा यार, जब सोचकर मुझे इतना आनंद आ रहा है तो क्यों ना इसको साकार किया जाए। और हमने फैसला किया कि
1: जी
0: चलिए अब ये आयोजन वहां से हैं।
1: जी जी बहुत सुंदर ये आयोजन आपने जैसे बताया ना कि सच में सोच के ही हमें उस आनंद की अनुभूति हो रही है। वाकई हम भी उस चीज़ को अनुभव कर पा रहे हैं कि कितना सुंदर होगा गोपाल मंदिर की वो खूबसूरत दीवारें, प्राचीन दीवारें। कृष्ण सामने अपने सुंदरतम रूप में खड़े हुए हैं, बाल कृष्ण झूला झूल रहे हैं और साथ में कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों की, चित्रों की वहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है और लोग आ रहे हैं, कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं और साथ ही उस प्रदर्शनी का भी आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छे विचार के साथ में आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। अगर जो हमारे श्रोता हैं उस प्रदर्शनी में आएंगे तो उन्हें वहाँ कृष्ण के कौन से रूप के दर्शन ज्यादा होंगे?
0: क्योंकि हमारी जो प्रदर्शनी है, प्रदर्शनी का हमने जो नाम रखा है गोपाल मंदिर में, चूंकि प्रदर्शनी है तो गोपाल मुरलिया वाले,
1: जी
0: और कलाकार के बारे में आप नहीं कह सकते कि वो कृष्ण का कौन सा रूप चित्रित करने वाले हैं। ये भी हमारे लिए जिज्ञासा का विषय है, क्योंकि सभी कृष्ण को लेकर के अलग-अलग, कोई पिछवाई पेंटिंग बनाता है, कोई मॉडर्न आर्ट बनाता है,
1: जी
0: और हमारे जो कलाकार इसके अंदर भाग ले रहे हैं वो कक्षा तीसरी से लेकर के 70 साल तक के कलाकार हैं।
1: जी
0: तो इतनी ज्यादा वैरायटीज आपको वहां पर देखने को मिलने वाली है, कृष्ण से संबंधित चित्रकारी आपको देखने को मिलने वाली है, हर तरह का आर्ट आपको, ऑयल ऑन कैनवास, एक्रेलिक और तरह तरह की, कोई मांडना, कोई मंडाला, तो आपको हर तरह से बहुत सारी ऐसी चीजें नई नई आपको देखने को मिलेगी। मैं भी खुद उत्सुक हूँ
1: जी
0: ये देखने के लिए कि कलाकारों ने क्या किया है,
1: जी
0: और वाकई मजा आने वाला है।
1: जी बिल्कुल, कलाकारों को मंच देने के लिए, कृष्ण के इतने सुंदर भावों को कृष्ण भक्तों के सामने रखने के लिए निसंदेह ये जो आपकी पहल आप कर रहे हैं ये काबिले तारीफ है। अगर कोई संदेश इस वक्त आप हमारे श्रोताओं को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं।
0: इस जन्माष्टमी जितने भी कृष्ण प्रेमी भक्त हैं उन सभी से ये आग्रह करूंगा मैं कि आप अगर कहीं भी जा रहे हैं श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, तो एक बार अति प्राचीन गोपाल मंदिर में आइए। ये 18वीं सदी का बना हुआ मंदिर है
1: जी
0: और होलकर कालीन, जिसकी वास्तुकला अपने आप में अद्भुत है। वहां पर प्राचीन श्री कृष्ण की मूर्ति परंपरागत रूप में उनकी पूजा अर्चना रोजाना होती है, और मातोश्री अहिल्याबाई भी उनके दर्शन प्रातः उठकर करती थी। तो ऐसा एक भव्य मंदिर हमारे इंदौर में है, और वहाँ पर इतने सारे कलाकार जिन्होंने इतनी सारी कलाकृतियाँ श्री कृष्ण को लेकर रची हैं,
1: जी
0: उनकी कला देखिए, उस भाव का आनंद लीजिए, प्रभु का सानिध्य मिलेगा, उनके दर्शन प्राप्त होंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर, और इतने सारे कलाकारों से, उनकी भावनाओं से, उनके चित्रों से आपको रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि 3 और 4 सितंबर को अवश्य रूप से आप वहां पर पधारें। उसके अलावा आपके लिए वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेगी हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, उनकी कला को वहां पर देखने का, उससे रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो आइए, आपका स्वागत है, हम इंतजार करेंगे पलक पावड़े बिछाकर श्री कृष्ण के दरबार में सभी भक्तों का।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा पुष्कर मुझे आपसे बात करके। अब चलते चलते आप अपनी पसंद का कोई गीत हमें बताइए जो आज हम आपकी तरफ से हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
0: एक बहुत प्यारा गीत है, अगर आप कृष्ण भक्ति में डूबे हैं और इस गीत को अगर गुनगुनाना चाहें तो ये एकदम सटीक बैठता है कि अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे।
1: बहुत सुंदर गीत है और सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें आपका जो भाव है उस गीत को और सुंदर बना रहा है। तो चलिए सुनते हैं हमारे श्रोताओं के साथ इस बहुत खूबसूरत से गीत को और सभी को साथ में मिलके कहते हैं गुड मॉर्निंग इंदौर।
0: मॉर्निंग इंदौर।

0: तो श्रोताओं, कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं, एक अनुभूति है। कृष्ण एक मूर्ति नहीं, एक विश्वास है। और कृष्ण वो प्रेम है जिसे महसूस करने के लिए बस एक सच्चे मन की जरूरत होती है। अब तो बस इंतजार है कृष्ण जन्माष्टमी के उस महा उत्सव का, जिस दिन पूरा विश्व कृष्ण के आगमन की खुशियां मनाएगा एक बार फिर। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में अब आपको लिए चलते हैं उज्जैन, जहां से आज निकलने वाली है महाकाल की सवारी। तो आइए जानते हैं कि आज वहां किस तरह का आयोजन है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित आर्यन शर्मा जी। तो पंडित जी, बताइए किस तरह का आयोजन होने वाला है आज वहाँ पर।
1: सभी को हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। उज्जैन में भादो अर्थात भाद्रपद मास में भगवान महाकाल की दो प्रमुख सवारियां निकलती है, जिसमें पहली सवारी 31 अगस्त 2026 और अंतिम एवं भव्य शाही राजसी सवारी 7 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी। भादो मास की सवारियों में भगवान महाकाल चंद्रशेखर और अन्य दिव्य स्वरूपों में अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। यह सवारी महाकाल मंदिर से शुरू होकर कोट मोहल्ला, गुदरी चौराहा, बकावा, बटुक भैरव और रामघाट, छिप्रा नदी तक जाती है, जहां माँ छिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक होता है। तत्पश्चात सवारी वापस महाकाल मंदिर पहुंचकर संपन्न होती है। यह केवल एक सवारी नहीं, बल्कि उज्जैन की आस्था, परंपरा, संस्कृति और बाबा महाकाल के प्रति अटूट श्रद्धा का जीवंत उत्सव है। उज्जैन की धरती पर जब बाबा महाकाल की शाही सवारी निकलती है तो पूरा शहर शिवमय हो उठता है। मान्यता है कि बाबा महाकाल स्वयं अपनी प्रजा का हाल जानने, अपने भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। चांदी की पालकी में विराजित बाबा महाकाल का राजसी स्वरूप, सिर पर सजा छत्र, चंवर फूलों की सजावट और चारों ओर गूंजते ढोल नगाड़े इस दृश्य को अद्भुत भव्यता प्रदान करते हैं। यह दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। सवारी के साथ साधु संतों की उपस्थिति, अखाड़ों की परंपरा, पारंपरिक वाद्य यंत्र, भजन और लगातार गूंजते हर हर महादेव और जय श्री महाकाल के जयकारे वातावरण में ऐसी ऊर्जा भर देते हैं कि हर श्रद्धालु स्वयं को बाबा के और करीब महसूस करता है। बाबा महाकाल की सवारी में पुलिस का विशेष सुरक्षा और अनुशासन दल सबसे आगे चलता है, जो पूरे मार्ग को व्यवस्थित करता है। उनके पीछे पुलिस के जवानों की टुकड़ियां, धार्मिक दल, साधु संत, अखाड़े और पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ आगे बढ़ती भव्य सवारी दिखाई देती है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। अभी स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त शिखा का नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग।

अभी आप सुन रहे थे जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर प्रसारित विशेष गुड मॉर्निंग इंदौर, जिसे प्रस्तुत किया शिखा साहू ने। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।

सवेरे के 8 बजने को ही समाचार प्रभात आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे और 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज़।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमरीकी सेना ने होर्मोज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्रीय अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान

0: विमान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमरीका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
3: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
4: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
5: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनगोल, केउझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमरीका ने कल रात होर्मुज़ जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमरीकी सेना ने लद्दाख द्वीप पर दो ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज़ जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था।

0: ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल अदा की। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत डीएसवी निपुण को शामिल करने जा रही है।
1: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। निपुण एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नम्बर है 0111-2341-01-2331-44-44। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी युद्धस्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स। नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बीजीएल विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की

0: गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। हिंदुस्तान की सुर्खी है, पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
1: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. US forces strike Iranian rocket launchers on Ladakh Island in Strait of Hormuz. Iran attacks US bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliyev Adilbek Alishovich, the chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him.

0: is to build six freight lines with private firms using highways hybrid funding model, writes the Indian Express. And finally, Hindustan Times refers to an army Cheetal helicopter carrying out a daring mission at 18,600 feet in Ladakh to evacuate an injured mountaineer. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. U.S. forces strike Iranian rocket launchers on Larak Island in Strait of Hormuz. Iran attacks U.S. bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: मीडियम व्यू 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत सिर्फ गीतों का सिलसिला नहीं, यह हमारी यादों, भावनाओं और उन खूबसूरत लम्हों का साथी है जिन्हें हम चाहकर भी भुला नहीं पाते। कभी कोई गीत चेहरे पर मुस्कान ले आता है तो कभी वही गीत बीते हुए किसी रिश्ते या मौसम की याद दिला जाता है। तो आइए आज सुनते हैं फिल्म संगीत के कुछ ऐसे ही रंग, कभी प्यार के, कभी जुदाई के, कभी खुशियों के और कभी जिंदगी को करीब से महसूस करने के हैं।

कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल की सुमधुर आवाज से। आनंद मिलिंद का संगीत मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना और अनुराधा पौडवाल का साथ दिया है पंकज उदास ने।

कितनी खूबसूरत बात है ना दोस्तों, एक गीत कुछ ही मिनटों में हमें कहीं से कहीं पहुंचा देता है, कभी बचपन की यादों में, कभी किसी पुराने रिश्ते में, और कभी उस दौर में जिसे हमने पीछे छोड़ दिया था। यही तो है संगीत की खासियत, गीत खत्म हो जाता है लेकिन उसका एहसास देर तक हमारे साथ रहता है। फिल्मी गीतों की दुनिया में कितनी रंगीन रंगीन रंगीन दुनिया बसी हुई है, कहीं प्रेम की कोमलता है, कभी शरारत है, कभी दर्द है, कभी कभी जिंदगी को खुलकर जीने का अंदाज भी है। और इन भावनाओं को आवाज़ देकर हमारे गायक और गायिकाओं ने अमर कर दिया है, और उन्हीं अमर गीतों में एक और गीत आपकी नज़र।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: RBI कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
6: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
5: क्या, कैसे?
6: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
5: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
6: mmsky.mp.gov.in पर।

दोस्तों, कुछ रिश्ते बहुत ख़ास होते हैं जहाँ साथ बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं होती। बस किसी से मिलना, उसकी छोटी छोटी बातों को सुनना और उसके साथ कुछ पल बिताना ही दिल को खुशी दे जाता है। प्यार शायद इसी एहसास का नाम है जिसमें सामने वाले की मौजूदगी ही खास लगने लगती है। आइए सुनते हैं तेरे नाम फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपकी नज़र कर रहे हैं। उम्मीद है फिल्म संगीत के इन नगमों ने आपके दिल में भी कुछ पुरानी यादों के दरवाजे खोले होंगे और चेहरे पर मुस्कान लाई होगी। फिर मिलेंगे संगीत की किसी नई धुन, किसी पुराने नगमे और किसी खूबसूरत एहसास के साथ। तब तक सुनते रहिए अच्छा संगीत और अपनी यादों को यूं ही संजो कर रखिए।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत समाप्त करने की इजाजत दीजिए मोना ठाकुर को, और अपने पत्रों के जरिए हमें बताइएगा कि आज को आज

का ये कार्यक्रम कैसा लगा। मीडियम वेव 462.94 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है मराठी कार्यक्रम

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मराठी कार्यक्रम। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं केशव रघुनाथ तालेगांवकर का सितार पर बजाया राग वसंत मुखारी।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत में आप सुन रहे हैं केशव रघुनाथ तालेगांवकर का गिटार पर बजाया राग बसंत मुखारी।

अभी आप सुन रहे थे केशव रघुनाथ तालेगांवकर का गिटार पर बजाया राग बसंत मुखारी। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, आप सुनते हैं जिले की चिट्ठी में। नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी, आलेख तनुज तिवारी का है, वाचन स्वर है दीपा सिंह का।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी, वाचन स्वर दीपा सिंह। नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की। इस अभियान के तहत जिले में हर शुक्रवार जन संवाद और समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। अभियान के तहत अधिकारियों ने स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और सहकारी समितियों का भी निरीक्षण किया। इसी कड़ी में संत रविदास जी की 650वीं जयंती के मौके पर नर्मदापुरम में कलश वंदन और समरसता संकल्प अभियान शुरू हुआ। काशी से आई पावन कलश का पूजन कर उसे रथ के जरिए जिले के अलग अलग इलाकों के लिए रवाना किया गया। ये कलश रथ 10 सितंबर तक गांव-गांव पहुंचेगा और लोगों को संत रविदास जी की समानता, सेवा और भाईचारे का संदेश देगा। वहीं दूसरी तरफ जिले में बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। इस सीजन में अब तक औसतन 27 इंच बारिश हुई है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 16 इंच कम है। प्रशासन ने बाढ़ और जल भराव वाले इलाकों पर नजर रखने के साथ राहत और बचाव की तैयारियां भी पूरी कर रखी हैं। वहीं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में रक्षाबंधन पर चलाए गए बाघ रक्षा सूत्र अभियान में करीब 11,000 लोगों ने हिस्सा लिया। ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने बाघ वाली राखी बांधकर वन्य जीवों की सुरक्षा का संकल्प लिया। तकनीक की बात करें तो नर्मदापुरम के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 सप्ताह की रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटर्नशिप पूरी हुई। इनमें 54 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और रोबोट बनाने से लेकर माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग तक का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण लिया। किसानों के लिए अच्छी खबर है, इटारसी में हुए बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सहकारिता विभाग की नई कवच योजना की जानकारी दी। इससे करीब 5,000 ऐसे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके ऋण खातों में गड़बड़ी के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। धान और सरसों को भावांतर योजना में शामिल करने के साथ शेडनेट और पॉलीहाउस के लिए 50% तक अनुदान की जानकारी भी दी गई। बारिश के बीच सोहागपुर के ग्राम मगरिया के 75 एकड़ में फैली गौशाला में निराश्रित गोवंश के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहां 250 से ज्यादा गौवंश की देखभाल हो रही है और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और वॉच टावर लगाए गए हैं। प्रशासन ने इसे ग्रामीण और गौ आधारित पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर नर्मदापुरम में विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों में माताओं को बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराने की सलाह दी गई। साथ ही कंगारू मदर केयर और बच्चों के बीच उचित अंतर रखने की जानकारी भी दी गई। जिले में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय पर निराकरण करने वाले अधिकारियों को कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने सम्मानित किया। 85% से ज्यादा वेटेज स्कोर हासिल करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर बांद्रा भान के वृद्धाश्रम में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकार, भरण पोषण से जुड़े कानून और मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी दी गई। इटारसी के 2 सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए डिजिटल स्किल्स, व्यक्तित्व विकास और पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम हुए। कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को डिजिटल और कम्युनिकेशन स्किल्स की जानकारी दी गई। वहीं गांधी स्मृति कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए और उनकी देखभाल का संकल्प लिया। भारत निर्वाचन आयोग की विशेष टीम ने नर्मदापुरम जिले में 3 दिन रहकर मतदाता सूची से जुड़े कामों की समीक्षा की। टीम ने पिपरिया, सुहागपुर और सिवनी मालवा में बीएलओ के साथ बैठक कर निर्वाचक नामावली के काम की जानकारी ली। इटारसी के शासकीय आदर्श आवासीय विद्यालय तवानगर ने स्वच्छ और हरित विद्यालय सर्वे में प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया। आदिवासी बहुल केसला विकासखंड का ये जिले का इकलौता चयनित स्कूल है। स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य और अधीक्षक को इसका प्रमाण पत्र दिया गया। एचआईवी और एड्स को लेकर जिले में सघन जागरूकता अभियान 3.0 शुरू किया गया है। 12 अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान 12 अक्टूबर तक जिले के अलग अलग इलाकों में चलेगा। अभियान में लोगों को एचआईवी संक्रमण से बचाव और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की जानकारी दी जा रही है। और आखिर में बात पर्यटन की। नर्मदापुरम में बूझो तो जानो, फिर देखो अपना प्रदेश 2026 जिला स्तरीय पर्यटन क्विज आयोजित हुई। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और पर्यटन से जुड़े सवालों के जवाब दिए। बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों का चयन अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी सुन रहे थे। आलेख तनुज तिवारी का था, वाचन स्वर था दीपा सिंह का। मीडियम वेव 462.96 मीटर अर्थात 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम MH हॉटलाइन।
1: हेलो MH हॉटलाइन।

0: सभी रसिक श्रोताओं को मोना ठाकुर का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम लेकर आए हैं वो कार्यक्रम जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो चलिए आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम का हम लेते हैं पहला फ़ोन कॉल्स। हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
0: हाँ जी नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश यूपी से।
0: फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से आप बात कर रहे हैं, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज दिल फिल्म का सुनवा दीजिए, ओ प्रिया प्रिया। मैंने लगा लिया है इमेज हॉटलाइन। इमेज हॉटलाइन मतलब एक बैटरी होती है 12 इमेज की
0: जी।
1: तो मैंने आपका चैनल पे लगा लिया इमेज हॉटलाइन।
0: क्या बात है, और उत्तर प्रदेश में वहाँ पर अच्छे से आपको हमारा प्रसारण सुनाई देता है?
1: अरे कौन नहीं दे रहा है आपका प्रसारण, आपकी रेंज में, रेंज जो पहले चलती थी वो रेंज कम कर दी आप लोगों ने। यहाँ अब कहती हो रेंज प्रसारण से सुनाई देता, कुछ भी नहीं देता है, रात को देता है, रात को 8 बजे पकड़ता है।
0: तो चलिए हम आपकी ये जो बात है हमारे अधिकारियों तक जरूर पहुँचाएंगे। अभी तो आपका आवाज़ हमें बहुत अच्छे से आ रही है और आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं हमसे।
1: अरे आवाज़ तो आ रही है लेकिन वो रेडियो पर तो आवाज़ नहीं आ रही है।
0: तो फिर आप कैसे बात कर रहे हैं?
1: हाँ रेडियो
0: मतलब आप मेरे प्रश्न को सुन रहे हैं तभी तो उत्तर दे रहे हैं आप?
1: हाँ
0: आप मेरे प्रश्न को सुन रहे हैं तभी तो उत्तर दे रहे हैं।
1: अरे मैं तो आवाज़ नकल सुन रहा हूँ।
0: जी जी जी
1: हाँ, और न्यूज़ ऑन एप्लीकेशन पर मैं सुनता हूँ अभी, अगर न्यूज़ ऑन एप्लीकेशन चला रहा हूँ प्रसार भारती।
0: तो चलिए मुझे लगता है कि आपकी पसंद का ये दिल फिल्म का गीत आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगा।

0: तो चलिए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: जी नमस्ते मैम। गुड मॉर्निंग सुप्रभात।
0: गुड मॉर्निंग सुप्रभात। क्या हाल हैं आपके?
1: मैं नरेश प्रजापति बात कर रहा हूँ।
0: जी नरेश जी, आपकी आवाज़ को पहचान गए हम।
1: जी और आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है और बिल्कुल मान के चलिए कि जो बहुत पहले से मैं इस प्रोग्राम से जुड़ा हूँ, जब मैं इंदौर आया था ना आईटीआई की पढ़ाई करने के लिए
0: जी,
1: तो एमएस हॉटलाइन उस टाइम पे गुरुवार के दिन आता था।
0: जी जी जी, बहुत बहुत बहुत पुरानी बात है और लगातार आप रेडियो सेट से जुड़े हैं, धन्यवाद आपको
1: जी।
0: क्या क्या फर्क, क्या चेंजेस आए हैं कार्यक्रम में और कौन से कार्यक्रम आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं?
1: कार्यक्रम में चेंजेस तो आए हैं और जैसे कोरोना काल में हमारे कुछ कार्यक्रम बंद भी हुए, लेकिन अभी आपने जो कार्यक्रम शुरू किए हैं तो बड़ा अच्छा लगा है। एक प्रोग्राम शुक्रवार को आता था पत्रों पर आधारित
0: जी,
1: युववाणी में, तो वो फिर से शुरू कर दिया जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। तो
0: बिल्कुल, हम अपने अधिकारियों तक आपकी बात जरूर पहुंचाएंगे।
1: बाकी और तो सभी कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर के लाजवाब हैं और फोन इन कार्यक्रम जो प्रत्येक दिन होता है एमएस हॉटलाइन, तो वो तो तारीफ के काबिल है। इस प्रोग्राम में बहुत श्रोता जुड़ रहे हैं और अपनी मन की बात करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए।
0: जी अपनी मन की बात करते हैं और हमें भी आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: मूवी है 1981 की लव स्टोरी, जिसमें अमित कुमार और लता जी की आवाज में, आनंद बख्शी साहब के बोल और राहुल देव बर्मन के संगीत।
0: जी जी, कुमार गौरव की पहली फिल्म।
1: हाँ कुमार गौरव और विजेता पंडित
0: थी उसमें। जी जी,
1: देखो देखो मैंने देखा है एक सपना।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर सपना देखा है आपने और आपके हर सपने पूरे हों। तो चलिए आपके रेडियो
1: हमारे कुछ मित्र हैं।
0: जी जी,
1: हमारी दीदी है पालदा नाका इंदौर की हसीना भी
0: जी, हसीना जी हमसे जुड़ी हैं हमेशा से,
1: मोहम्मद रफी मंसूरी जी।
0: तो चलिए फिर तो ये करेंगे कि आपने उनका नाम ले ही दिया है तो यदि उनका कॉल आएगा तो हम नहीं लेते
1: नहीं, फिर तो वो नाराज हो जाएंगे
0: अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे सभी श्रोता हमसे नाराज नहीं होते हैं और लगातार हमसे जुड़े, हम कभी उनसे कहते भी हैं कि कुछ समय बाद कॉल कीजिएगा तो वो बिल्कुल उस बात को मानते हैं और आपसे भी यही गुजारिश है।
1: जरूर है फॉलो करना जरूर है क्योंकि इस दौरान
0: सभी को मौका मिलता रहेगा।
1: बिल्कुल, और विविधता होना जरूरी है।
0: जी विविधता होना जरूरी है तो इसलिए आप जैसे विविध रंगों के जो श्रोता हमारे साथ में वो विविध रंगों के गीतों को पसंद करते हैं तो उन्हीं रंगों में से एक रंग हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपके रेडियो सेट पर। सुनिए धन्यवाद
1: जी, और आपकी आवाज बहुत ही क्लियरिटी के साथ और सुरीली आवाज।
0: धन्यवाद धन्यवाद
1: जी, थैंक यू मैम।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में।
1: जी, ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़ से मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: राम नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में। बताइए अपनी पसंद का कोई भी प्यारा सा गीत।
1: हाँ, आज के इस सुनहरे कार्यक्रम में
0: जी
1: हम सागर फिल्म का गीत, चेहरा है या चांद खिला है,
0: जुल्फ घनेरी छांव है क्या। जी,
1: ये बहुत प्यारी फरमाइश है और किशोरदा ने बड़े मन से गाया है इसको, और हमें सुनने में ऐसा लगता है कि किशोरदा हमारे साथ हैं और अपने गीतों के जरिए उनकी यादें हमारे साथ तरोताजा।

0: रहती हैं।
1: तो इस गीत को सुनकर किशोरदा के अलावा और किसकी याद आती है आपको?
0: हाँ देखिए, किशोरदा के अलावा क्योंकि मैं दृष्टिबाधित हूँ तो मैं तो देखता नहीं, और रेडियो सुनकर ही उनके गीतों का आनंद
1: नहीं तो फिर तो आपको ये प्रकृति नजारे इनका जब आप एक आभास करते होंगे तो आपको सच में कुछ ऐसी छवि छवि आपके दिमाग आपके जहन में आती होगी।
0: हाँ ऐसा लगता है कि कोई गा रहा है सागर के किनारे और अपने प्रेमी को याद कर रहा है और उसकी खूबसूरती को अपने गीतों में बयां कर रहा है,
1: क्या बात
0: इस तरह की कुछ छवि आती है। जी जी
1: बिल्कुल, क्या बात है। तो कभी इसे कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से या किसी पेंटिंग के माध्यम से आप अपने जज्बातों को जरूर उभारिएगा।
0: जी जी और आकाशवाणी इंदौर की बात करूं तो मैं 20 वर्षों से यहाँ का प्रसारण सुन रहा हूँ। जब सुबह के समय अल्पना प्रोग्राम आया करता था उस समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हमारी जिंदगी की शुरुआत सबसे पहले मीडियम वेव सुनते हुए ही हुई थी।
1: क्या बात
0: और
1: है?
0: उसके बाद हमने दूसरे केंद्रों को सुनना शुरू किया था और जिंदगी में पहली बार हमारा विविध भारती इंदौर मैं फोन लगा था और उस समय प्रोग्राम यही चलता था, MH हॉटलाइन, दो घोषक मिलकर प्रोग्राम करते थे।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: मेरी फर्स्ट कॉल
1: जी
0: उसमें लगी थी।
1: तो क्या बात है, आप आज मेरी बहुत पुराने पुराने श्रोताओं से मुलाकात हो रही है और
0: जी जी
1: मुझे लगता है कि जिन श्रोताओं के कॉल्स हम ले पाते हैं उसके अलावा भी जो बहुत सारे श्रोता हमें सुनते रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं मन से, दिल से, दिमाग से और बहुत पुरानी यादें उन्होंने संजो रखी है विविध भारती से और
0: जी
1: हमारे प्राइमरी जो चैनल से,
0: हाँ
1: और
0: हाँ
1: आप जैसे
0: अभी बहुत
1: श्रोताओं के माध्यम से ही हम लोग इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर पाते हैं।
0: जी जी बहुत सारे ऐसे श्रोता मित्र होंगे जो बड़े लंबे समय से आकाशवाणी इंदौर का प्रसारण सुन रहे होंगे लेकिन किसी कारणवश उनका फोन ना लगता हो,
1: जी जी
0: परंतु
1: जी
0: वो सुनते अवश्य हैं,
1: बिल्कुल
0: उनकी
1: सुनते हैं,
0: जिंदगी का
1: बिल्कुल सुनते
0: हिस्सा है।
1: हैं और कोशिश करते हैं वो भी कि उनके कॉल लग जाएं, पर
0: जी
1: ऐसा नहीं है, जब वो आप लोगों के माध्यम से भी वो गीतों का आनंद ले सकते हैं, मज़ा लेते हैं।
0: जी जी
1: जी तो चलिए,
0: जरूर
1: आपका गीत आपके रेडियो सेट पर कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार
0: जी, अपना परिचय दें।
1: खत्री बोल रहा हूँ, मोहम्मद यूनुस खत्री बोल रहा हूँ।
0: मोहम्मद यूनुस खत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएच हॉटलाइन में।
1: जी
0: जी, अपनी पसंद बताएं।
1: मेरी पसंद साहब फिल्म चोरी चोरी का गीत।
0: क्या बात है, पुराना गीत है, बहुत प्यारा सा गीत है लता जी का।
1: जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो।
0: जी जी,
1: चोरी चोरी मेरे दिल में समाते। हमारे संजय पंचोली जी से बात कर लीजिए।
0: हाँ जी बिल्कुल, करवाइए पंचोली जी से। एक पंथ दो काज, दो फोन नहीं लेने पड़े। जी नमस्कार संजय जी, क्या हाल है आपके?
2: बस बढ़िया है सब।
0: तो
2: आप आ रहे हैं इंदौर?
0: अच्छा, आप इंदौर आ रहे हैं, तो स्वागत है आपका। आइए इंदौर आइए,
2: और आकाशवाणी पे ही आ रहे हैं।
0: अरे आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत। आकाशवाणी का दिल खुला है, मन खुला है, स्वागत है आपका।
2: आकाशवाणी का तो दायरा भी बहुत बड़ा है और हम उस दायरे में ही आते हैं।
0: बिल्कुल, और आप जैसे श्रोताओं से और बढ़ गया है दायरा।
2: जी जी, आकाशवाणी की शान जो है श्रोताओं से, और श्रोताओं की शान आकाशवाणी से।
0: जी जी बिल्कुल। तो चलिए मिलते हैं आपसे, और आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार नमस्कार। इमेज हॉटलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं
1: ग्राम सनोतिया, जिला
0: जी।
1: गुना,
0: जी
1: मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ मैम।
0: मांगीलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम इमेज हॉटलाइन में। और
1: जी,
0: बताइए क्या स्थिति है वहाँ, बारिश हो रही है?
1: बारिश तो 2-4 रोज से नहीं हो रही, लेकिन
0: जी
1: मौसम बढ़िया है। बादल हैं आसमान में छाए हुए, सूर्य नारायण बादल में छुप रहा है, तो ठंडक है बढ़िया और बारिश नहीं हो रही। और बारिश बहन जी पर्याप्त हो गई हमारे जिले के अंदर,
0: जी जी जी
1: और बढ़िया बढ़िया मौसम है। आपको बता
0: तो बढ़िया मौसम चल रहा है इस वक्त
1: जी।
0: जी। तो अपनी पसंद का गीत बताएं।
1: हाँ, तो बहन जी इसी उपलक्ष्य में कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी कुछ दिनों बाद आने वाली है, तो
0: जी
1: इसी
0: जी
1: उपलक्ष्य में ये गाना मुझे भजन याद आ रहा है।
0: कौन
1: मैं
0: सा गीत याद
1: उनको
0: आ रहा है आपको?
1: फिल्म का नाम तो है खानदान,
0: जी
1: और गाने के बोल हैं रफी जी की आवाज में, बड़ी देर वही नंदलाला
0: बड़ी
1: तेरी
0: देर
1: राय
0: भाई
1: तक है
0: नंदलाला,
1: तक।
0: थोड़ा सा गुनगुना के बताएंगे आप?
1: जी बस इतना ही आता है।
0: बड़ी देर भई
1: ब्रिजवाला।
0: नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजवाला। तो चलिए इस गीत को गुनगुनाइए और आनंद लीजिए इस बेहतरीन
1: बहन
0: गीत
1: जी
0: का।
1: कुछ कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ इसी सॉन्ग पे है।
0: जी जी बताइए, नाम बताइए अपने
1: नरेश
0: मित्रों के।
1: प्रजापति, हाँ नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, बसंती लाल जी हैं,
0: जी
1: खत्री सिंह राजपूत जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, राम बाबू जी शर्मा जी हैं, लोकेन वर्मा जी हैं, और शेख हैदर खान जी हैं, बलवंत कुमार वर्मा जी हैं
0: जी
1: पिंपलेगंज आलोर से, असीना भी मंसूरी है पालदाना का इंदौर से, और उनके भाई
0: हसीना जी
1: रफी
0: बड़ी
1: साहब
0: प्रसिद्ध हो गई
1: मोहम्मद
0: हैं, दूसरे श्रोता ने नाम लिया है उनका।
1: रफी।
0: तो चलिए, बड़ी देर भई
1: जी
0: नंदलाला।
1: जी जी

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं राजस्थानी चौराहे से महेश रायकर बोल रही हूँ।
0: महेश जी, आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में।
1: धन्यवाद मैडम
0: जी। जी महेश जी, बताएं अपनी फरमाइश।
1: और रूप तेरा मस्ताना फिल्म का गाना है मैडम, बड़े बेवफा हैं सनम।
0: बड़े बेवफा हैं सनम,
1: जी जी।
0: बहुत समय बाद आज इस गीत को हम प्ले करेंगे, आपकी बहुत अच्छी फरमाइश है
1: जी। धन्यवाद
0: जी। रूप तेरा मस्ताना फिल्म का
1: जी, जी
0: रफी साहब का गाया गीत
1: जी जी,
0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत
1: जी, जितेंद्र मुमताज
0: जी जी जी। तो कैसे अचानक याद आ गया आपको ये गीत?
1: मैडम अभी ऐसा पुराने गाने सुनने का शौकीन हूँ।
0: और पुराने गाने आपको पता है कि रेडियो सेट पर
1: जी जी आपका एक
0: या तो आप विविध भारती से सुन सकते हैं या फिर हमारे जी, मीडियम वेव से
1: जी जी जी जय विविध भारती और अपना आकाशवाणी को कहने आपका पुराना इसका रिकॉर्डिंग है आपके।
0: हमारे पास बहुत पुराने रिकॉर्ड हैं और सिर्फ गीत और संगीत के अलावा भी रेडियो सेट से बहुत सारी हम जानकारियां प्रसारित करते हैं। साहित्य के कार्यक्रम होता है, कवि सम्मेलन होता है, नाटक होते हैं, विविध प्रकार के कार्यक्रम आप अपने रेडियो सेट पर घर बैठे सुन सकते हैं
1: जी।
0: तो अपनी पसंद का गीत बड़े बेवफा, तो चलिए आपके रेडियो सेट पर।
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ नमस्कार,
1: नमस्कार, आपका नाम बताएं।
0: मैं राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ, राजा राम नगर देवास से।
1: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपनी पसंद का गीत बताएं।
0: ये गीत है दीदी, यादव की बारात पिक्चर का, मेरी सोनी मेरी तमन्ना जैसा गीत है,
1: जी
0: किशोर
1: जी
0: बाबू
1: जी
0: और आशा
1: जी
0: भोसले की आवाज में, जो के बहुत कम बजता है ये गीत।
1: तो चलिए, बहुत कम बचता है तो आज आपने बजवा दिया इस गीत को।
0: धन्यवाद
1: आपकी
0: दीदी।
1: पसंद का गीत हमें मिल चुका है और आपका गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव तक हम पहुंचने वाले हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा श्रोता हमसे जुड़ें और हमें फ़ोन कॉल्स करें और अपनी पसंद के गीतों का आनंद लें। तो इस गीत के साथ साथ हम लेते हैं हमारा अगला फ़ोन कॉल्स। हेलो हेलो,
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्कार, आप अपना परिचय दें।
1: मैं कश्मीर सोनमर्ग से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: कश्मीर सोनमर्ग से बात कर रहे हैं आप?
1: हाँ, मैं कश्मीर सोनमर्ग से आपका नीमी श्रोता।
0: अरे क्या बात है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कश्मीर की वादियाँ, मतलब हम कह सकते हैं कि जब बहुत बहुत मन ऐसा करता है ना कि किसी खूबसूरत जगह का हम मन में स्मरण करें या घूमने जाएं, तो सबसे पहले कश्मीर का नाम आता है।
1: हाँ सही बात, कल तो यहाँ पे बहुत पानी बरस रहा था, 3 बजे से लेके 6 बजे तक पानी बहुत बरस
0: तो
1: रहा था।
0: ठंडक शुरू हो चुकी है कश्मीर में?
1: हाँ हाँ, सुबह शाम तो हल्की फुल्की ठंडी होते हैं, मगर उतना नहीं जितना तो माइनस में चला जाता है नवंबर
0: दिसंबर में,
1: जनवरी। हाँ
0: तो उस वक्त उस समय आप लोगों का एक स्पेशल ड्रेस होता है जो आप पहने रखते हैं?
1: हाँ, फेरन वगैरह।
0: फेरन जी, फेरन कहते हैं। और वो जो एक सिगड़ी भी होती है फेरन के अंदर, आप लोग लेते हैं?
1: कांगड़ी, कश्मीरी कांगड़ी, उसमें तो वो कोयला वगैरह डालते हैं ना,
0: तो उससे ऐसा डर नहीं होता कि वो कांगड़ी आप पकड़े हैं पूरे समय कोयला जल रहा है?
1: नहीं, वो नहीं जलता नहीं है मैडम, उसमें तो कोयला जल के होता है ना, उसमें तो उस सौगा डालते हैं।
0: अच्छा,
1: सौगे के नीचे होता है इंगार।
0: तो वो प्रोटेक्ट करता है आपको।

0: वो श्रीनगर में या हमारे मेन मेन मार्केटों में बिलावर वो तो नीचे पकड़ते उसी से तो घर में करते हैं।
1: तो अपनी पसंद का कोई गीत बताइए।
0: हमें गाना सुनना है कुदरत फिल्म का।
1: कुदरत फिल्म का गीत, कौन सा गीत?
0: तूने और रंगीला के
1: कैसा जादू किया। तो यदि मैं आपसे ये कहूँ कि इस लाइन को आप कश्मीरी भाषा में बोलिए तो कैसे बोलेंगे?
0: कश्मीरी में क्या बोलूंगा मैं?
1: या तो कोई एक अच्छी सी बात कश्मीरी भाषा में आकाशवाणी के लिए।
0: आशा तूने और रंगीला
1: जी, कुछ भी जो आपके मन में आकाशवाणी के लिए कोई प्यार भरी सी बात कश्मीरी भाषा में बोल सकते हैं।
0: ये बोलते हैं हम कश्मीर में ऐसा बोलेगा तूने, मतलब हमें उर्दू में आपको समझाएगा
1: जी।
0: जो किसी का रंग होता है वो बहुत सारों के लिए अच्छा होता है
1: जी,
0: दुनियाई रंग।
1: अच्छा,
0: जो भी दुनिया में रंग होता है वो सबके लिए बहुत अच्छा, कुदरत ने बहुत अच्छा रंग बनाया है दुनिया में
1: जी। दुनिया तो बहुत रंगीन है सर, बहुत रंगीन है दुनिया, और गीत और संगीत ने और भी रंगीन कर दिया है दुनिया को।
0: हाँ हाँ
1: जी, तो चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपको।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो
0: जी,
1: हेलो। हाँ,
0: हाँ जी, बोलिए।
1: मैं भवानी मंडी जिला झालावाड़ से बोल रही हूँ। मैम
0: झालावाड़ से कौन बोल रहा है?
1: लता आहूजा।
0: लता जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में।
1: मैम पहली बार फोन लगाए। बिल्कुल।
0: अरे क्या बात है, तो आपको
1: हाँ, बहुत खुश
0: आपको
1: हूँ मैं, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं।
0: आपको राखी का पुरस्कार मिल गया, मतलब
1: हाँ, बहुत बहुत बढ़िया।
0: तो अपनी पसंद का गीत बताएं।
1: हाँ, मैं भूल गई गाना तो।
0: अच्छा, भूल गई,
1: हाँ, वो फोन लग गया ना और मैं बाहर निकल आई फटाफट से। हाँ,
0: तो हमारी पसंद का गीत सुना दें हम आपको।
1: सुना दे। वेरी।
0: कौन सा
1: मैं
0: गीत
1: बहुत
0: सुना
1: बहुत
0: दें?
1: धन्यवाद।
0: तो और क्या कहना चाहेंगी आप? पहली बार आपका कॉल लगा है, और आप क्या, आपके मन में क्या बात है आकाशवाणी के लिए, कार्यक्रम के लिए?
1: मतलब पूरा दिन मेरा रेडियो चलता है और पूरा दिन ही सुनती हूँ मैं 3 बजे तक।
0: अच्छा, 3 बजे
1: हाँ,
0: के बाद फिर काम शुरू करती हैं सर?
1: फिर मेरा घर का काम, फिर 5 बजे युवाणी।
0: अच्छा, क्या बात है।
1: हाँ, पूरा
0: मतलब
1: मतलब
0: मुझे लगता
1: कहते
0: है
1: हैं ना।
0: कि
1: हाँ,
0: बहुत बहुत सारी ऐसी गृहिणियां हैं जो रेडियो लगा के, उनको टाइम देखने की ज़रूरत नहीं, उन्हें समझ में आ गया कि अब
1: नहीं,
0: 5 बज गए हैं, अब 6 बज गए हैं, अब इतना बज
1: हाँ,
0: गया है।
1: रेडियो रसोई में ही चल रहा है और खाना भी बना रही हूँ और लग गया, अचानक लग गया।
0: अरे
1: मैं
0: क्या
1: बहुत
0: बात
1: खुश
0: है।
1: हूँ, बहुत खुश हूँ।
0: तो आपके परिवार में कौन कौन है गौरी जी?
1: हाँ, मेरी बेटी है, वो अभी
0: जी,
1: मुंबई गई हुई है, उसकी जॉब लग गई है। एक तो एक बधाई आपको, है
0: अरे
1: ना।
0: आपको भी बहुत सारी बधाइयाँ।
1: हाँ, और मेरे पति हैं और मैं हूँ बस।
0: अरे क्या बात है, तो गीत संगीत के साथ में बहुत खुश हैं आप,
1: हाँ, बहुत बहुत खुश हूँ,
0: क्या बात
1: बहुत,
0: है।
1: इतनी इतनी खुश हूँ। मैं तो काफी टाइम से जुड़ी हूँ पर फोन मेरा आज लगा है।
0: तो चलिए, आपसे मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
1: हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा।
0: तो कभी कभी मुलाकात होगी आपसे ज़रूर।
1: हाँ
0: और चलिए, आप अपनी पसंद भूल गई थी, पर मैं आपके लिए अपनी पसंद का गीत भेजती हूँ।
1: हाँ हाँ ठीक है,
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: तो चलिए गौरी जी अपनी पसंद का ये गांव सुन रही हैं। मैं भी गांव बोल गई। गौरी जी अपनी पसंद का ये गीत सुन रही हैं, गौरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, और आज वो बहुत खुश थी। तो चलिए उनकी खुशी में एक और इजाफा करते हैं, लेते हैं अगला फ़ोन कॉल्स। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम
0: जी, अपना नाम बताएं।

0: मंदसौर जिले से श्यामलाल कटीरा बोल रहा हूँ।
1: श्यामलाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम इमेज हॉटलाइन में। अपनी पसंद का गीत बताएं।
0: मैम यारा सीली सीली वीर हा की रात का जलना होगा।
1: क्या बात है, हृदयनाथ मंगेशकर।
0: हाँ
1: लता जी और लता गुलजार साहब अद्भुत है। और जी जी अद्भुत अद्भुत संगम है ये, और गीत भी बहुत अद्भुत आपने चुना है। फिल्म भी बहुत अच्छी थी ये।
0: हाँ और बहुत दिनों बाद में मतलब सुनने को मिलेगा आज।
1: जी तो चलिए आपके रेडियो सेट पर सुनाते हैं आपका ये गीत।
0: जी
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम।

0: तो चलिए एमएच हॉटलाइन का समय जो है अब समाप्त होने वाला है। जिन श्रोताओं ने हमें फ़ोन कॉल्स किए हैं उनसे निवेदन करते हैं कि अब वे कुछ समय बाद हमें कॉल लगाएं और नए श्रोताओं को भरपूर मौका दें। जिन श्रोताओं के कॉल नहीं लगे हैं वे मन छोटा ना करें, क्योंकि किसी ना किसी माध्यम से गीत संगीत उनके कानों तक, उनके घरों तक और उनके मन और उनके दिल तक ज़रूर पहुँचता रहता है। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा अपने पत्र के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारा पता है कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मालवा हाउस इंदौर 452001। और जो नए श्रोता इस समय हमें सुन रहे हैं यदि वे फ़ोन कॉल्स लगाना चाहें तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा और हमें इंतज़ार रहता है हमारे नए श्रोताओं का। हमारे फ़ोन नंबर से 2710223 और 2710224 इंदौर का एसटीडी कोड है 0731। तो अब इजाजत दीजिए मोना ठाकुर को आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन
2: और अब सुनते हैं अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जी राघवेंद्र प्रसथ का कर्नाटक वोकल।

0: आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में लीजिए प्रस्तुत है जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन वादन। जी राघवेंद्र प्रसाद कर्नाटक वायलिन वादक हैं और ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं। दिल्ली में जन्मे जी राघवेंद्र प्रसाद ने कर्नाटक वायलिन वादन की बारीकियां अपने गुरु कलैमा मणि श्री वी एस के चक्रपाणी जी के मार्गदर्शन में सीखी हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से कर्नाटक संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है, जहां आप रजत पदक विजेता रहे हैं। राघवेंद्र प्रसाद एकल वादन के साथ साथ एक सिद्धहस्त संगतकार के रूप में भी संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए आपको युवा कलाकार छात्रवृत्ति से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आपको सन 2010 में CCRT छात्रवृत्ति, 2019 में युवा पुरस्कार और युवा उभरते कलाकार का खिताब, 2022 में नाद लय शिखामणि तथा 2023 में संस्कृति मंत्रालय एवं आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संयुक्त रूप से गंधर्व विज्ञ सम्मान से नवाजा गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कला का परचम लहराते हुए आपने रूस में आयोजित फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भाग लिया और स्विट्जरलैंड के रीटबर्ग संग्रहालय में प्रस्तुतियां दी। देश के प्रतिष्ठित मंचों जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जालंधर का प्रसिद्ध हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, राष्ट्रपति भवन, TTD नाद नीराजनम, वाराणसी का श्री संकट मोचन मंदिर स्पिक मैके तथा तिरुवैयारू में त्यागराज आराधना महोत्सव में भी इनकी प्रस्तुतियां सराहनीय रही हैं। एक कुशल संगीतकार के रूप में राघवेंद्र ने पद्मभूषण श्री TN शेष गोपालन, मल्लाडी ब्रदर्स, नेवेली श्री संथान गोपालन, श्री OS अरुण, मामबलम सिस्टर्स तथा डॉक्टर के वागीश जैसे संगीत जगत के शीर्ष दिग्गजों के साथ सफलतापूर्वक वायलिन संगत की है। आइए सुनते हैं जी राघवेंद्र प्रसाद का कर्नाटक वायलिन वादन। आपके साथ मृदंगम पर यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री वरुण राजशेखरन संगत कर रहे हैं। जी राघवेंद्र प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मणि रंगों से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभान जेशा। इसके रचनाकार हैं महाराजा स्वाति तिरुनाल। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी। टुनाइट इन रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वायलिन रिसाइटल बाय जी राघवेंद्र प्रसाद। जी राघवेंद्र प्रसाद इज एन ए ग्रेड वायलिन कर्नाटक आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन। ही हैज डन हिज मास्टर्स इन कर्नाटक म्यूजिक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ही हैज लर्नड बेसिक्स ऑफ वायलिन रिसाइटल बाय कलैमा मणि श्री वी एस के चक्रपाणी। ही इज रेसिपियंट ऑफ स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट awarded in the year 2019-20 by Ministry of Culture for Carnatic Instrumental Violin. He was awarded scholarship by Center for Cultural and Resources Training in the field of Carnatic Music Instrument Violin in 2010. Awarded Gandharva Vignya jointly by Ministry of Culture, Government of India and Art of Living Bengaluru in January 2023, he has performed violin concerts in India International Center, हरिवल्लभ फेस्टिवल जालंधर, राष्ट्रपति भवन दिल्ली, तमिल संगम, लोक कला मंच, भारतीय विद्या भवन चेन्नई एंड मेनी प्लेसेस इन दिल्ली एंड चेन्नई। ही हैज बीन अ पार्ट ऑफ प्रेस्टिजियस फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन रशिया, परफॉर्म्ड इन रेडबर्ग म्यूजियम स्विट्जरलैंड एंड हैज परफॉर्म्ड इन वेरियस कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। ही हैज ऑल्सो अकंपनीड लीडिंग आर्टिस्ट लाइक पद्म भूषण एंड संगीत कलानिधि श्री TN शेष गोपालन, मल्लाडी ब्रदर्स, श्री विष्णु देव, नेवली श्री संथन गोपालन, श्री OS अरुण, मामबलम सिस्टर्स, डॉक्टर मंदा सुंदरानी, डॉक्टर के वागीश, डॉक्टर TV मणिकंदन, डॉक्टर कन्न कुमार एंड अदर रिनाउंड आर्टिस्ट्स। अकंपनीड इन वेरियस प्लेसेस लाइक संगीत नाटक अकेडमी, श्री संकट मोचन हनुमान टेम्पल इन वाराणसी, स्पिक मैके, IGNCA, Andhra Bhavan, India International Center, India Habitat Center, Chinmay Mission, Telugu and Malayali Associations, etc. Today, he is accompanied on Mridangam.

0: ये था जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया गया राग मणिरंगू। कार्यक्रम को जारी रखते हुए जी राघवेंद्र प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग वराली। रचना के बोल हैं शेषाचल नायकम। इसके रचनाकार हैं मुथुस्वामी दीक्षितर। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: That was राग मणिरंगू। Continuing his recital, G. Raghavendra Prasad now presents another composition based on Rag Varali. Composition is Shesha Chalinayakam, composed by Muthuswami Dikshitar and is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया गया राग वराली। अपने कार्यक्रम का समापन जी राघवेंद्र प्रसाद राग बिलहरी इसे कर रहे हैं। रचना के बोल हैं श्री चामुंडेश्वरी पालय माम। इसके रचनाकार हैं मैसूर वासुदेवाचार। ये रचना आदि ताल में निबद्ध है।
1: जी राघवेंद्र प्रसाद कंक्लूड्स हिज वायलिन रिसाइटल विद रागम बिलहरी। कॉम्पोजिशन श्री चामुंडेश्वरी पालय माम, कंपोज्ड बाय मैसूर वासुदेवाचार एंड इज सेट टू आदितालम।

0: आज के कार्यक्रम में आपके साथ मृदंगम पर यशवंत हम्पी होली और घटम पर वरुण राजशेखरन संगत कर रहे थे। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by Yashwant Hampi Holi and on Ghatam by Varun Rajashekharan. With that, we conclude tonight's Ravivasriya Akhil Bhartiya Sangeet Sabha. This program was earlier recorded in the studios of Akashvani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashvani.
2: अभी आप सुन रहे थे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश भेजी है हमारे इन सभी श्रोता साथियों ने, और ये हैं ग्राम बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, सारागांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, और ये साथी हैं

इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले, इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म जन्नत का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है के की और गीतकार है सैयद कादरी और संगीत दिया है प्रीतम ने।

नूपुर, ऋषिका, रॉबिन और डबवाली हरियाणा से जे के बोकाल्टा, श्रीमती सुनीता बोकाल्टा, संजय, अनिल, मीनू और भोपाल से ही मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता, लाली श्रीवास्तव, विमल, आशा, राधिका श्रीवास्तव। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है तुम मिले इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है नीरज श्रीधर की, गीतकार है कुमार और संगीत है प्रीतम का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है फिल्म वो लम्हे से, जिसके लिए आवाज़ है के की, गीतकार है नीलेश मिश्रा, संगीत है प्रीतम का, और सुनना चाहते हैं रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर बिरक, जैतेंग बिरक, मीका बिरक, मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, निवान शर्मा, और बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, आपार ढिंगिया। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है वो लम्हे का ये प्यारा सा गीत।

अगली फरमाइश है बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी, सानवी, और ये हैं राजस्थान कवाई 12 से, सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, ग्राम सनोतिया, जिला गुना से मांगीलाल चंदेल, अरविंद, अशोक कुमार, राजकुमार, हिमांशु, और ये साथी हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मिति पंचोलिया। इन साथियों ने सुनना चाहा है राज थ्री फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है जावेद अली की। गीतकार हैं राशिद खान और संगीत भी राशिद खान का है।

अगली फरमाइश है हमारे इन सभी साथियों की, ये है छाबड़ा जिला 12 से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी, शमीम बानू, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन, प्रयागराज भट्ट।

ये साथी हैं रिंगनी से, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म गैंगस्टर का गीत, जिसके लिए आवाज़ है केके की। गीतकार है सैयद कादरी और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: इस समय आप है हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आगे सैलरी?
4: हाँ।
3: नहीं झुमके? ना, पहले बचत,
4: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
4: लेकिन झुमकों का क्या?
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
8: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
9: क्या?
8: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
9: वो कैसे?
8: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
9: पर सुनेंगे कैसे?
8: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
10: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: तुम भी, ए भैया वही राह तुम भी चुनो मेरे भैया, वही राह तुम भी चुनो मेरे भैया, चमुनियों की कहनी सुनो मेरे भैया, चमुनियों की करनी गुनो मेरे भैया।
1: अभी तक आपने सुना है कि जमुनिया अपने पति के साथ सुखी थी। खेती के लिए रतन के भाई करण ने गांव के जमींदार दीवान से 10,000 रुपए का कर्ज दिला दिया। बाद में छल पूर्वक कर्ज की राशि 25,000 करवा दी। रतन को जब इस बात का पता चला तो वो इसे सह नहीं पाया और उसने आत्महत्या कर ली। उसी समय जमुनिया ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसे उसने नाम दिया चिरैया। इसी समय करण ने जमुनिया को

0: से निकाल दिया। छल पूर्वक उसने जमुनिया का बेटा भी हत्या लिया। पास के एक गांव के सहृदय झुल्लन ने उसे आसरा दिया। गांव के ही एक गुरुजी के पास जाकर उसने शिक्षा प्राप्त की। करण के पास कुछ भी नहीं बचा था। आखिरकार दीवान ने करण की पत्नी और गोलू को बंधुआ मजदूर बनाकर अपने पास रख लिया। इसी बीच गांव के सरपंची का चुनाव आया। अभी तक दीवान ने अपनी पत्नी से पर्चा भरवा दिया, उधर गांव के लोगों ने जमुनिया से भी सरपंची का पर्चा भरवा दिया। चुनाव प्रचार जारी था। दीवान छल बल प्रलोभन के भरोसे जीतना चाहता था और जमुनिया अपनी सच्चाई, लोगों के प्रति हमदर्दी और गांव के विकास के भरोसे जीतना चाहती थी।
1: नमस्ते शिल्पी बहन, क्यों बुखार आ गया?
2: अरे आओ जमुनिया, आओ, थोड़ी हरारत है, ठीक हो जाएगी।
3: अरे हाँ, तुम बैठो, मैं कागज भूल आया हूँ, अभी लेकर आता हूँ।
1: कैसा कागज, क्यों जयंत भैया?
3: ये लो, इसे ठीक से पढ़ लेना और कोई गलती हो तो बताना।
1: जी।
3: अरे इतनी जल्दी मत पढ़ो, आराम से बैठकर एक एक नाम पढ़ना। जिनके नाम होने चाहिए ना हो तो अलग से नोट कर लेना, और जिनके नाम नहीं होने चाहिए वो हो तो उन्हें भी अलग से नोट कर लेना।
1: जी कोशिश करूंगी, तो फिर चले?
3: हाँ चलो।
1: चलिए।
4: आ गया यार, देखो जीवन के चलते तो अंग्रेजी मिल गई, नहीं तो ये सारी भी नसीब नहीं होती यार।
3: जमुनिया, ये कौन है जो शराब के नशे में गिरा पड़ा है?
1: इसी गांव का है, चुनाव से पहले दीवान ये भी पिलाता खिलाता है ना,
2: पर ये तो ठीक नहीं है।
3: हाँ, ऐसे तो खुलेआम चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन है। जमुनिया, हमें कुछ करना चाहिए।
2: हाँ जमुनिया,
1: हम क्या कर सकते हैं? दीवान को जाकर कहें कि इनको दारू मत पिलाओ, तो क्या वो मान जाएगा?
3: अरे नहीं, हमें दीवान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी शिकायत चुनाव अधिकारी से करूंगा।
2: मगर ये तो बताओ, हम साबित कैसे करेंगे कि दीवान दारू पिला रहा है?
3: हम ये कहां कहेंगे कि दीवान पिला रहा है, चुनाव अधिकारी भी तो कुछ पता करेगा ना।
2: अरे दीवान उसे मिला लेगा।
3: मेघा, इस तरह तो हम पहले ही हार बैठेंगे, कुछ तो कहीं भरोसे लायक होगा, हम हार कर क्यों बैठे? शिकायत से दीवान को यह तो लगेगा कि चुनाव में हर बार की तरह दारू पिलाने का उसका तरीका चुपचाप स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा। हमें उसे ये तो बताने का हक है कि हम जागरूक हैं।
2: एक काम मेरी समझ में और आ रहा है।
3: वो कौन सा?
1: वो क्या मेघा दीदी?
2: देखो, गांव वालों को हम रोज समझा रहे हैं, उन्हें एक तरह से प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो जाने कि वोट का मतलब क्या है, उसकी ताकत क्या है।
1: वो तो है, ये खाली कागज का टुकड़ा नहीं है जिसे भेड़ बकरी की तरह बिना सोचे समझे ही डब्बे में डाल दिया जाए।
2: है, तो आज हम एक काम करते हैं।
1: क्या?
2: आज औरतों की एक सभा करते हैं, छोटी मोटी, उन्हें समझाएंगे कि वोट में कितनी ताकत होती है ना, उनसे आग्रह करेंगे एक दिन के लिए।
1: वाह दीदी, बात मेरी समझ में भी आ रही है। कुछ कुछ
2: क्या समझ में आ रहा है? कुछ।
1: देखो भाई लोग, ये जो दारू की लत है, एक दिन में तो जाएगी नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि हमने कहा और वो लोग दारू पीना छोड़ दें।
3: तो फिर
1: हम बहनों से इतनी विनती करेंगी कि वोटिंग वाले दिन से पहले की रात वो अपने आदमियों से एक वादा ले कि कम से कम एक दिन दारू न पिए। इसके लिए वो खुद एक रात जागे, अपने अपने आदमी की निगरानी करे कि वो दारू न पिए, ताकि वोट डालने वाले दिन वो होश में रहे। जिसे भी वोट डालना है वो सोचने समझने लायक हो, नशे में वोट डालने की आदत रोकनी होगी।
3: वाह जमुनिया, ये हुई ना कुछ बात।
2: हाँ, पर एक आदर्श स्थिति है ये, अगर हो जाए तो।
1: चलो मान लेते हैं कि सभी लोग ऐसा नहीं करेंगे, पर कुछ तो होगा। बिल्कुल कुछ न करने से भी तो अच्छा है कि कुछ किया जाए।
3: हाँ, तो फिर हो जाए आज शाम महिला सभा।
1: हो जाए।
5: तो आई तो है पर वो तो आई नहीं आज की बात है अपन और का नहीं तो का इसीलिए तो आए हैं
6: तो बोले नहीं
5: वो तो आई नहीं
6: बहनों
5: चुनाव
6: शुरू
5: हां वो बोल बोल रही है
6: सुन
1: बहनों
6: हां
1: हमने जानबूझकर ये सभा आप बहनों के लिए बुलाई ये बताने के लिए कि आने वाले समय में इस गांव का विकास हो हमारी जिंदगी बेहतर हो और इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका हो इसके लिए हमें क्या करना है ना और कैसे करना है ये आपको जमुनिया जी बताएंगी।
7: बहनों हम आपके ही बीच के हैं थोड़ा बहुत पढ़े तो जे बात हमारी समझ में आई वो आप लोगों को बताना चाहते हैं। ये ठीक है मर्द इस समाज के अगुआ हैं अपना घर बार चलाने अपनी इज्जत बचाने में उनकी बड़ी जिम्मेदारी है।
6: बिल्कुल ठीक बोल रही
7: पर परिवार दो पहियों की गाड़ी से चलता है हमारी जिम्मेदारी भी कम नहीं है।
6: बिल्कुल सही कहा
7: अपने आदमियों की दारू पीने की लत से तो हम सब वाकिफ हैं ये बुराई रातों रात तो जाएगी नहीं पर आप लोग दिल से कहिए क्या शराबी पति किसी को अच्छा लगेगा। तो हम कोशिश तो कर ही सकते हैं कल के बजाय आज से और फिर अभी से अपने अपने आदमियों से वादा लेना है कि कम से कम एक दिन के लिए वे दारू न पीने की कसम खाएं। आप अपनी कसम दीजिए कि वो वोट डालने से पहले वाली रात वे दारू ना पिए ताकि जब वोट डाले तो होश में हो उन्हें पता हो कि वे क्या करने जा रहे हैं बल्कि आप खुद निगरानी करिए कि वे दारू ना पिए। मैं ये नहीं कहती कि वोट मुझे दीजिए जिसे भी दे बस सोच समझ कर दें।
8: पर जमुनिया दीदी आपकी बात तो चलो मान लेते हैं पर इसमें हमारा क्या फायदा होगा।
9: जे लो जे तो फायदा और नुकसान लेकर उड़ गई। अरे जमुनिया बहन ने इतना अच्छे से समझाया है पर इनकी समझ में ही नहीं आया।
6: बात नहीं कर रही
9: तो क्या गलत तो कह रही तुम।
7: बहन फायदा नुकसान तो बात की बात है पर आप ये बताइए कि ऐसा न करके आपको क्या फायदा मिल रहा है।
9: तो वही तो
7: वही जिल्लत भरी जिंदगी।
9: सही है
7: जब तक हम कुछ अलग करेंगे नहीं अलग होने वाला भी नहीं। बहनों ये बात मैं बहुत सोच विचार कर कह रही हूँ मुझे पक्का भरोसा है कि अगर यह करने में आप कामयाब रही आने वाले दिन आज से बेहतर होंगे।
6: उसी दिन का तो इंतजार कर रहे हैं हम सब।
7: अपने आप को अपनी ताकत को पहचानिए।
10: आपकी बात हमारी समझ में आ रही है।
7: एक बात और समझना जरूरी है।
6: वो क्या?
7: जैसे अभी एक बहन ने पूछा कि हमारा क्या फायदा होगा तो जब तक हम सामूहिक फायदे की नहीं सोचेंगे तब तक किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला।
9: सही में सब इकट्ठे होके सोचो।
7: हम अलग अलग फायदे की सोचते हैं इसी कमजोरी का फायदा उठाकर लोग हमारा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम समझ ही नहीं पाते। गौर से देखिए क्या ऐसा नहीं है?
9: ऐसा ही है।
7: एक अच्छी शुरुआत की कोशिश करके तो देखिए।
6: जरूर करेंगे।
8: पर जमुनिया दीदी मेरा आदमी तो दारू पीता नहीं पर हाँ अब मुझे भी कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है।
7: ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। आप तो दूसरी औरत

0: से भाग्यशाली हैं।
1: हाँ जी,
0: तो क्यों ना आप दूसरी बहनों की मदद करती हैं?
1: ठीक है जमुनिया बहन।
2: हाँ, हम ये करके देखेंगे और आपको वचन भी देते हैं, है ना? हाँ, सब लोग करेंगे, है ना? हाँ,
0: तो हम भी आप लोगों को वचन देते हैं कि ईश्वर ने चाहा तो आने वाला समय हमारा होगा।
3: अरे अरे अरे जंदी फंदी, क्या सुन रहे हैं हम? ये
4: जी मालिक
3: कर रहे हो? अरे जई, ये जमुनिया ससुरी लोगों की शराब छुड़वा रही है।
4: सुना तो हमने भी यही है मालिक।
3: सुना तो हमने भी यही है। अरे कमबख्त, तो सुनते ही रहोगे या कुछ करोगे भी है? अरे चुनाव सिर पर चढ़ता आ रहा है और तुम लोग खाली सुन रहे हो।
4: अब ये तो है मालिक।
3: सुनो जी, लोगों में दारू की लत अभी से बढ़ा दो।
4: आओ मालिक,
3: दारू को दरिया की तरह बहा दो। कुछ भी करो, मुझे ये चुनाव जीतना ही है।
4: आओ मालिक, बिल्कुल
5: बिल्कुल मालिक।
3: अरे पहले मुझे लग रहा था कि ये जमुनिया कहाँ ठहरेगी, दीवान के सामने, मालकिन के सामने, पर बात तो ससुरी गंभीर होती जा रही है।
4: हाँ मालिक।
3: अरे अब तो नाम का सवाल होता जा रहा है। अरे अरे तुम लोग अगर कुछ नहीं कर पाए तो सबसे पहले तुम लोगों को ही मार डालूंगा।
4: नहीं मालिक।
3: अरे आग तो गांव में भी लगाऊंगा, पर तुम लोगों को मार डालने के बाद
4: इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मालिक। हम लोग आपको भी जानते हैं और गांव वालों को भी।
5: और क्या?
3: चुप, खींची खींची खींची बंद कर। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, इसे गंभीरता से लेना। किसी भी कीमत पर मुझे ये चुनाव जीतना ही है।
4: हाँ मालिक।
3: अरे पहले तो सोचता था ये जमुनिया फमुनिया मेरा क्या बिगाड़ लेगी, चुनाव लड़ना चाह रही है, लड़ ले। अरे जीतना तो मालकिन को ही है, पर धीरे धीरे ये जमुनिया विषैली नागन बनती जा रही है। अरे इसके फन को कुचलो जल्दी।
4: आप तो बेहद नाराज हो रहा है मालिक, देखिए तो सही नागिन को हम कैसे नचाते हैं।
6: अच्छा बेटा, सफेदे उठो, नहीं तो मालिक और नाराज हो जाएंगे।
3: मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। सोच लो।
4: सोच विचार कर ही जा रहे हैं मालिक।
3: हाँ तो जाओ जल्दी।
7: अरे चिरैया।
8: हाँ माई।
7: बाबा कहाँ गए रे?
8: अभी तो यही थे, लगता है कि कहीं बांस खरीदने तो नहीं चले गए।
7: तू ठीक कह रही है रे, कई दिनों से काम धाम कुछ कर नहीं पा रही हूँ। चुनाव प्रचार का भूत सिर पर सवार है, बाबा बेचारे अकेले ही काम कर रहे हैं, क्या करूं।
9: अरे जमुनिया।
7: बाबा।
9: कुछ करने की जरूरत नहीं है बिटिया, तू जो कर रही है वही बहुत है, सब लोग तो अपने अपने के लिए कर रहे हैं। अरे एक तू ही है जो सबके लिए कर रही है। अरे बिटिया कुछ दिनों की बात तो है, फिर तो मैं संभाल लूंगा, बाद में तो इस गांव की तस्वीर बदलेगी, ऐसा मुझे लगा है।
7: इसमें तुम्हारा भी तो साथ बहुत खास है बाबा।
9: हे, ये तुम्हारे हाथ में कागज कैसा है बेटा?
7: ये हमारे गांव की वोटर लिस्ट है, जयंत शहर से लाए थे, मुझे दिया है देखने को। बाबा।
9: हाँ?
7: तुम सबको जानते हो ना इस गांव में?
9: हाँ हाँ बिटिया जानता हूँ, पर शायद कुछ नौजवानों के नाम याद ना आए, चेहरे से तो सभी को पहचानता हूँ, क्यों पूछ रही हो बिटिया?
7: बाबा थोड़ी देर मेरे साथ बैठो ना।
9: हाँ।
7: मैं नाम पढ़ती जाती हूँ।
9: हाँ।
7: तुम बताते जाना कि ये सब लोग अपने गांव के हैं कि नहीं।
9: अच्छा ठीक है, चल पूछ।
7: धुल्लन।
9: हाँ।
7: फुलवा।
9: हाँ बिटिया ये तो सब सही है।
7: रतन। अरे ये तो अपना ही आदमी है। पापा।

0: रही हो?
1: ये झुनझुना थमा दिया है, उसे ही बचा रही हूँ।
0: अच्छा, तो वोटर लिस्ट देख रही हो?
1: हाँ, पर बेकार है ये लिस्ट। मेरे आदमी का नाम है, शारदा बहन का नाम है, जबकि ये दोनों इस दुनिया में है ही नहीं। अब ठीक करवाओ इस लिस्ट को।
0: ये सब इतना आसान नहीं है। बस हम सब ये जानते हैं कि ये काम सरकार का है और उसे ही ठीक करना चाहिए।
1: तो फिर कौन करेगा?
0: हम सबकी जिम्मेदारी है अपना अपना योगदान देने की। और एक दिन में भी ये सब नहीं होता, बल्कि जब तक सब लोग भागीदारी नहीं करेंगे कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए कहता हूं, जन्म के लिए बच्चे के बारे में जितना जरूरी है सूचना देना, उतना ही जरूरी है मृत्यु की जानकारी देना। तभी आवश्यकता के हिसाब से योजना बनती है। विकास के लिए जरूरी चीजें इसी के आधार पर बनती हैं।
1: इसे भी ठीक करवाना पड़ेगा। अभी तो वोटिंग इसी के आधार पे होगी। इसमें जिसका नाम नहीं है वो वोट नहीं डाल पाएगा।
0: बिल्कुल। और हां जमुनिया, वोटिंग के दिन हमें ध्यान रखना है कि जो लोग नहीं है इस दुनिया में पर उनका नाम इस लिस्ट में है, उनकी जगह कोई दूसरा वोट ना डाल दे।
1: अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था।
0: अच्छा चलो, अब देखें कि कल की बात का गांव वालों पर क्या प्रभाव पड़ा है।
1: हाँ चलो। अरे ये दोनों कहाँ आ रहे?
0: ये तो दंदी फंदी है,
1: इधर कैसे आ रहे हैं?
2: नमस्ते जमुनिया जी, प्रचार कैसा चल रहा है?
1: क्यों, क्या करेंगे जानकर?
2: भैया, लगता है जमुनिया जी नाराज हैं हम लोगों से।
3: हमसे कोई खुश भी तो नहीं रह सकता।
2: भैया
1: चलो, अच्छा बताओ तो सही, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरे भले के लिए तो तुम लोग आने से रहे।
2: जी, हमारा जन्म पता है किस लिए हुआ है?
1: अब आप ही बता दीजिए।
3: हम सच्चे को कहते हैं सजग रहो और मक्कार को कहते हैं लूट लो।
1: ये क्या बात हुई?
2: अरे यही बात तो समझने की है जी। अच्छा, आप नारद मुनि को जानती हैं ना? वही घर घर में कलह पैदा करने वाले।
3: फिर भी उनको ऋषिवर नारद मुनि कहते हैं।
2: नारायण नारायण।
0: अरे ऋषिवर नहीं, ऋषिवर कहते हैं।
3: वो एक ही बात है, ये जो आप दारू ना पिए का प्रचार कर रही हैं ना, उससे दीवान जी बहुत नाराज हैं। आप लोग लोगों के खाने पीने पर भी पाबंदी करेंगी?
2: अभी तक तो सब कुछ सह रहे हैं हमारे मालिक। हाँ, लेकिन लड़ाई बहुत गहरी होती जा रही है। हम बताए दे रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर रहिए।
1: आप लोग हमें समझा रहे हैं कि धमका रहे हैं?
3: आपको क्या लग रहा है?
1: हमें तो लग रहा है कि आप धमका रहे हैं।
2: अरे नहीं जी, बात यह है कि हम किसी की लड़ाई खुद नहीं लड़ते। अरे सबको अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ना होती है। अब वो तो बात यह है कि बात बहुत ज्यादा न बढ़े इसलिए आ गए। क्यों भैया?
3: हाँ बता गए, इस चुनाव को दीवान अपनी नाक का सवाल मानता है, बाकी आप जानो।
2: हाँ जी।
1: अच्छा तो आप लोग यहाँ से सिधारो, हमें समझाने और राय देने के लिए धन्यवाद। जयराम जी की। नारायण नारायण
2: नारायण नारायण।
4: अरे चमुनिया, आज गुरु जी की याद कैसे आ गई तुम्हें?
1: प्रणाम गुरु जी।
4: प्रणाम प्रणाम, जीती रहो बेटा जीती रहो। आजकल तो धुआंधार चुनाव प्रचार हो रहा है, इसीलिए इधर आने का अवसर नहीं मिला होगा ना।
1: ये तो सही है गुरुजी, पर आप ही ने इस जमुनिया को इस लायक बनाया है कि आज सरपंची का चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पाई हूँ।
4: भाई तुम्हारे अंदर वो जो जमुनिया है, अगर उसमें इतना साहस ना होता तो अकेले गुरुजी क्या कर लेते बेटा। ज्ञान परस्पर दोनों की इच्छा पर ही निर्भर करता है, पाने वाला और देने वाले का साझा होता है। ये तुम्हारे हाथ में कैसा कागज है बेटा? भाई मेरी कोई

0: सहायता की जरूरत हो तो जरूर कहना।
1: आपने ठीक पहचाना, ये इस गांव की वोटर लिस्ट है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: बहुत से लोगों का नाम मुझे पता नहीं है।
0: हाँ।
1: आप ज्यादातर लोगों को जानते हैं।
0: हाँ।
1: इसलिए लाई हूँ कि एक बार आप देख लें, सरसरी तौर पर बताते हैं कि अभी कोई गलती हो भी तो ठीक नहीं हो पाएगी, उसमें समय लगता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: पर कम से कम उन लोगों के फर्जी वोट ना डलने पाए जो इस समय हमारे बीच में नहीं है। हम चुनाव में इस बात पर नजर रखेंगे कि कहीं वो अगर ऐसा करेंगे तो उसका विरोध कर सके।
0: ये बिल्कुल ठीक होगा बेटा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये तुम इसे मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इसे आराम से देख लूंगा है, और इतना तो फिर बाद में मैं तुम्हें बता ही सकता।
1: अच्छा गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए, चलती हूँ, प्रणाम।
0: विजयी हो जमुनिया, तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा।
2: अरे हम कह रहे हैं, बस एक दिन की खातिर हमारी बात मान लो।
3: ये क्या मजाक है, मत पियो की रट लगा रखी है। अरे एक दिन नहीं पीने से क्या हो जाने वाला है भाई, कौन सा बड़ा आसमान फट पड़ेगा बता।
2: अरे हम हमेशा के लिए छोड़ने की बात तो कर नहीं रहे हैं। अरे बस चुनाव से एक दिन पहले मत पियो, बस बस। हाँ,
3: बाद में पूछेगा कौन दारू के लिए, वो तो चुनाव की होने की खुशी में दीवान जी पिला रहे है, और तू कहती वही ना पियो।
2: अरे अभी तुम ठीक बात बोले हो, तुम्हारी वोट की औकात एक बोतल दारू ही ना है। अरे वोट के बाद तुम्हें पूछेगा कौन,
3: क्या
2: और का?
3: देख तू फालतू मेरा दिमाग मत खराब कर, चल।
2: अरे जरा सोचो तो सही। अरे दीवान के लिए तुम हो क्या?
3: क्या?
2: अरे एक बोतल दारू ही ना, और क्या? अब इतने सस्ते में क्यों बिक रहे हो?
3: अरे
2: अरे जब तक हम अपना सम्मान नहीं करेंगे ना, दूसरे को क्या पड़ी है? अरे मान लो ना, बस इतनी सी बात मान लो। और सुनो सुनो, हमारे सिर पर हाथ रख कर कहो। हाँ हाँ कहो ना कि ठीक है, तुम्हारी एक दिन वाली बात मानता हूँ, बोलो।
3: अरे
2: बोलो ना।
3: अरे हाथ खींच रहे।
2: अरे बोलो ना।
3: अच्छा ले, मान गए। अच्छी भाई ये औरत जात, चाहे तो आदमी की एक ना चलने पाए। चल मान ली, तेरी बात भी मान ली, पर ये बता जो कसम वसम का चक्कर के पूरे गांव की औरतों ने चला रखा है
2: और क्या।
3: अरे
2: हाँ हाँ, हम सब बहनों ने किसी से वादा किया है।
3: अरे?
2: कि वोट किसी को भी दो, पर पूरे होश हवास में दो।
3: ओहो।
2: अरे ये वोट बड़ी कीमती चीज है, इसे बेहोशी में मत गंवाओ। बस हाँ।
3: अच्छी बात है भवानी, अच्छी बात है। चल पीना छोड़ देंगे, खाना तो देगी।
2: अरे अरे खाने को किसने मना किया है, ये लो चोखा और लिट्टी भकोसो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया की 13वीं कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा

0: रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक।
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
0: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन?
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
0: सफर में
1: आपके साथ
0: आकाशवाणी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:58 होने को हैं।

0: लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने ओरछा स्थित श्री राम राजा मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों का निरीक्षण कर प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक शिवपुरी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 2 सितंबर को ग्वालियर में बलराम जयंती महोत्सव और सहकारी किसान समागम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम मेला मैदान परिसर में आयोजित किया जाएगा। उज्जैन में भगवान महाकाल की 5वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होकर महाकाल घाटी, गुदरी, बक्शी और कहारवाड़ी से होते हुए रामघाट पहुंचेगी। रात लगभग 8 बजे महाकालेश्वर मंदिर में यह यात्रा संपन्न होगी। भोपाल के रविन्द्र भवन में 7 दिवसीय रासलीला समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह समारोह में आज शाम 6:30 बजे कुमार विश्व एवं साथी प्रस्तुति देंगे। प्रवेश निःशुल्क रहेगा। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले ही दौर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच हारकर बाहर हो गए हैं। जोकोविच को कड़े और निर्णायक मुकाबले में अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण।

स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन। आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। श्रोताओं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव हमेशा धीरे धीरे आता है। सबसे पहले व्यक्ति की आदतें बदलती हैं, फिर दिनचर्या बदलती है और फिर ये एहसास होता है कि हमारी तो पूरी जीवन शैली ही बदल चुकी है। श्रोताओं, आज हमारे दिन की शुरुआत से लेकर रात को सोने से पहले तक ऐसी अनेक गतिविधियां हैं जिनमें तकनीक हमेशा साथ रहती है। पढ़ाई, मनोरंजन, खरीदारी के साथ साथ अपनों से बातचीत में भी डिजिटल माध्यम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। श्रोताओं, तकनीक ने निश्चित रूप से हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाया है, लेकिन हर सुविधा अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आती है। तकनीक का प्रयोग करने के साथ आवश्यक है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहें, क्योंकि हमारी डिजिटल जीवन शैली हमारे शरीर के साथ हमारे मन को भी प्रभावित करती है। श्रोताओं, लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सिर दर्द, गर्दन और कमर में दर्द जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। देर रात तक मोबाइल चलाने से नींद भी प्रभावित होती है। मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी को भी प्रभावित कर सकती है। साथ ही

लगातार सोशल मीडिया पर बने रहने से तनाव, चिंता और बार बार फोन देखने की आदत हो जाती है। श्रोताओं, इन आदतों का हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रख हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। हर 20 से 30 मिनट के बाद स्क्रीन से नजर हटाकर कुछ देर तक दूर देखें। सोने से कम एक घंटे पहले मोबाइल, लैपटॉप का उपयोग ना करें। रोज योग, व्यायाम, प्राणायाम करें या पैदल चलें। भोजन करते समय स्क्रीन से दूरी रखें। संभव हो तो परिवार और दोस्तों से आमने सामने ही बात करें, यानी तकनीक का प्रयोग करें, लेकिन सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हम स्क्रीन को समय दें, लेकिन अपने स्वास्थ्य, परिवार और वास्तविक जीवन को अधिक महत्व दें, क्योंकि जब जीवन में संतुलन आता है तो जीवन में खुशियों की मीठी मीठी चाशनी अपने आप ही घुलने लगती है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। श्रोताओं, हमारी रसोई में हमारे आसपास कई ऐसे बीज मौजूद हैं जो आकार में भले ही छोटे हों,

0: लेकिन पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन बीजों में क्या खास है, किस तरह हम अपने भोजन में इन्हें शामिल कर सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब देती वार्ता हम आपको सुनवा रहे हैं। वार्ताकार हैं डॉक्टर निधि पांडे।
1: नमस्कार, मैं निधि पांडे हूँ। मैं आहार एवं पोषण विशेषज्ञ हूँ। अक्सर जब आहार और पोषण की बात होती है तो बहुत सारी चीजें डिस्कशन में आती हैं। क्या खाना चाहिए, मोटापा कैसे कम होना चाहिए, पैरों का दर्द कैसे कम होना चाहिए, बच्चे को यदि फीड करा रहे हैं तो क्या खाना चाहिए। आज हम बात करेंगे सीड्स की, यानी कि बीजों की। हमारे खाने में या हमारे भोजन में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो पोषक तत्वों में गिनी जाती हैं, पर सीड्स जो हैं इनका जो महत्व है ये पिछले कुछ वर्षों से बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आइए जानते हैं कुछ इंडियन सीड्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगी अलसी के बारे में, जिसको कि लिनसीड भी कहा जाता है। अलसी आज से कुछ दशक पहले वेस्ट मटेरियल के तौर पे फेंक दी जाती थी, पर अब इसके जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं ये बहुत सारे हैं। अलसी में रेशे की मात्रा बहुत अच्छी होती है, ओमेगा 3, अल्फा लिनोइक एसिड, लिग्निन, कुल मिलाके ये सारे तत्व आपकी हड्डियों को मजबूत रखने का काम करते हैं, आपके हार्ट की जो फंक्शनिंग है इसको सही रखने का काम करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को ये लगता है कि उनको जॉइंट्स की थोड़ी बहुत दिक्कत है, घुटने में परेशानी है या कमर दर्द से पीड़ित हैं, वो लोग भी यदि अलसी का नियमित सेवन करते हैं तो वो अपनी इन छोटी मोटी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। अलसी को कैसे कंज्यूम करना चाहिए, इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसको तुरंत पीस के और फिर यूज करें, और या फिर आप इसको भूंज के रख लें और फिर उसके बाद इसको कंज्यूम करें। अलसी की जो ऊपर की परत होती है ये बहुत मोटी होती है, इसीलिए इन दोनों तरीकों से जब आप इसको खाते हैं तब ये आपके शरीर में ज्यादा फायदा पहुंचाने के काबिल हो जाती है। दूसरी चीज है राई। प्रायः राई बघार में यूज की जाती है, पर क्योंकि हम लोग बचपन से ये चीज खाते आ रहे हैं हम शायद इसको इतना महत्व नहीं देते हैं। क्या आप जानते हैं कि राई जो है ये दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाली स्पाइस है। इसमें अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में यदि राई हम लेते रहते हैं तो ये पेट में जो कृमि बनती है इसको नाश करने में बहुत कारगर साबित होती है। इसके अलावा एंटी एजिंग के लिए आपकी जो स्किन है ये सुंदर दिखे, आपकी अतड़ियों की स्किन है ये भी अंदर से साफ रहे और आपकी हड्डियों में मजबूती बनी रहे, इन सारी चीजों के लिए जो तत्व जरूरी हैं ये राई में बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यदि बच्चों को कृमि से संबंधित कोई परेशानी है तो राई पीस के उनके खाने में यदि मिलाई जाती है तो बहुत जल्दी ही इससे वो निजात पा सकते हैं। अब हम आते हैं कद्दू के बीज पे। कद्दू के बीज आज से कुछ दशक पहले लोग छील के रखते थे खाने के बाद या बीच में कभी खाते थे, अभी कद्दू के बीज जो है ये बहुत इन ट्रेंड आ चुके हैं। इसमें मूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और लगभग सारे मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, प्रोटीन, ये सारी चीजें बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहती हैं। पर हम कद्दू को यूज करके उसके बीज फेंक देते हैं। यही बीज यदि हम कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं जानते हैं। ये एंटी एजिंग के लिए यानी चेहरे की स्किन और आपके पूरे शरीर की स्किन और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी चीज है। मासिक धर्म के दौरान यदि नसों का खिंचना या पेट में दुखना या कमर दर्द होना जैसी परेशानियां हैं तो कद्दू के बीज को भूंज के उसमें थोड़ा सा हल्दी, काला नमक वगैरह डाल के आप रख लें और इसको नियमित 1 से 2 चम्मच यदि आप लेते हैं तो आपकी ये परेशानी भी दूर हो सकती है। आजकल मोटापा बहुत बड़ा परेशानी का कारण है, तो जिन लोगों को लगता है कि उन्हें मोटापे से दूर रहना है या उन्हें अपना वजन कम करना है, उनके लिए भी भूंजे हुए कद्दू के बीज दिन में 2 चम्मच खाना खाने के पहले बहुत अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जिन्हें लगता है कि उनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता है, कद्दू के बीज का जो फाइबर है ये आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने का बहुत अच्छा काम करता है। तो रेगुलरली खाना खाने के पहले 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, जितनी आपकी शुगर है उसके हिसाब से, यदि बहुत ज्यादा है तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं। इस चीज का रेगुलर सेवन करने से आपका ब्लड शुगर नियंत्रित हो सकता है। अब हम आते हैं खसखस पे। खसखस है बहुत ही छोटा सा दाना, लेकिन ये पावर हाउस है न्यूट्रिशन का। इसमें आयरन, कैल्शियम और रेशा, ये तीन चीजें बहुत भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। यही वजह है कि जब महिलाएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उस समय उन्हें खसखस का पाउडर बना के या खसखस का हलवा बना के या फिर खसखस को किसी भी तरह से हरीरा में या लड्डू में शामिल करके दिया जाता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो सकती है, उस कमी को दूर करने के लिए खसखस से कारगर कोई और बीज हो ही नहीं सकता। और हाँ, यदि आपको लगता है कि आपको बच्चों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखना है तो हर ठंड में उन्हें खसखस का हलवा आधा चम्मच ही सही रोज खिलाएं। इससे उनकी हड्डियों का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा, उनकी मांसपेशियों के अंदर ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी, और यदि हड्डियों का डेवलपमेंट सही है तो उन बच्चों में विटामिन डी की कमी नहीं पाई जाएगी। इसके अलावा जिन महिलाओं को मेनोपॉज आ रहा है या अगले 6-7 साल में 10 साल में आने वाला है या जिनको आ चुका है, इनको भी खसखस का नियमित सेवन करने से बहुत फायदा हो सकता है और जो बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक हो चुकी हैं वो अब इससे ज्यादा उनमें से कैल्शियम का लॉस नहीं

0: होगा। किडनी से संबंधित परेशानियों में भी खसखस का सेवन जैसा बताया जाए उस हिसाब से यदि लिया जाता है तो उसमें राहत मिल सकती है। इसके बाद हम आते हैं सफेद तिल पे। हमारे यहाँ त्योहारों में अक्सर सफेद तिल यूज होता है, खासकर की संक्रांति में। सफेद तिल और काला तिल दोनों ही न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। सफेद तिल और काले तिल दोनों में लोहा, कैल्शियम, तेल और रेशा, ये तीन चीजें बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैल्शियम की। बहुत आसान तरीका है, जिन लोगों को तिल का कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है जिनसे, वो यदि रात में एक चम्मच पिसा हुआ तिल पानी में भिगो के रख देते हैं, एक ग्लास पानी में, और सुबह उसको छान के यदि लेते हैं, उससे शरीर में कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन भी बहुत अच्छा हो जाता है और इससे उन्हें कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। यही चीज काले तिल के साथ भी कर सकते हैं। इस चीज का नियमित सेवन करने से नर्व संबंधी परेशानी यानी नसों का खिंचना या जिनके परिवार में पैरालिसिस या अल्जाइमर्स या पार्किंसंस की परेशानी है, वो लोग इस चीज को, अगर वो 40 के ऊपर हैं, तो तिल का कंजम्पशन उनके खाने में किसी न किसी तरह होना चाहिए। बच्चों की हड्डियों को यदि मजबूत रखना है तो आपका जो रोटी का आटा है, इसमें आप यदि एक चम्मच तिल पीस के मिला लेते हैं तो ये रोटी कैल्शियम का इतना अच्छा सोर्स हो जाएगी कि इसके अलावा कुछ और चीज आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम वेट वॉचिंग की बात करते हैं यानी कि मोटापा घटाने की बात करते हैं, तो सौंफ, अजवाइन, अलसी और तिल, इसका एक मिक्सचर बना के आप रख लीजिए और इसको दिन में 3-4 बार आप लेते रहिए। यदि आप इसको भूंज के रखेंगे तो इसको खाना जरा सरल हो जाएगा। तिल के लड्डू यदि गुड़ के साथ बनते हैं तो ये आयरन और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स रहते हैं और आपकी हड्डियों में जितना कैल्शियम निकल चुका है, बाकी के कैल्शियम को रोकने में भी बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। यदि यही तिल का लड्डू शक्कर के साथ रहता है तो इसके फायदे थोड़े कम हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप तिल का लड्डू गुड़ के साथ खाएं, कभी कभी सफेद तिल का और कभी कभी काली तिल का। अब हम आते हैं सूरजमुखी के बीज पे, यानी कि सनफ्लावर सीड्स। ये चीज जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज से अब धीरे धीरे भारत में आ रही है। सनफ्लावर सीड्स भी प्रोटीन का यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। ये किन लोगों को यूज करना चाहिए? पहले तो ये बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया जाना चाहिए। 40-45 के ऊपर यदि हो गए हैं महिलाएं और पुरुष, तो उनके लिए सनफ्लावर सीड्स का कंजम्पशन उनके पूरे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रख सकता है। ब्रेन फंक्शनिंग को यानी आपके दिमाग की सोचने समझने की जो शक्तियां हैं, इसको बहुत अच्छा करने में ये इफेक्टिव साबित हो सकता है। इसमें मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटेशियम, आयरन, सेलेनियम, जिंक, यानी कि वो सारे तत्व जो आपके दिमाग को, आपके हृदय को, आपके सांस लेने वाले तंत्र को और आपकी अंतड़ियों को स्वस्थ रखते हैं, ये सारे तत्व इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद हैं। इसको कैसे कंज्यूम किया जाना चाहिए, इसको भी भूंज के आप रख लें और आते जाते 1-2 चम्मच खा सकते हैं। किसी भी तरह के सीड्स को यदि आप खाने के आधे घंटे पहले खाते हैं, तो खाने में यदि आपको 4 रोटी की भूख थी तो वो भूख कम होके 2-2.5 रोटी तक आ सकती है और उसी नरिशमेंट में आपका शरीर बहुत अच्छे से फंक्शन कर सकता है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि यदि परिवार में पार्किंसंस, पैरालिसिस या अल्जाइमर से संबंधित किसी भी तरह की परेशानियां हैं, तो उसमें सूरजमुखी के बीज देना भी बहुत कारगर साबित हो सकता है। यदि आप 40-45 के ऊपर हैं, तो इसको हफ्ते में एक दिन छोड़ के रोज 1-1.5 चम्मच खाने के आधा घंटा पहले जरूर लें। इसके बाद हम आते हैं मेथी दाना पे। मेथी दाना जो है हम बघार में यूज करते हैं और शायद हर कोई अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से खाता है या यूज करता है, पर हमें ये जानना जरूरी है कि इसके फायदे और नुकसान क्या है। मेथी को यदि पानी में भिगो के रखते हैं रात भर, एक ग्लास पानी में, और सुबह लेते हैं, तो ये बादी हटाने का यानी कि मोटापा घटाने का बहुत अच्छा काम करता है। यदि मेथी को थोड़ा सा दरदरा पीस के खाने के 20-25 मिनट पहले आप 1-2 चुटकी ऐसी मेथी लेते हैं, तो ये आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित करने का बहुत अच्छा काम कर सकता है। जिनको ऐसा लगता है कि उन्हें कब्ज से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी है, तो वो मेथी के अंकुरित बीज यदि लेते हैं रोज खाने में सुबह, दोपहर, शाम, तो ये उनकी कब्ज की परेशानी पूरी तरह से मिटाने में कारगर साबित हो सकता है। ठंड के दिनों में मेथी के लड्डू या मेथी से बनने वाली अलग अलग मिठाई बहुत इफेक्टिव चीज है और इसको जरूर लीजिए। लेकिन मेथी आपका ब्लड शुगर बहुत तेजी से कम करने का काम करता है, तो जिन लोगों को शुगर की बिल्कुल भी परेशानी नहीं है, मेथी उनके लिए नहीं है। उन लोगों के लिए सिर्फ यदि बघार में आप थोड़ी बहुत मेथी यूज करते हैं, उतना आपके लिए काफी है। आप उसके अलावा यदि बहुत ज्यादा मेथी यूज करते हैं किसी भी कारणवश, तो वो आपका ब्लड शुगर बहुत लो लेके आ सकता है और आपको लो बीपी की समस्या भी लेके आ सकता है। तो मेथी एक ऐसी चीज है जिसको थोड़ा सा सोच समझ के यदि आप यूज करते हैं तो आप इसके फायदे ले सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पोषण बीज विषय पर डॉक्टर निधि पांडे से वार्ता, और अब सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। श्रोताओं, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे बिग डेटा और स्वास्थ्य अनुसंधान की। श्रोताओं, आज के समय में अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, लैब रिपोर्ट, टीकाकरण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण और पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों से हर रोज बड़ी मात्रा में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एकत्रित होती है। जब इस विशाल जानकारी का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाता है तो इसे बिग डेटा कहा जाता है। ये बिग डेटा डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को नई बीमारियों को समझने, बेहतर उपचार खोजने और लोगों को स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नई नई योजनाएं बनाने में भी मदद करता है। श्रोताओं, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ मिलकर बिग डेटा स्वास्थ्य अनुसंधान को और भी सटीक बना रहा है। इससे रोगों की पहचान जल्दी हो सकती है, उपचार को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और भविष्य में बीमारी के जोखिम का अनुमान लगाने में भी सहायता मिलती है। इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी डेटा का उपयोग हमेशा सुरक्षित, जिम्मेदारी पूर्वक और निर्धारित नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। और अब रुख करते हैं मौसम की ओर और सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

पड़े। श्रोताओ, हमारी हर दिन की भोजन की थाली सिर्फ हमारी भूख को मिटाने या पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि स्वस्थ और लंबी जिंदगी की नींव भी है। सही मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, वसा शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ इम्यूनिटी भी देती है, दिल, दिमाग, हड्डियों और पाचन तंत्र को भी मजबूत करती है। इसीलिए कोशिश करें कि हमारी थाली में सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल हो। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए आपकी रेडियो दोस्त नेहा को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
4: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
6: क्या?
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
6: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: पर सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
3: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
4: लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार हैं देवीदास कुशवाहा और साथ ही इनसे आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे देवीदास कुशवाहा और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और आप हम आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में भारती विश्वनाथन की गाई गजलें। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में भारती विश्वनाथन की गाई गजलें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: इस समय आप हैं हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: और सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

ये गाना था फिल्म लोफर का, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म गहरा जख्म का एक गीत। विठल भाई पटेल ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है। सुनते हैं ये गीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:10 होने के हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार कुछ ही पल में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को ये निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि देश भर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की सटीक मात्रा अनिवार्य रूप से बताई जाए। अधिवक्ता नरेंद्र गोस्वामी द्वारा दायर याचिका में एथेनॉल मिश्रित ईंधन के गाड़ियों में इस्तेमाल की अनुकूलता के बारे में अधिक पारदर्शिता देने के निर्देश की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि पीठ ने उन्हें अपनी शिकायत लेकर संबंधित उच्च न्यायालय जाने की छूट दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज निवाड़ी जिले के ओरछा धाम में श्री राम राजा मंदिर परिसर और श्री राम राजा लोक के निर्माण एवं विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से प्रगति की जानकारी लेकर सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओरछा की प्राचीन धरोहरों को संरक्षित और संवर्धित करते हुए इसे धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
1: मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के माध्यम से ये धार्मिक पर्यटन का अद्भुत केंद्र बना रहे हैं। ऐसे में गौरवशाली अतीत राजा राम लोक का उस समय का भगवान राम के मंदिर बनाने के साथ यहाँ के शासकों ने जो अपने निवास बनाए स्थापत्य के अद्भुत ये उदाहरण है। वातानुकूलित आज ऐसी है लेकिन उस काल में भी ठंडे में गर्म गर्म से ठंडे रहने के लिए मौसम को रहने लायक बना करके रहना ये जो अद्भुत नमूने हैं ये प्राचीन धरोहर हमारे लिए हमारे गौरवशाली अतीत से सदैव जोड़ती है।
0: उज्जैन में भगवान महाकाल की भाद्रपद माह की पहली और इस वर्ष की पांचवी सवारी आज शाम 4 बजे निकलेगी। पूजन अर्चन के बाद बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे। सवारी के दौरान श्रद्धालुओं को भगवान के 5 स्वरूपों के दर्शन होंगे। रामघाट पर क्षिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक और पूजन किया जाएगा। इस बार सवारी में पहली बार सामाजिक संस्थाओं की ओर से एक रोबोट को भी शामिल किया जा रहा है। मंदिर समिति की अनुमति से शामिल इस रोबोट के रामघाट पहुंचने पर शिवधुन सुनाई जाएगी और आरती में भी यह रोबोट शामिल होगा। इसे सवारी के साथ कुछ दूरी तक चलाया जाएगा। उमरिया जिले में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की है। सुल्तानपुर गांव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक कोमल चंद्र गुप्ता के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की है। आरोप सही पाए जाने पर शिक्षक को तत्काल निलंबित कर मानपुर के विकासखंड शिक्षाधिकारी कार्यालय से अटैच किया गया है। मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में कल सुबह राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगणमन का सामूहिक गायन होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने वल्लभ भवन, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में बारिश का दौर फिर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को रीवा, मऊगंज, मैहर, सीधी, उमरिया के साथ शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, मंडला और सिवनी तथा बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल सहित कई जिलों में बारिश के आसार हैं। शहडोल में बाणसागर बांध के 6 गेट खोले गए हैं। प्रदेश में अब तक 27.2 इंच बारिश हुई है जो सामान्य से 9% कम है। वहीं क्रिकेट की खबर में महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल भारत ने थाईलैंड को 94 रनों से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। शेफाली वर्मा को 64 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। कुछ समाचार अब संक्षेप में। शिवपुरी जिले के 196 तीर्थयात्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 7 सितंबर को रामेश्वरम के लिए रवाना होंगे। इच्छुक बुजुर्ग कल शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। और सतना जिले में हो रही बारिश के चलते कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने पूरे जिले में आपदा प्रबंधन टीम और सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

0: संकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुकुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
2: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुकुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
1: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
3: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
5: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
1: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
5: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
6: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
6: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितंबर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
7: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
8: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर,

0: मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज़्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371 7117। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं, जावेद खान। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म त्रिशूल का एक गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है और खय्याम का संगीत है। और इस गाने की फरमाइश गाने के बाद।

त्रिशूल के इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश थी धामड़ी मनोरा से। लिखने वाले हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, उज्जवल डेरे और अनुत डेरे ने पसंद किया था। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई दतरेंगी से छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मनिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। अगला गाना लिया है हमने फिल्म नूर महल से, आवाज़ें सुमन कल्याणपुर की और साथियों की हैं। बाबा अफगानी ने इस गाने को लिखा है और जानी बाबू कव्वाल ने इसे संगीत से सजाया है। सुनते हैं ये गीत।

नूर महल के इस गाने को पसंद किया था सरोचोक अमरावती महाराष्ट्र से, कमर लठे केदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब, साइमा, मुश्तबा, आफिया खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी जय राज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, यास्मीन और प्रयागराज भट्ट। गाने की फरमाइश, इसी गाने की फरमाइश भेजिए पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से। लिखने वाले हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है मौसम। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी के साथ में लता मंगेशकर और साथियों की भी है। गुलजार ने इस गाने को लिखा है, मदन मोहन का संगीत है और ये फिल्म 1975 में रिलीज़ हुई थी। सुनते हैं ये गीत और इस गाने को किसने पसंद किया है, फरमाइश बाद में।

मौसम फिल्म में अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को। इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गौतम नगर जिला नादेड़ से प्रभाकर जोंदले, आरती जोंदले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया था जय किसान रेडियो श्रोता संघ कोटड़ा, बहादुरपुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं तूफान डांगी पटेल, नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पूलाल डांगी और विक्रम डांगी ने। और अगला गाना हमने लिया है चंबल की कसम से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है और खयाम का सही संगीत है।

चंबल की कसम फिल्म के गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। ये पत्र है, स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से लिखने वाले हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने इस गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद सौरव गौरव एल पी रोहित लल्लू राम पूरन रोहित छोटू और समस्त उनका परिवार। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर बबलू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, डॉक्टर डब्लू अंसारी और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और असमा खातून अंसारी, जेल रोड नई दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने इस गाने को पसंद किया था। अगला गाना हमने लिया है, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु। आवाज़ हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

फिल्म जीवन मृत्यु के इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंटी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने पसंद किया था। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी गोला बाजार बक्सर से, लिखने वाले थे श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित और उनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:58 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज निवाड़ी जिले के ओरछा में श्री राम राजा मंदिर

सर और श्री राम राजा लोक के निर्माण एवं विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से प्रगति की जानकारी लेकर सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को ये निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि देश भर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की सटीक मात्रा अनिवार्य रूप से बताई जाए। उज्जैन में भगवान महाकाल की भाद्रपद माह की पहली और इस वर्ष की पांचवीं सवारी आज शाम 4 बजे निकलेगी। पूजन अर्चन के बाद बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे। सवारी के दौरान श्रद्धालुओं को भगवान के 5 स्वरूपों के दर्शन होंगे। मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में कल सुबह राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगणमन का सामूहिक गायन होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने वल्लभ भवन, विंध्याचल भवन और सतपुड़ा भवन के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा और मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मैहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3 बजने को हैं। आइए सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा और आज का युवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 5:33 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 6:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 6:30 पर। कार्यक्रम आजकल 6:40 पर प्रसारित किया जाएगा और प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुन सकते हैं 6:45 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा 7:21 पर होगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया जाएगा। 8:00 का समय है कार्यक्रम सुर्खियों में आप सुन सकते हैं और फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 8:15 पर। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 9:30 पर। यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। आपकी फरमाइश 10:00। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज 10:30 पर रात में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर सुमती मोटाटकर का ध्रुपद धमार गायन, राग होगा खमाज। ये थे आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रम। मीडियम 50 TH के ऑडियो चैनल साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:02 होने को हैं। अब हमारा मीडिया वेब पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5:00 से आप हमारा मीडिया वेब का प्रसारण पुनः सुन सकते हैं। इस बीच DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

फ्रीडम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युव वाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त मार्गेशा।
1: और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त तनिष्का।
0: आज करेंगे हम आपसे ढेर सारी बातें और सुनेंगे कुछ बढ़िया से गीत। लेकिन तनिष्का, उससे पहले, क्योंकि अभी कल ही वीकेंड खत्म हुआ है और आज मंडे है, तो हम सभी के चेहरों पे कहीं ना कहीं मंडे सिकनेस मुझे दिखाई दे रही है।
1: बिल्कुल मार्गेश्वर, और इस बार का जो वीकेंड था वो एक लॉन्ग वीकेंड था और साथ ही राखी का त्योहार भी था, तो कहीं ना कहीं हम सभी उसी वीकेंड के हैंगओवर से निकल रहे हैं, है ना?
0: सही कहा। इस बार राखी ऐसी दिन आई थी जिसके कारण कई लोग अपने होम टाउन जा सके, अपने रिश्तेदारों के घर जा सके और ये राखी का त्योहार फिर से अपने लोगों के साथ मना सके। तो कहीं ना कहीं जब ये ऐसे दिन आते हैं और ये खत्म होते हैं तो हमें भी लोनलीनेस फील होती है और अचानक से जो अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया था उसकी याद भी हमें आने लगती है।
1: बिल्कुल, पर दोस्तों अभी तो ये त्योहारों का सिलसिला शुरू ही हुआ है और कतार से कई सारे त्योहार अभी आने को है। लेकिन उसके पहले आपकी लोनलीनेस को दूर करने के लिए हम आ चुके हैं आज का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम लेकर, जिसमें होने वाली है ढेर सारी बातें और ढेर सारी गीत भी।
0: लेकिन तनिष्का, उससे पहले तुम जानती ही हो कि हम सभी हमारे श्रोताओं से दो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछते हैं कार्यक्रम में और उन दोनों प्रश्नों के उत्तर उन्हें कार्यक्रम के अंत में बताते हैं। तो चलो आज भी यही सिलसिला जारी रखते हैं। तो आज की कड़ी का पहला प्रश्न है
1: कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है।
0: और दोस्तों इसी कड़ी में आज का दूसरा प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है और ये कहां पर स्थित है।
1: तो इसी के साथ आप सोचकर रखिए इन सवालों के जवाब और तब तक सुनिए ये प्यारा सा गीत।

0: मार्गेशा, अभी हमने त्योहारों से होने वाली थकान की बात करी और इन्हीं तैयारियों और भागदौड़ के बीच में कई बार ऐसा लगता है ना कि कोई बस कह दे कि चलो अब थोड़ा आराम कर लो।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने तनिष्का, क्योंकि थकान ना सिर्फ शरीर में नहीं होती, कभी कभी सिर भी इतना भारी लगने लगता है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता।
0: और ऐसे में अगर कोई प्यार से सर में थोड़ा तेल लगा दे और धीरे धीरे चंपी कर दे।
1: ओहो, तो फिर वो सिर्फ तेल लगाना नहीं होता, उसमें एक अलग ही सुकून होता है तनिष्का।
0: बिल्कुल, पता नहीं चंपी में ऐसा क्या जादू है, कुछ देर में सर इतना हल्का लगने लगता है ना, और साथ ही हमारा मन जो है ना वो भी बहुत शांत हो जाता है।
1: और शायद इसी छोटे से सुकून को बहुत मजेदार अंदाज में यादगार बना दिया है एक पुराने हिंदी फिल्मी गाने ने। दोस्तों, शायद आप भी वही गाना सोच रहे हैं, और आज के कुछ बातें कुछ गीत सेगमेंट में हम इन्हीं कुछ मजेदार गीतों की बात करेंगे जिन्होंने बड़े ही ऐसे छोटे छोटे लम्हों को बड़ा ही मजेदार और यादगार बना दिया है। तो आज जिस गीत की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं उसको आप सभी ने कभी ना कभी सुना ही होगा, और उस गाने की शुरुआत कुछ ऐसी होती है, सर जो तेरा चकराए।
0: हाँ दोस्तों,

0: आपको पता है इस गाने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। फिल्म प्यासा के संगीतकार थे सचिन देव बर्मन यानी कि SD बर्मन। गीत लिखे थे साहिल लुधियानवी ने और आवाज थी मोहम्मद रफी की।
1: लेकिन इस गाने के पीछे एक और खूबसूरत कनेक्शन है SD बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन यानी कि RD बर्मन का।
0: उस समय RD बर्मन अपने पिता के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने एक धुन बनाई जिसे बाद में प्यासा में इस्तेमाल किया गया
1: और इसी धुन पर साहिल लुधियानवी ने ऐसे बोल लिखे जो सुनने में बिल्कुल सहज लगते हैं लेकिन कितने मजेदार तरीके से चंपी को हर परेशानी का इलाज बना देते हैं।
0: सिर चकरा रहा है, चंपी करा लो। दिल परेशान है, चंपी करा लो। जिंदगी में कुछ भी गड़बड़ है भाई, चंपी करा लो।
1: उस जमाने का शायद सबसे सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर्मूला था, है ना तनिष्क का? नो थेरेपी, जस्ट सम चंपी।
0: यस। और इस पूरे गाने को अपनी आवाज से जो जादू दिया है मोहम्मद रफी ने, वो तो कमाल है।
1: क्या बात कर दी तनिष्क, ऊपर से जॉनी वॉकर का वो अंदाज, इसलिए गाना सिर्फ सुनाई नहीं देता, पूरा सीन बिल्कुल आंखों के सामने चलने लगता है।
0: और यही तो पुराने हिंदी फिल्मी गीतों की खूबसूरती है। एक तरफ संगीत की कहानी है, दूसरी तरफ उससे जुड़ी हमारी अपनी कहानी है।
1: सही कहा तुमने। किसी के लिए ये गाना थकान के बाद मिलने वाले सुकून की याद होगा,
0: किसी के लिए घर में होने वाली वो पुरानी चंपी नानी दादी की यादें।
1: और शायद आज आप भी इसे सुनते हुए किसी ऐसे ही अपने को याद करेंगे।
0: तो चलिए थोड़ी देर के लिए सारी भाग दौड़ को किनारे रखते हैं, सिर को थोड़ा सुकून देते हैं और सुनते हैं वो गाना जिसमें चंपी भी है, शरारत भी है और ढेर सारी यादें भी हैं।
1: तो फिर चलिए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म प्यासा से।

0: मार्गेशा, जिंदगी में कुछ सफर ऐसे होते हैं ना जिनका कोई तय ठिकाना नहीं होता है।
1: और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, बस चलते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां, और हर जगह से कोई ना कोई कहानी साथ ले आते हैं।
0: और शायद इसीलिए मुसाफिर शब्द में एक अलग सी खूबसूरती है।
1: सही कहा। और अगर इसे गाने में सुनना हो तो हम सबके दिमाग में ना एक गाना तुरंत याद आता है।
0: आपको भी याद आया, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना वाला गाना।
1: यही गाना। फिल्म परिचय, साल 1972, आवाज किशोर कुमार की और संगीत आरडी बर्मन का।
0: और मजेदार बात ये कि गाना सुनते हुए लगता है जैसे कोई बस यूं ही सड़क पर निकल पड़ा हो। और आपको पता है इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है।
1: आरडी बर्मन का संगीत इस गाने में बहुत अलग तरीके से महसूस होता है। कोई भारी भरकम इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं, बल्कि एक ऐसी धुन जो सुनते ही आपको चलते रहने का एहसास देती है।
0: और जिंदगी को बहुत सीरियसली लेने के बजाय बस उसके साथ चलते रहो, लाइटली रहो, लाइटली लो अपनी जिंदगी को।
1: हाँ, सही कहा तुमने। और किशोर कुमार की आवाज तो जैसे इस गाने के लिए ही बनी थी। इसमें वो बेफिक्री है, थोड़ी शरारत है, और साथ में एक अजीब सी ना आजादी की भी फीलिंग है।
0: लेकिन पता है मुझे इस गाने की सबसे खूबसूरत लाइन कौन सी लगती है?
1: अच्छा बताओ कौन सी।
0: वो है ना, एक राह रुक गई तो और जुड़ गई वाली।
1: हाँ। उफ, और शायद यही तो जिंदगी भी है, एक रास्ता खत्म होता है तो दूसरा सामने आ ही जाता है।
0: हाँ, हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ तय होना चाहिए, कहाँ जाना है, क्या करना है, कब पहुंचना है, कैसे करना है, सब कुछ प्री प्लान्ड होना चाहिए।
1: लेकिन लेकिन लेकिन कभी कभी बिना ठिकाने के चलना भी बहुत जरूरी है दोस्तों।
0: और यही वजह है कि ये गाना सिर्फ किसी मुसाफिर की कहानी नहीं लगता, ये उन लोगों का भी गाना लगता है जो अपनी जिंदगी के किसी ऐसे दौर में हैं जहां उन्हें अभी नहीं पता है कि अगला पड़ाव कौन सा होने वाला है।
1: और शायद ना दोस्तों, इसीलिए कभी ना कभी हम सभी उस मुसाफिर की जगह खड़े होते हैं।
0: कभी स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से नौकरी, एक शहर से दूसरे शहर, या एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते तक।
1: दोस्तों, हर पड़ाव हमें थोड़ा बदलता है और फिर हम आगे निकल जाते हैं।
0: और पीछे रह जाती हैं कुछ आवाजें, कुछ चेहरे, कुछ यादें।
1: शायद इसीलिए पुराने गाने इतने अपने लगते हैं। हम उन्हें सिर्फ सुनते नहीं, अपनी जिंदगी के किसी हिस्से को उनमें पहचानने लगते हैं।
0: और अगर आज आप भी किसी नए रास्ते पर हैं और आपको नहीं पता कि अगला पड़ाव कहाँ है,
1: तो परेशान बिल्कुल मत होइए, थोड़ा मुस्कुराइए और खुद से कहिए,
0: मुसाफिर
1: मुसाफिर हो
0: हो यारो।
1: यारो।
0: किशोर कुमार की आवाज में आरडी बर्मन का संगीत और फिल्म परिचय का ये खूबसूरत गीत।

0: मार्गेशा, कुछ लोग खूबसूरत इसलिए नहीं होते कि उनके फीचर्स बहुत परफेक्ट होते हैं।
1: मुझे तो लगता है वो इसलिए कि वो अंदर उनकी जो एनर्जी होती है वो इतनी अच्छी होती है कि वो जहां जाते हैं वहां का माहौल ही पूरा बदल देते हैं।
0: बिल्कुल सही बात की तुमने। उनकी हंसी, उनका बोलने का अंदाज, उनका बेफिक्र होकर जीना और उन्हें सबसे ज्यादा खास बनाता है उनका खुद को लेकर कंफर्टेबल होना।
1: पता है इस सब से मुझे क्या याद आ रहा है?
0: क्या याद आ रहा है?
1: बॉलीवुड में ऐसा एक कैरेक्टर याद आ रहा है, जानती हो, जिसे देखते ही लगता था कि ये लड़की जहां जाएगी वहां थोड़ी सी रौनक तो बढ़ाकर ही आएगी। याद है तुम्हें गीत?
0: हाँ, जब भी मैट वाली गीत है ना,
1: हाँ
0: जिसके पास हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई डायलॉग रहता था, हर परेशानी को लेकर एक अपनी ही अलग फिलॉसफी रहती थी।
1: और इसी को लेकर एक बड़ा ही परफेक्ट सॉन्ग भी है उसका, और वो है ये इश्क हाय बैठे बिठाए जन्नत दिखाए। हाँ आहा, क्या बड़ा ही खूबसूरत गाना था, है ना?
0: हाँ, पहाड़ों के बीच खड़ी थी, हवाएं चल रही थी, वो आसपास लोग थे और वो बस अपनी खुशी में नाच रही थी। उसे ना किसी की परमिशन चाहिए थी ना वैलिडेशन। मुझे लगता है मतलब हम लड़कियों में से हमेशा हमने ना अपने आप को उस कैरेक्टर में इमेजिन जरूर किया है।
1: सही कहा, और मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर और वो जो पूरा सॉन्ग है उसका फील सिर्फ डांस और इसके पिक्चराइजेशन पर सीमित नहीं है। वो जो फीलिंग है ना कि बस खुद को खुलकर एक्सप्रेस करना बिना किसी की परवाह किए, वो फीलिंग हर लड़की ने कभी चेज जरूर की थी, और शायद इसीलिए ये जो गाना है ये गीत के कैरेक्टर पर इतना परफेक्ट बैठता है।
0: हाँ, और साथ ही इसकी जो मेकिंग है ना, वो भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई है। जो भी सीनिक शॉट्स हैं और जिस तरीके का उन्होंने माहौल क्रिएट किया है एकदम ट्रेडिशनल, वो भी लोगों को काफी पसंद आया।
1: हाँ, और तुम्हें पता है इसकी जो कोरियोग्राफी थी ये पहले सरोज खान के पास नहीं थी।
0: उस वक्त जब भी मेट की शूटिंग मनाली में चल रही थी और सरोज खान भी वहीं किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, इम्तियाज अली की उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे इस गाने को कोरियोग्राफ करने के लिए कहा।
1: और मजे की बात पता है क्या है कि इस कोरियोग्राफी के लिए सरोज खान को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, और पूरे इंडस्ट्री से वो इतनी प्रोनाउंड कोरियोग्राफर तो थी ही, और इस गाने के बाद उन्हें और भी ज्यादा प्रेजेस भी मिले।
0: और फिर सरोज खान ने एक वो दूसरी फिल्म पे काम कर रही थी और उसे छोड़कर फिर वो मनाली में आई और वहाँ रुक कर उन्होंने उस गाने पर काम किया और देखो उसके लिए उन्हें कितने सारे अवार्ड्स में मिले। और पता है, इस गाने में करीबन 70 लोकल डांसर्स को हिमाचल प्रदेश से अलग अलग हिस्सों से बुलाया गया था और कई दिनों तक वो रिहर्सल्स हुई थी जिस पर वो गाना शूट हुआ था।
1: और फिर वही गाना बना जिससे देखकर लगता है कि सब कुछ कितना नेचुरली हो रहा है, कुछ भी फोर्स डाउन नहीं किया गया है, ऐसा लग रहा है कि सब बस अपने तरीके से जी रहे हैं।
0: और इसीलिए कोरियोग्राफी सिर्फ स्टेप्स नहीं थे, उसमें गीत की पूरी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो रही थी।
1: उसका बेफिक्र अंदाज होना,
0: उसका खुलकर हंसना,
1: बिना झिझक अपनी खुशी जीना,
0: और यही उसकी सबसे खूबसूरत बात थी।
1: बिल्कुल, और जिंदगी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें मस्ती मजा और लाइवलीनेस और जो लोनलीनेस है उसकी जगह तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और शायद गीत का कैरेक्टर वो हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाता है कि लाइफ को कैसे अपने टर्म्स पर हम खुलकर जी सकते हैं।
0: तो चलिए दोस्तों, उसी रौनक के साथ वापस चलते हैं मनाली की उन खूबसूरत वादियों में इस गीत के साथ।

0: दोस्तों, आपको नहीं लगता कि कुछ जगहें ऐसी होती है जिन्हें देखकर लगता है कि वहां की खूबसूरती को किसी तस्वीर में पूरी तरीके से कैद ही नहीं किया जा सकता?
1: और ऐसी ही एक जगह भारत में हम सोचें तो मेरे ख्याल से हम सभी के दिमाग में कश्मीर जरूर आएगा।
0: बिल्कुल, 100 आने सच बात कही है तुमने मार्गेशा। पहाड़, झीले, हरे भरे मैदान और वहां के रंग बिरंगे ट्रेडिशनल कपड़े और सेलिब्रेशंस।
1: और अगर इस पूरे माहौल में संगीत और नृत्य शामिल हो जाए तो जो पिक्चर है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है।
0: और मुझे ऐसे ही एक गाने की याद आई ये तुम्हारी बातें सुनकर, और जिसमें कि कश्मीर की एकदम कलरफुल और फेस्टिव वाइब बिल्कुल अच्छे से पोर्ट्रे की गई है। दोस्तों, आपको याद है मिशन कश्मीर का गाना बुमरो?
1: ओ हाँ, और इस गाने में सबसे पहले ध्यान जाता है प्रीति जिंटा पर। उनका कैरेक्टर सूफिया इतना लाइवली और एक्सप्रेसिव है कि गाने की पूरी एनर्जी उन्हीं से आती हुई लगती है।
0: हाँ, सूफिया की खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे में नहीं है, उसकी पर्सनालिटी में एक वार्म्थ है। वो खुलकर खुश होती है, लोगों के बीच घुलती मिलती है और छोटी सी खुशी को भी सेलिब्रेशन बना देती है।
1: और मुझे लगता है कि बुमरो ये जो गाना है ये उसी पर्सनालिटी को एकदम परफेक्टली कैप्चर करता है।
0: वैसे पता है, बुमरो शब्द भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। कश्मीर में बुमरो का मतलब भौरा यानी कि बम्बल बी होता है।
1: ओह, और गाने में शब्द का ना इस्तेमाल बड़ा ही प्लेफुल तरीके से किया गया है। अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो ये गाना मेरे लिए और भी ज्यादा फन हो गया है।
0: बिल्कुल, ये गाने के लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं।
1: और पूरा जो सॉन्ग है वो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल कश्मीरी कल्चर है वहां से इंस्पायर्ड है। उसमें जो डांसेस हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं और जिस तरीके का सेलिब्रेशन दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं कश्मीरी कल्चर से मिलता जुलता है, और उसे पोर्ट्रे बहुत अच्छे तरीके से किया गया है।
0: हाँ, और इस गाने को देखते हुए हमें सिर्फ इसके एक्टर्स नहीं दिखते, पूरा की पूरा कश्मीर एक तरीके से एक कैरेक्टर बन जाता है।
1: सही कहा, और मुझे लगता है कि प्रीति जिंटा की एनर्जी उसमें और भी ज्यादा रंग भर देती है।
0: और इस गाने की खास बात पता है ये है कि इसमें एक मॉडर्न बॉलीवुड डांस स्टाइल नहीं रखा गया है। इसमें ना ट्रेडिशनल कश्मीरी डांस एलिमेंट्स हैं और बॉलीवुड कोरियोग्राफी को मिलाकर इन्होंने स्क्रीन पर प्रेजेंट किया है, तो ये इसमें 4 चांद लगा दिए इस
1: हाँ,
0: बात
1: और
0: ने।
1: मुझे लगता है कि जो 2000s था वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिला कि जो भी हमारे ट्रेडिशंस थे, जो हमारे कल्चर्स थे, और उसमें थोड़ा सा बॉलीवुड का टच लगा करके उसको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया और हमारे सामने दिखाया गया, और इसीलिए हमारा चाइल्डहुड भी कहीं ना कहीं इन बॉलीवुड के जो ट्रीटमेंट था, ये बॉलीवुड का जो हल्का सा सेंस था वहाँ से हम उसको देखते हुए आ रहे हैं, और आज भी हम कल्चर को वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही में ये जो सॉन्ग है ये बॉलीवुड और कश्मीर दोनों को एक साथ लेकर चलता है, और इसीलिए लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाले में से
1: हाँ,
0: गीतों में से एक है।
1: सही कहा, और मुझे लगता है कि इस गाने की सबसे प्यारी बात यही है कि इसमें खुशी को किसी बड़े कारण की जरूरत नहीं है।
0: इट्स लाइक बस गीत बजा, संगीत बजा और
1: बस,
0: लोग
1: और
0: साथ।
1: लोग साथ आए और
0: वही
1: सेलिब्रेशन शुरू हो गया।
0: तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम सुनते हैं ये प्यारा सा गीत,

0: मार्गेशा, तुम्हें नहीं लगता कि आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज्यादा लकी है?
1: हाँ, वैसे तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो कि जनरेशन आज की है तो बड़ी लकी, लेकिन तुम किस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हो?
0: मैं बात कर रही हूँ करियर पर्सपेक्टिव से। उसमें जरा सोचो, आज की जनरेशन में कोई जिस फील्ड में भी इंटरेस्टेड है ना, उस फील्ड में वो जा सकता है और अपना करियर ऑप्शन चूज कर सकता है। जैसे पता है, कुछ ही दिनों पहले मैंने पढ़ा कि कार वर्कशॉप्स होती हैं, उसके बारे में भी एक करियर ऑप्शन हो सकता है, पता है?
1: हाँ, कार वर्कशॉप बहुत ही इंटरेस्टिंग करियर हो सकता है, पता है? उसे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप भी कह सकते हैं। ये एक नया और बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक करियर ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। कार वर्कशॉप्स में ना आपकी ऑटोमोबाइल का कस्टमाइजेशन होता है, उसकी इंजीनियरिंग चेंज हो सकती है, कोई भी कार से जुड़ी हुई आपको कोई भी समस्या हो तो उसका भी समाधान आपको इन वर्कशॉप्स में मिल सकता है।
0: इस वर्कशॉप में आमतौर पर ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स और ऑटोमोबाइल डिजाइनर मुख्य रूप से काम करते हैं और इसे संभालते हैं।
1: हाँ, जैसे तनिष्का ने कहा, अगर आप इन सब की पढ़ाई कर रहे हैं तो, और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो अगर आप इसका कुछ कोर्स वगैरह कर लें इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप इससे अपना एक

0: ही अच्छा करियर इंटरेस्ट ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन वर्कशॉप्स में आप अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कस्टमाइजेशन, ग्राफिक डिजाइंस करना, ये सब आजकल बहुत ट्रेंड में है, लोग उसे पसंद भी करते हैं, खासकर युवा। तो आप इसे एक करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं दोस्तों।
1: और अगर आप अपना ग्रेजुएशन खत्म कर चुके हैं और आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं और आपको ऑटोमोबाइल्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप इन वर्कशॉप्स में जाकर इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, जहां आपको ऑटोमोबाइल्स के बारे में बहुत नज़दीकी से जानने को मिलेगा। किसी भी वर्कशॉप में जाकर वहाँ का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं और अपनी एक जॉब प्रोफाइल बना सकते हैं।
0: सही कहा। और अगर आप एक एक्सपीरियंस इंजीनियर है जहाँ पर आपने काम किया हुआ है कार्स के लिए और उसकी सर्विसेज में, तो आप अपना खुद का कार वर्कशॉप भी खोल सकते हैं। कार वर्कशॉप खोलने के लिए आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं लगेंगी, मेनली इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, एक अच्छी जगह लगेगी और बस अच्छी एडवर्टाइजमेंट, और आपका भी एक नया बिजनेस चालू। और आजकल हम देख ही रहे हैं कि कैसे युवा और जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं कार वर्कशॉप भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है।
1: बिल्कुल, तो है ना, ये कितनी रोचक बात। और कितने ही ऐसे अनगिनत करियर ऑप्शंस हैं जो कि आज की डेट में इवॉल्व होते जा रहे हैं, जो कि पहले शायद हमने नहीं सुने हुए
0: सही
1: थे,
0: कहा था निष्का।
1: उनको एक अलग तरीके से एक नया रूप मिल रहा है। तो दोस्तों, आप भी अपनी क्रिएटिविटी लगाइए और ऐसे बहुत सारे नए ऑप्शंस आप देख सकते हैं अपने आसपास, जो कई सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं और अपने करियर को एक बहुत अच्छे स्टेज पर लेकर जा सकते हैं।
0: सही कहा। तो दोस्तों, आप भी जरा कार वर्कशॉप्स और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स के बारे में ढूंढिए और देखिए कि और कौन से ऐसे क्रिएटिव और ऐसे साइंस से जुड़े हुए करियर ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, क्योंकि दुनिया तो सभी के लिए खुली हुई है, बस आपको थोड़ी सी ढूंढने की मेहनत करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: तो दोस्तों, ये था आज का युववाणी कार्यक्रम। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आ गया होगा। और अब समय हो गया है हमारा आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आइए जान लेते हैं जो दो सामान्य ज्ञान के हमने आपसे प्रश्न पूछे थे, अब समय आ गया है उनके उत्तर जानने का।
1: तो दोस्तों, पहला प्रश्न था कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है। तो इसका सही

0: उत्तर है एंटार्क्टिका डेजर्ट। आमतौर पर लोगों को लगता है कि इसका आंसर होगा सहारा डेजर्ट, लेकिन दोस्तों एंटार्क्टिका रेगिस्तान का क्षेत्रफल दुनिया में सबसे बड़ा है।
1: और दूसरा प्रश्न था कि दुनिया का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है और ये कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एंजल फॉल्स, जो वेनेजुएला में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग 979 मीटर्स है।
0: तो इसी के साथ दोस्तों अनुमति दीजिए तनिष्का
1: और मार्गेशा को।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं द जेंटलमैन फिल्म का गीत। स्वर हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा के, बोल हैं इंदिवर के और संगीत है अनु मलिक का।

आइए अब सुनते हैं खुद्दार फिल्म का गीत, स्वर हैं कुमार शानू और अलका याग्निक के, बोल हैं राहत इंदौरी के और संगीत है अनु मलिक का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए फिल्म आईना से, स्वर हैं लता मंगेशकर के, बोल हैं समीर के और संगीत है दिलीप और समीर सेन का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक सुंदर विचार। इसे भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और दीपक पटेल जी।
2: लिखते हैं, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी कोशिशें ही बड़ी सफलता की राह बनाती हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर और प्रेरणादायी संदेश के लिए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: नोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर।
1: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी लिखते हैं,
2: खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि कोई आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। लेकिन एक बार फिर से हमारा निवेदन है कि सुविचार जरूर भेजें, पर उससे कहीं अधिक कार्यक्रमों पर लिखें, प्रतिक्रिया भेजें, आप प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
2: एक बार ऐसा करके देखिए, सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा।
1: जी हाँ, सच में बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए। तो श्रोताओं, ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई मजेदार और प्रेरक अनूठी जानकारी। तो विमलेश जी, क्या है वो मजेदार अनूठी बात जो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं?
2: अजीत जी, बात तो सचमुच बड़ी प्रेरक है। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बेशक सुनने में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन ये हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देने की क्षमता रखती है। तो श्रोता मित्रों, जरा कल्पना कीजिए कि किसी फैक्ट्री में एक मशीन ने 20 या 30 वर्षों तक लगातार काम किया।
1: उस मशीन ने लाखों वस्तुएं बनाई, वस्तुएं बाजारों में गई, उनके कारण व्यवसाय हुआ, यानी उस मशीन ने हजारों परिवारों की रोजी रोटी में योगदान दिया। मगर अब वो पुरानी हो चुकी है और उसकी जगह नई मशीन आने वाली है
2: जी।
1: आप कहेंगे ये ठीक भी है, क्योंकि बदलती तकनीक के साथ मशीनें तो बदलती हैं।
2: श्रोता, ऐसा अक्सर होता है ना कि कई जगहों पर पुरानी मशीन को कबाड़ समझकर हटा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे जापान में प्रचलित एक अनूठी संस्कृति के बारे में। जापान में कुछ कंपनियां और कर्मचारी उस पुरानी मशीन को हटाने या रिटायर करने से पहले खास काम करते हैं।
1: श्रोताओं, हटाए जाने से पहले उस दिन वहां के कर्मचारी मशीन के पास जमा होते हैं
2: जी।
1: वे याद करते हैं कि किस प्रकार इस मशीन ने उनका परिवार चलाया, रोजी रोटी चलाई और बच्चों को पाला। वे याद करते हैं कि किस प्रकार उस मशीन ने देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की प्रगति में योगदान दिया।
2: थोड़ी देर वे इस बात पर भी कृतज्ञता से चर्चा करते हैं, फिर वे मशीन के सामने खड़े होकर सर झुकाते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वे कुछ क्षण रुकते हैं और कहते हैं,
1: धन्यवाद, तुमने वर्षों तक हमारा साथ दिया, तुमने पेट पालने में हमारी सहायता की। श्रोताओं, आपको विशेष रूप से बता दें कि ऐसा करना कोई सरकारी नियम नहीं है
2: जी।
1: लेकिन ये जापान में मशीनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की संस्कृति का हिस्सा है।
2: साथियों, ये बात बहुत गहरा चिंतन और दृष्टिकोण लेकर हमारे सामने आती है। आइए जरा हम सब सोचें, अगर एक निर्जीव मशीन के प्रति इतना सम्मान हो सकता है, तो उन जीवित लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में कभी न कभी योगदान दिया है।
1: जी हाँ श्रोताओं, क्या हमने कभी अपने स्कूल के उस शिक्षक को धन्यवाद के साथ याद किया जिसने कभी हमें पढ़ाया था
2: जी।
1: माता पिता भी इस सूची में शामिल होते हैं। श्रोताओं, कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बनाते रहते हैं
2: जी।
1: और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम उनके प्रति कई बार कृतज्ञ नहीं रह

0: जी हाँ श्रोताओं, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कह देना ही नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। ये स्वीकार करना है कि मेरी सफलता समृद्धि में अनेक लोगों का योगदान है।
1: जी श्रोताओं, एक बात और, आइए जरा अपने घर के चारों ओर नजर दौड़ाकर देखें। वो पुरानी कुर्सी, वो पुरानी टेबल, शायद वो हमारा पुराना कंप्यूटर,
0: जी
1: शायद वो पुरानी किताब जिसने हमें अपने जीवन का रास्ता दिखाया, क्या वे सभी हमारे आभार के पात्र नहीं हैं? वे सभी हमारे आभार के पात्र हैं। इस्तेमाल की हुई वस्तुएं भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, मशीनों को रिटायर करने की जापान की ये छोटी सी प्यारी सी परंपरा हमें याद दिलाती है कि जिन निर्जीव वस्तुओं से हमारा जीवन चलता है उन्हें हमेशा सम्मान मिलना ही चाहिए।
1: तो श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में कोई पुरानी वस्तु जो अब उपयोग में नहीं आने वाली है तो उसे भी सम्मान पूर्वक विदा कीजिए,
0: जी
1: क्योंकि उसने भी कभी न कभी आपकी सेवा की है।
0: याद रखिए, महानता इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, महानता इस बात में है कि जो कुछ हमारे पास रहा है उसके प्रति हम कितने आभारी हैं।
1: जी श्रोताओं, हमारे देश में भी मशीनों का सम्मान विशेष अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है, जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
0: जी आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
1: और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप एनसीईआरटी के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्यपुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहाँ आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
0: जी तो प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है?
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम द स्मार्ट मंकी।
0: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया है और बताया गया है कि कूड़ा इधर उधर न फेंकना और उसका उचित स्थान पर निपटान करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: CIET NCERT presents द प्रोग्राम द स्मार्ट मंकी।
2: One day, Anju and Farida went to the market. Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. Later, they went to a shop and bought a packet of groundnuts and a bottle of juice. They felt tired. They sat on a bench under a tree to rest. There was a monkey on the branch of the tree above them. Farida and Anju did not see the monkey. They took out their food from the bag and began to eat. The monkey had a banana. He peeled the banana and ate it. Farida and Anju took out the groundnuts and started eating. They threw the packet down. Then they drank the juice and threw down the bottle. Just then, the monkey climbed down the tree with the banana peel. There was a

0: मेरा नाम साक्षी है। मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब भी तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता है।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम, शीर्षक है कालीबाई बंगा।
3: ये कार्यक्रम राजस्थान की वीर बालिका कालीबाई बंगा के बारे में जानकारी देते हुए उल्लेख करता है कि किस प्रकार उसने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपना

0: जीवन भारत माता के लिए उत्सर्ग कर दिया।
1: नमस्कार साथियों।
2: मेरा भी नमस्कार।
1: साथियों, राजस्थान की भूमि रण बांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
2: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
1: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
2: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोग गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
1: तो चलिए हम बता देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
2: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल। भारत की आजादी के पहले तक यहां कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजामंडल चलाता था।
1: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नानाभाई खांट जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
2: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगाभाई रोत जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगाभाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
1: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था।
3: अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
1: आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरे ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता। डूंगरपुर का प्रजामंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगाभाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
2: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी, सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगाभाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
1: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजामंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
2: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे, परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
1: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गांव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
2: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्ता

0: पाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
1: वो दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी।
0: पाठशाला में उस समय नाना भाई और सिंगा भाई दोनों उपस्थित थे। जिला न्यायाधीश ने नाना भाई और सिंगा भाई से कहा, पाठशाला बंद करो और चाबी हमको दे दो। इस पर सिंगा भाई ने बड़ी नम्रता के साथ कहा,
1: न्यायाधीश महोदय, आप तो न्याय करते हैं। बच्चों को शिक्षा देना तो राज्य का काम है, आप उसे भी बंद करवाना चाहते हैं, यह तो बच्चों के साथ अन्याय है।
0: जिला न्यायाधीश ये बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले,
2: तुम मुझे न्याय की सीख दे रहे हो? अपनी औकात पहले देखो। अभी बताता हूँ तुमको, सिपाहियों, इसे ट्रक से बांधकर घसीटो।
0: इस पर नाना भाई हाथ जोड़कर बोले,
1: साहब, ये पाठशाला तो प्रजा मंडल के आदेश से ही तो चल रही है, आपके आदेश से नहीं। हमें पाठशाला चलाने दीजिए, इससे बच्चों का ही भला होगा।
0: पुलिस अधिकारी ऐसा उत्तर भला कैसे सहन कर पाता? वो क्रोध से आग बबूला हो गया। फिर क्या था, उसका संकेत पाते ही सिपाही नाना भाई पर टूट पड़े और उन्होंने नाना भाई की जमकर पिटाई की।
1: इससे वे बुरी तरह घायल हो गए और इसी बीच सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जाने लगा। नाना भाई से यह देखा नहीं गया, वे सेंगा भाई को बचाना चाहते थे।
0: किसी तरह नाना भाई उठे और सेंगा भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की,
1: लेकिन तभी उन पर एक सिपाही ने जोर से बंदूक का कुंदा दे मारा। नाना भाई निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और फिर कभी नहीं उठे।
0: उनके प्राण पखेरु उड़ गए।
1: उधर सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटा जा रहा था।
0: धीरे धीरे ये खबर पूरे गांव और आसपास के गांवों में फैल गई।
1: पाठशाला के बाहर गांव के स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन हर कोई बेबस था, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर सेंगा भाई को बचा सके।
0: कालीबाई उस समय खेत से पशु चारा के लिए घास काटकर आ रही थी। उसके सिर पर घास का गट्ठर था, उसके हाथ में हसिया था।
1: जब उसने अपने गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक द्वारा घसीटे जाते देखा तो उससे ऐसा देखा नहीं गया। उसने आओ देखा ना ताओ घास का गट्ठर वहीं जमीन पर डालकर उसने ललकार कर कहा,
0: ठहरो, मेरे गुरुजी को इस तरह घसीटकर कहां ले जा रहे हो?
1: ये कहते हुए कालीबाई बिजली की गति से उस ट्रक की तरफ लपकी। उसने ट्रक से बंधी रस्सी को हसिये से एक झटके से काट दिया।
0: सेंगा भाई मौत के मुंह में जाने से बच गए, किंतु अफसोस, सिपाहियों ने कालीबाई को उसी समय गोलियों से भून दिया।
1: उसे बचाने के लिए कुछ औरतें भाग कर आई, उन पर भी निर्मम पुलिस ने लाठियां बरसाई।
0: एक तरफ नाना भाई का शव पड़ा था और दूसरी तरफ लहू से लथपथ कालीबाई।
1: थोड़ी देर में अरावली की पहाड़ियों में भील जनजाति के लोगों द्वारा शोक प्रकट करने का मारू ढोल गूंज उठा। भारी भीड़ जमा होने लगी, लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा, मरो या मारो वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। इस विकट स्थिति को समझकर कातिल वहां से भाग खड़े हुए
0: और

0: बेहद जख्मी हालत में कालीबाई को डूंगरपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
1: लगभग 40 घंटे बेहोश रहने के बाद 20 जून 1947 को राजस्थान की इस वीर बाला ने दम तोड़ दिया। कालीबाई तो शहीद हो गई, लेकिन अपने गुरुजी को बचाकर उसने अपनी अखंड गुरु भक्ति का परिचय तो दिया ही,
0: साथ ही उसने जनजातीय लोगों में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में आजादी की मशाल जला दी।
1: आज भी रास्तापाल गांव में कालीबाई की स्मृति में एक स्मारक बना हुआ है और वहीं के एक पार्क में कालीबाई की मूर्ति भी लगी हुई है।
0: राष्ट्र इस त्याग की प्रतिमूर्ति नन्ही आदिवासी वीरांगना कालीबाई को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
1: कालीबाई, तुम्हें हमारा सलाम।
2: कालीबाई, भारत की एक जनजातीय वीरांगना। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
3: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण जगबंधु जाना,
2: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
1: श्रोता, अभी आपने सुना कार्यक्रम कालीबाई बंगा।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एनसीईआरटी असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और अब हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, क्योंकि उमंग कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी चेतना, कुसुमलता, जगबंधु और मंजू जी के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं पंकज उदास।

इसी के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार दर्शन होंगे, जिन्हें भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन और मैं हूं शेख महजबी अलमास। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में शासन की योजनाएं किस प्रकार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली खबर है रायसेन जिले से, जहां 39,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी योजना के तहत आत्मनिर्भर बन गई हैं। इन सभी लखपति दीदियों की आय को और अधिक सुदृढ़ व स्थायी बनाने के लिए विविध आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की तैयारी तेज कर दी गई है। पेश है रायसेन से हमारे संवाददाता विनीत माहेश्वरी की ये रिपोर्ट।
1: रायसेन जिले में महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में उल्लेखनीय सफलता दर्ज की गई है। जिले ने लखपति दीदी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को पार करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिले को 38,668 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके लक्ष्य के मुकाबले 39,258 महिलाओं को इस श्रेणी में शामिल कर आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद अब इन सभी लखपति दीदियों की आय और अधिक मजबूत व स्थायी बनाने के लिए विविध आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसके तहत महिलाओं को उन्नत कृषि, पशुपालन और बागवानी के साथ साथ गैर कृषि क्षेत्रों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, लघु उद्योग और स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इस कार्य योजना को गति देने के लिए केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की विशेष टीम जल्द ही रायसेन जिले के दौरे पर आ रही है। यह टीम जमीनी स्तर पर गतिविधियों का जायजा लेगी और महिलाओं को नए व्यावसायिक अवसरों, बेहतर बाजार लिंकेज और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने में मदद करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के सांसद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि
2: रोजगार की दृष्टि से जो दो योजनाएं हैं, आर सिटी और एक हमारे ग्रामीण विकास की योजना है जिसमें ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद फिर बैंकों से पैसा दिलाते हैं, उस पर भी काम हमारा जारी है। और एक योजना ये बनाई कि हमारी जो दीदियां हैं लखपति दीदी, रायसेन जिले में लक्ष्य था 38,668 दीदियों का, लेकिन अब तक 39,258 दीदियां लखपति दीदी बन चुकी हैं। लेकिन अब उनको और विभिन्न तरह की गतिविधियों से जोड़ने का काम करना, कृषि और गैर कृषि मूलक गतिविधियां वो कई चिन्हित हुई है और रूरल डेवलपमेंट की एक टीम भी आएगी जो इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी, ताकि बहनों की गरीबी और दूर करके ग्रामीण गरीबी दूर करने में हम लोग सफल हो सकें।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी।
0: हमारी दूसरी खबर है मंदसौर से, जहां राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस राजीव गांधी पीजी कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद खेल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे मंदसौर संवाददाता दीपक शर्मा।
3: मंदसौर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस राजीव गांधी पीजी कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद सुधीर गुप्ता मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और उभरते खिलाड़ियों को खेलों से जोड़ना, उन्हें खेल एवं फिटनेस को जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना और विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम में खेल सुविधाओं के विस्तार, प्रतिभा पहचान, खेल प्रशासन में युवा सहभागिता और भविष्य उन्मुख कौशल जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि
4: देश भर के ऐसे युवा जो अपने आप को खेलों में आगे बढ़ा चुके हैं, उनके साथ संवाद था। देश भर में संवाद के कार्यक्रम रखे हैं और मोदी जी ने इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित किया अपने आप को ऐसा युवाओं से जो स्पोर्ट्स के लिए समर्पित हैं, देश दुनिया में ओलंपिक पैरा ओलंपिक गेम्स में अवार्डी हैं, ऐसे सब लोगों से आज बात हुआ, मन को बड़ी प्रसन्नता है। मंदसौर में भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन के मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।
0: हमारी अगली खबर है मंडला से, जहां शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण और निशुल्क तैयारी कराने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट संकल्प शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूसरे शहरों में जाने से रोकना और ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को समान अवसर उपलब्ध कराना है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मंडला से हमारे संवाददाता शशांक चौबे।
5: मंडला जिले में शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क तैयारी कराने के उद्देश्य कलेक्टर राहुल नामदेव

0: को JEE, NEET, CU, ET और CLET जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। दूसरे चरण में कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया गया है। सी और डी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, मासिक MCQ आधारित परीक्षाएं, रेमेडियल कक्षाएं, टॉपर क्लब और अभिभावक शिक्षक बैठक जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस चरण से करीब 20,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलने का दावा किया गया है। तीसरे चरण में करियर मार्गदर्शन पुस्तिका तैयार की गई है, जिसमें 10वीं व 12वीं और स्नातक के बाद उपलब्ध कैरियर विकल्प, प्रतियोगी परीक्षाएं, आवश्यक योग्यता और रोजगार के अवसरों को की जानकारी दी गई है। मंडला से प्रादेशिक समाचार के लिए मैं शशांक चौबे।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम चलते हैं रतलाम जिले की तरफ, जहां ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत उज्जैन से जावरा तक 99 किलोमीटर लंबाई में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत 2,080 करोड़ रुपए है। पेश है रतलाम से हमारे संवाददाता अदिति मिश्रा की यह रिपोर्ट।
2: दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे के समीप रतलाम जिले में निर्माणाधीन इंडस्ट्रियल जोन, जिले के संपूर्ण औद्योगिक विकास के साथ ही उज्जैन सिंहस्थ में भी सुचारू ट्रैफिक संचालन के लिए रतलाम में ग्रीन फील्ड परियोजना मूर्त रूप लेने वाली है। परियोजना के तहत उज्जैन से जावरा तक लगभग 99 किलोमीटर लंबाई में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत लगभग 2,080 करोड़ रुपए है। निर्माण कार्य जुलाई 2026 में प्रारंभ हो चुका है और अनुबंध के अनुसार इसे जुलाई 2028 तक पूर्ण किया जाना है। रतलाम जिले में भूमि अधिग्रहण मुआवजा भुगतान की स्थिति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 8 ग्रामों में लगभग 180 कृषक प्रभावित हैं। इनमें से 140 कृषकों के खाते में राशि प्राप्त हो चुकी है। शेष जो किसान बचे हैं उन्हें भी भुगतान राशि जल्द ही दे दी जाएगी। कलेक्टर ने भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान से संबंधित शेष कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। रतलाम से समाचार दर्शन के लिए मैं अदिति मिश्रा।
1: हमारी अगली खबर है नरसिंहपुर जिले से, जहां गाडरवाड़ा में अभिनय नाट्यशाला में नई पीढ़ी के कलाकारों को अभिनय के गुर सिखाए जा रहे हैं। बीते दिनों प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा नाट्यशाला पहुंचे और बच्चों को अभिनय की बारीकियां समझाई। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता आशीष जैन।
3: सिने स्टार आशुतोष राणा, जिनके अभिनय का लोहा बॉलीवुड से लेकर रंगमंच तक हर कोई मानता है, ये दिग्गज अभिनेता इस बार अपने गृह नगर गाडावारा में चल रही अभिनय नाट्यशाला में नई पीढ़ी के कलाकारों को अभिनय के गुर सिखाने पहुंचे। गाडावारा में 11 अगस्त से चल रही इस नाट्यशाला में आशुतोष राणा ने इस आयोजन में विद्यार्थियों से मुलाकात की और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया, जिसे जानकर नाट्यशाला में भाग ले रहे सभी विद्यार्थी बेहद उत्साहित हुए। आशुतोष राणा:
4: अभिनय हमारी आपकी सबकी मूल वृत्ति होती है। अभिनय हो, खेल हो, राजनीति हो, सब व्यक्ति को लगता है कि हम भी कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्रकृतिगत, हमारे क्या कहा जाता है कि कालिक कला साहित्य संगीत विहीनो साक्षात पशु विषाणहीन तृणम न खादन न जीव मानस तद्भागदेयम परमम पशुना। तो हमको और आपको कैसे श्रेष्ठ प्रजाति माना गया विश्व की, क्योंकि मनुष्य के पास कला साहित्य संगीत का वरदान जन्मजात प्राप्त।
3: नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन।
1: अब हम बात करते हैं पन्ना जिले की। कभी सिर्फ नकद लेन देन पर टिके रहने वाला पन्ना जिला आज छोटे से लेकर बड़ा बाजार पूरी तरह से QR कोड के रंग में रंग चुका है। गांव से लेकर शहर और चाय की गुमटी से लेकर हीरा बाजार तक सभी जगह UPI का उपयोग किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे पन्ना से हमारे संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा।
5: देश में UPI के 10 साल पूरे होने पर पूरा भारत डिजिटल बदलाव का जश्न मना रहा है। वहीं बुंदेलखंड के पन्ना जिले में भी इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। कभी सिर्फ नगद लेन देन पर टिके रहने वाले पन्ना के छोटे बड़े बाजार आज पूरी तरह QR कोड पर रंग चुके हैं। हीरों की नगरी पन्ना के स्थानीय रत्न कारोबारियों और पारंपरिक हस्तशिल्प विक्रेताओं को भी डिजिटल पेमेंट से बड़ी राहत मिली है। बाहर से आने वाले पर्यटकों और व्यापारियों को अब ज्यादा नगद लेकर घूमने का डर नहीं रहता। लोग आसानी से ऑनलाइन पेमेंट करके खरीदारी कर रहे हैं। वहीं चाय समोसे बेचने वाले छोटे बड़े वेंडर से लेकर जुगल किशोर मंदिर परिसर के बाहर फल फूल बेचने वाले दुकानदारों तक सभी के पास गूगल पे, फोन पे और पेटीएम का QR कोड मौजूद है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पहले 5 रुपए 10 रुपए के चिल्लर के चक्कर में ग्राहकों से बहस होती थी या कई बार बिक्री रुक जाती थी, लेकिन अब 1 रुपए का भुगतान भी बिना किसी परेशानी के सीधे बैंक खाते में आ जाता है। पन्ना शहर ही नहीं बल्कि जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों में भी सब्जी विक्रेता और राशन व्यापारी धड़ल्ले से UPI का उपयोग कर रहे हैं। बैंक सखियों और स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से ग्रामीणों में डिजिटल पेमेंट को लेकर भरोसा बढ़ा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना।

0: से मैं दिलीप कुमार शर्मा।
1: हमारी अगली खबर है खरगोन जिले से, जहां मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत ग्रामीणों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
2: खरगोन जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान ग्रामीणों के लिए कारगर साबित हो रहा है। अभियान के दौरान ग्रामीणों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही शिविर के माध्यम से जनसंवाद, योजनाओं की जानकारी, स्वास्थ्य सेवाएं, हित लाभ वितरण और शिकायतों का मौके पर ही निराकरण हो रहा है। अभियान के तहत जिले में आयोजित जन विश्वास शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी सीधे ग्रामीणों के बीच पहुंचकर संवाद कर रहे हैं। साथ ही लंबित प्रकरणों के निराकरण, नए आवेदनों के पंजीयन और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कलेक्टर गुरु प्रसाद।
3: मुख्यमंत्री जन विश्वास प्रोग्राम एक बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है और इसमें सभी अधिकारियों को, सभी स्तर के अधिकारियों को फील्ड में जाने के लिए निर्देशित किया गया है और सभी अधिकारी अपने जमीनी स्तर के जो ऑफिसेज हैं उनका भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या उनका जो है कि जमीनी स्तर का अमला वो सही से काम कर रहा है कि नहीं।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
1: अब हम रुख करते हैं निवाड़ी जिले की तरफ, जहाँ खेलो इंडिया गेम्स की पूरी रूपरेखा तय कर दी गई है। गाँव की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए तहसील स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद खिलाड़ी जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर विभिन्न खेलों में भाग लेंगे। विस्तार से बता रहे हैं निवाड़ी से हमारे संवाददाता विवेक दांगी।
4: निवाड़ी जिले में खेलो इंडिया के तहत खेलों का आयोजन कराने की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है और निवाड़ी जिले के प्रत्येक गांव के जो प्रतिभागी हैं या प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए तहसील स्तर पर सबसे पहले खेलों का आयोजन किया जाएगा और तहसील स्तर पर जो चयनित प्रतिभागी हैं उनको आगे जिला और जिला से संभाग और संभाग से प्रदेश स्तर तक उन प्रतिभाशाली छात्रों को खेलने के लिए अवसर दिए जाएंगे। निवाड़ी से समाचार दर्शन के लिए विवेक दांगी।
1: हमारी अगली खबर नीमच से, जहां लंबे समय से लंबित सांदीपनी विद्यालय का निर्माण प्रारंभ हो गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे नीमच से हमारे संवाददाता दिनेश प्रजापति।
5: जिला मुख्यालय पर लंबे समय से लंबित सांदीपनी विद्यालय का निर्माण प्रारंभ हो गया है। यहां करीब 39 करोड़ की लागत से 1800 अधिक विद्यार्थियों के लिए आधुनिक भवन का निर्माण किया जाएगा। विद्यालय में आधुनिक फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, ICT लैब, ऑडिटोरियम एवं किड्स फ्रेंडली क्लासेस सहित अन्य सुविधाएं विकसित होगी। विद्यालय के साथ फ्लड लाइट्स युक्त 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक, हॉकी, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, 2 बास्केटबॉल कोर्ट, 2 क्रिकेट नेट एवं वॉलीबॉल कोर्ट भी क्रमांक 2 खेल परिसर में बनाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन नीमच, दिनेश प्रजापति।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अंतिम खबर है राजगढ़ जिले से, जहां राष्ट्रीय खेलों इंडिया संवाद कार्यक्रम में युवाओं ने नशा मुक्त और विकसित भारत का संकल्प लिया है। विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे राजगढ़ संवाददाता कमल खस।
6: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगढ़ जिले के शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालय नरसिंहगढ़ में खेलो इंडिया डायलॉग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपस्थित युवाओं ने नशा मुक्त भारत का सामूहिक संकल्प लेते हुए शपथ ली। समाचार दर्शन के लिए कमल खस, राजगढ़।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही समय में आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में

0: प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीडीपी वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की दृढ़ता को दर्शाती है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश के मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय लोगों की मेहनत को जाता है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के सुधारों और अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने जल क्षेत्र के ऊपर ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले की निंदा की है। यूएई की वायु रक्षा प्रणालियों ने ड्रोन को रोक दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के हमले तनाव बढ़ाने वाले हैं और यूएई की सुरक्षा, स्थिरता तथा संप्रभुता के लिए खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यूएई ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा और इन हमलों का जवाब देने का अधिकार रखता है। उसने इन हमलों को तुरंत रोकने की अपील की। यूएई ने मिसाइलों से जॉर्डन को निशाना बनाए जाने की भी निंदा की। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4th भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है आज और कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम। आज की सभा के शेष कार्यक्रमों का विवरण है। प्रादेशिक समाचार होंगे जिन्हें भोपाल से रिले करेंगे 7:00

10 मिनट पर। 7:20 पर कार्यक्रम होगा ग्राम लक्ष्मी। कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता घरेलू हिंसा, महिला कानून और अधिकार, मनोज सोनगरे से सुनीता पंडित की बातचीत। सुर्खियों में 8:00 भोपाल से रिले होगा दिल ने फिर याद किया, सुनिएगा 8:15 पर। चित्रगीत का कार्यक्रम होगा 9:15 पर। पब्लिक स्पीक दिल्ली से रिले होगा 9:30 पर। पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन सुन सकेंगे 10:00। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा 10:30 पर। कार्यक्रम में सुनिएगा गायन राम देश पांडे का, राग होगा रागेश्री बहार। ये थे आज की सभा के शेष मुख्य कार्यक्रम। आइए अब आपको बताते हैं कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम।

कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम है। सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन होगा। वंदना चिंतन सुनिएगा सुबह 6:30 पर। खेती की बातें सुन सकेंगे सुबह 6:35 पर। सुनहरे पल सुनिएगा 7:20 पर। विविधा के अंतर्गत सुनिएगा समझदारी का हिसाब, अकाउंट और टैक्सेशन की बातें 8:30 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा 9:00। कलाकार होंगी सुशीला वासुनिया और साथ ही 9:15 पर सुगम संगीत में कलाकार हैं आशा भोसले। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा 9:30 पर। सुन सकेंगे अनुजा झोकरकर को। राग होगा भैरव। जिले की चिट्ठी भोपाल से रिले होगा 10:00। MH हॉटलाइन ये फोन इन कार्यक्रम 10:05 पर होगा। बात आपकी गीत हमारे ये फोन इन कार्यक्रम भोपाल से रिले होगा 11:00। भोपाल से ही रिले होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम दोपहर 12:00 और 2:00। दोपहर 12:30 पर भोपाल से रिले होगा संग्रहालय से महिला कार्यक्रम। सुन सकेंगे 1:00। ये कार्यक्रम भी भोपाल से रिले होगा। 1:30 पर भोपाल से अनुप्रसारित होगा लोक संगीत का कार्यक्रम। 1:45 पर भोपाल से ही रिले होगा कार्यक्रम सुगम संगीत। 1:45 पर भोपाल से ही कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। और आपकी फरमाइश सुनेगा 2:30 पर, ये भी भोपाल केंद्र से रिले होगा। शाम 5:00 सुनिएगा युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। 5:45 पर कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। 6:00 सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। 6:30 पर सुगम संगीत में सुनिएगा आशा भोसले को। और लोक संगीत में सुनिएगा तारा मिश्रा और उनके साथियों को 6:45 पर। 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा किसानवाणी। प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। 8:00 भोपाल से रिले होगा सुर्खियों में दिल ने फिर याद किया, ये कार्यक्रम होगा 8:15 पर। चित्रगीत का कार्यक्रम होगा 9:15 पर। उर्दू कार्यक्रम कहकशा भोपाल से रिले होगा 9:30 पर। रात 10:00 कार्यक्रम होगा मन भावन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित गोकुल उत्सव जी महाराज को। राग होगा यमन। ये थे कल की सभा के मुख्य कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर

0: आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
1: UPI के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: हो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगले 2 वर्षों में 2.5 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की। प्रदेश के 1,22,000 मेधावी विद्यार्थियों को कल लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और प्रदेश के रीवा, सीधी और शहडोल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच आज द्विपक्षीय बैठक हुई। 2 दिन के किर्गिस्तान दौरे पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई इस बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन और वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। आज राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। निवाड़ी जिले की श्री राम राजा सरकार की नगरी ओरछा में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का आज समापन हुआ। दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सहित वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 को युवा वर्ष और 2028 को मातृशक्ति को समर्पित करते हुए प्रदेश की विकास यात्रा को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में 2.5 लाख पदों पर भर्ती भी की जाएगी।
1: जैसे UPSC में होता एक एग्जाम कराते, अब हमारी सरकार भी वो काम कर रही है कि एक परीक्षा करा करके उसमें क्रमशः अलग अलग प्रकार के योग्य लोगों की भर्ती कर दे, तो लगभग 2 साल में 2.5 लाख पदों की भर्ती हमारी सरकार के माध्यम से फिर हम करने जा रहे हैं।
0: वहीं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कार्यसमिति केवल चर्चा तक सीमित नहीं रही, बल्कि विचारधारा और जनसेवा के संकल्प को बूथ स्तर तक ले जाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण रही। उज्जैन में भगवान महाकाल की 5वीं सवारी के नगर भ्रमण में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। रामघाट पहुंचने पर उन्होंने पालकी में विराजित भगवान चंद्रमौलेश्वर का पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सवारी के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। 1100 बटकों ने वैदिक मंत्रोच्चारण किया, जबकि 500 से अधिक कलाकारों वाले 8 जनजाति दलों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं उज्जैन के महाकाल महालोक में अब फाइबर की प्रतिमाओं के स्थान पर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के लाल बलुआ पत्थर से बनी सप्तऋषियों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। महर्षि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज की करीब 15 फीट ऊंची प्रतिमाओं का निर्माण अंतिम चरण में है। इसके साथ ही भगवान शिव और देवगुरु बृहस्पति की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः

0: आपका स्वागत है। प्रदेश में कक्षा 12वीं में प्रथम प्रयास में 75% या उससे अधिक अंक पाने वाले लगभग 1,22,000 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के खातों में 304,98,50,000 रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी और डिजिटल शिक्षा से जोड़ना है। भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रदेश के स्कूली और महाविद्यालयीन विद्यार्थी 30 सितंबर तक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अब तक 24,000 से अधिक विद्यार्थी इसमें शामिल हो चुके हैं। लॉटरी से चयनित 102 विद्यार्थियों को 1,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिसका उपयोग उच्च शिक्षा के लिए किया जा सकेगा। इस पर अधिक जानकारी देते हुए संस्कृति विभाग के सलाहकार श्री राम तिवारी ने बताया कि
1: भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना का गुरु पूर्णिमा से आरंभ हुआ है और यह 30 सितंबर तक ये क्विज चलेगी। प्रदेश के जो स्कूली छात्र हों या महाविद्यालयीन छात्र हों, वे सब इस प्रतियोगिता में भाग लेकर सही जवाब देकर जो 102 छात्रवृत्तियां दी जाने वाली हैं, पुरस्कार स्वरूप 1,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। 30 सितंबर तक अंतिम तिथि है और 1 नवम्बर को जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है, उस दिन समारोह पूर्वक छात्रवृत्ति दी जाने की योजना है।
0: अब रुक करते हैं मौसम की खबर का। प्रदेश में बारिश का दौर फिर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने रीवा, मऊगंज, मैहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल सहित कई जिलों में भी बारिश के आसार हैं। शहडोल में बाणसागर बांध के 6 गेट खोले गए हैं। प्रदेश में अब तक 27.2 इंच बारिश हुई है, जो सामान्य से 9% कम है। वहीं भोपाल स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र में खेलेगा भारत जीतेगा भारत थीम के तहत 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक अभिषेक सिंह चौहान ने कहा कि समारोह के माध्यम से युवाओं को खेलों से जुड़ने, फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान आज शिवपुरी जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। गुना जिला चिकित्सालय की टीम ने आज जिला जेल में बंद कैदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। सीहोर के श्यामपुर तहसील के चरणनाल गांव में पारंपरिक गेड़ी लड़ाई प्रतियोगिता में सीहोर, भोपाल और राजगढ़ के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कटनी पुलिस ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ विशेष मेगा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। मुरैना से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत डॉक्टर अम्बेडकर चैत्य भूमि मुंबई की यात्रा 15 से 18 सितंबर तक होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 9 सितंबर है। झाबुआ कलेक्टर ने जिले के 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के NQAS सर्टिफिकेशन की कार्यवाही जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं और अशोकनगर जिले के सभी विभागों ने CM हेल्पलाइन में ए ग्रेड प्राप्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगले 2 वर्षों में 2.5 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की। प्रदेश के 1,22,000 मेधावी विद्यार्थियों को कल लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे और प्रदेश के रीवा, सीधी और शहडोल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है।
2: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा पेंशन डीबीटी सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
6: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत ज्यादा काम।
7: ये
8: आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली अपनी सगली बहन ना के और अपना सगला दादा भाई ना के तमारी बहन मनीषा शर्मा की प्रेम भरी राम राम। भाई बहनों, हर एक मनक चाहे कि वो पूरी तरह से स्वस्थ रहे और एक सेहतमंद जीवन जिए। और कहावत भी है कि अच्छी सेहत जो है वो ईश्वर को सबसे बड़ा आशीर्वाद है। वैसे भी स्वस्थ रहने के लिए किसी विशेष देखभाल या अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अपन अपना दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन लावा, अपनी गतिविधियों में थोड़ा सा बदलाव करा और अपना भोजन को ध्यान रखा। पर यह भी ध्यान रखा कि केवल भोजन करनोच काफ़ी नहीं है। मौसम के देखते हुए और अपना शरीर के देखते हुए अपन खान पान अपनो रखा। मौसमी फल, तरह तरह की सब्जियों, सबको सेवन करता रहा, क्योंकि हर जो फल है और सब्जी है वो अपने अलग अलग पौष्टिक तत्व हमारा शरीर तक पहुँचावे। आना देखने में आवे कि अधिकतर अपनी बेनना के देखा कि सबका लिए तो भी 56 भोग तैयार कर दे, पर जब खुद की बारी आवे तो अपना सेहत के, अपना शरीर के पूरी तरह से भी नज़रअंदाज करी जावे। पूरा परिवार को ध्यान रखते रखते बेनना अपनी सेहत को ध्यान बिल्कुल नहीं रखे। अनेकाज कारण देखने में आवे कि 10 में से 8 महिलाओं में खून की कमी की समस्या देखने के मिले। बेन हो ऐसी भी कई की रहे हैं जो कई बार ऐसा हो कि कई सब्जी खत्म हो जाए तो घर में पड़ी हुई नमक मिर्ची से जो रोटी खा ले। पर बेनहोन अपने अपनी बीमारी होने का लिए, अपनी सेहत का लिए ध्यान देनो चाहिए। आने यो भी तुम्हारे हम बताई दा कि बेन होन में होने वाली बहुत सारी बीमारियों को मुख्य कारण रहे खून की कमी। बेन होन का स्वास्थ्य को ध्यान रखने का लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लालिमा अभियान की शुरुआत करी। लालिमा अभियान महिलाना, किशोरी बालिकाना और बच्चा होन में होने वाली खून की कमी, जिके एनीमिया भी अपन का है, इकी रोकथाम का लिए और पोषण स्तर में सुधार का लिए काम करे। लालिमा अभियान की शुरुआत जो है वह इना उद्देश्य से करी गई है कि जो बेन होन है, जो बालिका होन है, उनमें हीमोग्लोबिन की कमी दूर कर हुई जावे और महिला होन पौष्टिक आहार का प्रति जागरूक होवे। लालिमा अभियान का तहत आंगनवाड़ी, स्कूल, अस्पताल और भी कई ऐसा माध्यम है जिनसे आयरन की और फोलिक एसिड की गोली होन बेन होन के मुफ्त दी जावे। आने बेन होन अधिकतर मासिक धर्म का दौरान बहुत सारी लापरवाही उन करें, उनका प्रति भी उनके जागरूक करियो जावे और कई सारी ऐसी सावधानी होने जिनके बरतने का बारामा स्कूल में और आंगनवाड़ी में जानकारी दी जावे। अने बेनहोन तमारे लालिमा अभियान का बारा में या फिर आयरन और फोलिक एसिड की गोलियों का बारा में ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो अपना पास का स्वास्थ्य केंद्र जाइके या फिर आंगनवाड़ी बेन जो अपनी बहन जी होने उनसे मिली के भी आप जानकारी ले सकता है। और इन्हीं कमी के, खून की कमी के दूर करने के लिए आयरन और फोलिक एसिड की गोली होन बिल्कुल मुफ्त प्राप्त कर सकता है। तो बेनहोन या तो अपन ने करी लालिमा अभियान का बारा में बातचीत, अब एक लोकगीत तो बने हैं जिगे गावे भाई फतेह सिंह परमार ने।

0: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। भाई बहनों, मनुस्मृति को यो प्राचीन और प्रसिद्ध श्लोक तो अपन सबने सुनियो है, आने कहीं अपन माना भी है कि जहाँ जहाँ नारी को सम्मान होवे या उसको आदर होवे वहाँ पर देवता वास करे, या यूँ भी कह सकता है कि जिना घर में एक महिला खुश रहे उना घर में सुख शांति और समृद्धि अपना आप आई जावे। पर अपन यो सब जानते हुए भी आज भी देखने में आवे कि बहुत सारी बहन होन जो है वह घरेलू हिंसा से पीड़ित रहे। कहीं की महिला होन अपना परिवार को नाम खराब नहीं होए इका कारण अपनी आवाज़ के दबैले और लोगों के नहीं बतावे कि उका साथे अन्याय हो रही है। पर घरेलू हिंसा का खिलाफ हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। बहन होन यदि पीड़ित होती रहेगी तो समाज में ऐसी घटना होन एक का बाद एक घटित होती रहेगी। अपनी बहन होन घरेलू हिंसा का खिलाफ अपनी आवाज़ उठावे, इका लिए यो जरूरी है कि उनके मालूम होवे कि घरेलू हिंसा का खिलाफ कौन कौन सा कानून है, कौन सा अधिकार है और बहन होन किस तरह से इन सबको उपयोग कर सकती है। तो यो सब अपन जानांगा यानी भेंट वार्ता का माध्यम से, जिमें मनोज सोनगरा जो कि अधिवक्ता है उच्च न्यायालय इंदौर का, इनसे बात करी है बहन सुनीता पंडित ने। तो सुना अपन दो की है चर्चा।
3: अपना देखा कभी कभी सपना पूरा नहीं हो पाता है और एक असो परिवार मिली जाए कि न चाह तो हो भी छोड़नो पड़े। कभी दहेज को कारण हो जाए तो कभी घरेलू हिंसा को असो कारण हो जाए। समझ में भी नहीं आउतो है कि करा तो कहाँ जावा कि ना दर्प जावा। पर अगर आपकी चिंता छे तो समाधान भी छे और संविधान साथ में छे, कानून साथ में छे। आपकी समस्या का समाधान का लेन छे घरेलू हिंसा अधिनियम। लेकिन यो काई आए, यो कसो काम करे, इन्हीं तमाम जानकारी का लेन आज अपना साथ में छे एम के सोनगरे, मनोज सिंह सोनगरे साहब, उच्च न्यायालय का अधिवक्ता। इन विषय पर अपन बातचीत करेंगा। लेकिन चौपाल करा स्वागत न कवा राम राम।
4: राम राम नमस्कार।
3: और जिस हमने शुरुआत में कहे थो कि कभी कभी अनचाना नहीं होतो है पर रवा तो भी नहीं होना परिवार में, क्योंकि हिंसा होने लगे बोलने का द्वारा मारपीट को निदान का ही छे यो भी हम आपसे जानना चाहें। पर अगर हम इना हिंसा की बात करें या इना कानून की बात करें तो हम यो जानना चाहेंगे कि यो कानून का ही है और यह हिंसा का दायरा में कसो न कब कब आवे।
4: अच्छा देखिए, क्या आज के दौर में महिला सशक्तिकरण तो अपने आप में परिपूर्ण है और आज हम 21वीं सदी की ओर जाने वाले हैं। इस तरह में जो सरकार के द्वारा महिलाओं को बहुत सारे प्रोविजन दे रखे हैं और एक महिला और पुरुष आज के दौर पे देखा जाए तो कंधे से कंधे मिला के कार्य कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन भी सजग है कि महिलाओं के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हो, कोई परेशानी ना हो, इस तरह से एक कानून बनाया गया है जिसको घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत महिलाओं को पूरा शोषण और परेशानी का उसमें पूरा संरक्षण किया गया है और जो पीड़ित है महिला और पति उसको जो परेशान कर रहा है या उसके परिवार में कोई परेशान कर रहा है उससे पूरा बचाव किया जाता है। क्योंकि महिला संरक्षण जो है उसमें महिलाओं को किस तरह का अपराध हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी मैं एक थोड़ी सी शार्ट समीक्षा बताना चाहूँगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि महिलाओं में शारीरिक हिंसा होती है, अब हिंसा कई प्रकार की होती है। हिंसा में देखा जाए तो महिला को मारना, चाटा मारना, धक्का देना या फिर जलाना या फिर हथियार से हमला करना, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है वो शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आती है। इसके लिए भी वो कोर्ट पे जा सकती है। इसी प्रकार देखा जाए तो मौखिक और भावनात्मक हिंसा भी होती है। अब मौखिक और भावनात्मक हिंसा ऐसा है कि पति द्वारा गाली गलौज करना, चरित्र पर शंका करना, बांझ बताना या बच्चे नहीं होना, इस तरह की हिंसा को आपकी मौखिक या भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत माना जाता है। इसी प्रकार आर्थिक हिंसा होती है। आर्थिक हिंसा में पति द्वारा या परिवार के सदस्य द्वारा महिला को समय समय पर पैसा देना या चिकित्सा खर्च के लिए आवश्यकता अनुसार पैसे देना, बच्चों के स्कूलिंग या अपने खुद की जीविका के लिए पैसे देना, ये नहीं देने पर वो आपकी आर्थिक हिंसा होती है। इसी प्रकार की अलग अलग प्रक्रिया के में हिंसा है और इन सब हिंसाओं के तौर पे आजकल महिला जागरूक है और महिला इनके लिए कुल मिला के धारा 12 के अंतर्गत एक आवेदन माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है, वो वकील के माध्यम से कर सकती है, स्वयं कर सकती है। ये प्रक्रिया के तौर पे वो आवेदन करने के तकरीबन 30 दिन के अंतर्गत नोटिस होगा। नोटिस होने के बाद पीड़ित जो है उनको नोटिस होने के बाद उनके आरोपी जो है उसको कोर्ट में समक्ष पेश होना पड़ेगा। ये प्रक्रिया घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है।
3: बिल्कुल सही कहो। सबसे पहली जो सो एक आम बात है, क्यों पुलिस के पास जाए शिकायत करे? कई बार समाज का लोग नख भी

0: बताओ तो सबसे पहली शिकायत कहाँ दर्ज करवाओ या कहाँ दर्ज करवाणु चाहिए अगर कोई घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला छे तो वो अपनी शिकायत कर जहाँ को अच्छा तरीका से निदान हो जाए तो वो कहाँ शिकायत करा और कसी कर ओ को आवेदन की ना प्रारूप में दे किना तरीका से दे यो जानना चाहूंगा।
1: देखिए घरेलू हिंसा जैसे मैंने आपको अलग अलग श्रेणी के अनुरूप बताया है कि इस तरह से घरेलू हिंसा होती है और उसके तौर पे वो संबंधित जहाँ ग्राम पंचायत हो तो ग्राम पंचायत में संबंधित थाना वहाँ जा सकती है। शहर है तो शहर में एक अच्छी बात यह कि महिला थाना बनाया हुआ है जहाँ शहर और गाँव की महिला जाके वहाँ अपनी वेदना बता सकती है। जो दहेज प्रताड़ना के केस की तरह से घरेलू हिंसा की भी अपनी वो एक FIR करवा सकती है कि
0: अच्छा
1: मेरे साथ ये घटना हुई है, मुझे धक्का मारा गया, मारा गया, मुझे कमरे बंद किया गया, या मेरे साथ पैसा नहीं दिए जा रहे हैं, या
0: आप लोग
1: इस तरह की
0: पूरो ब्यूरो लिखी ना उकम आवेदन पत्र में डाले
1: दे
0: से।
1: सकते हैं।
0: अच्छा
1: जी
0: उको निदान का लेना आपने बताया कि एक मजिस्ट्रेट का पास भी
1: धारा
0: चाहिए।
1: 12 के अंतर्गत क्या आवेदन दे सकते हैं, वो
0: अच्छा
1: केस लगा सकते हैं हम। और इसी के साथ धारा 19 ये बोलती है कि अगर महिला को पति द्वारा भगाया गया है या उसको उसके मकान से अन्य के लिए परेशान किया गया है तो धारा 19 उसको मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किया जाता है कि महिला को उसी मकान में रहने का आदेश दिया जा सकता है।
0: अच्छा हाँ कभी कभी ऐसा भी हो
1: जी
0: कि ओके धक्को मारी ना निकाली दी हो जाए
1: जी
0: इसकी यहाँ रहेगा नहीं नहीं
1: जी
0: ना रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी
1: एब्सोल्युटली
0: को हिसाब
1: एब्सोल्युटली
0: से
1: जी जी जी
0: तो ओके यो अधिकार छे कि
1: जी
0: वो अपनी उन्हीं घर में जा रही रही
1: जी
0: वहाँ रह सके
1: जी
0: तो फिर ओके यो डर नहीं रहेगा कि ओके परेशान करे तो ऐसी कोई सुरक्षा भी प्रदान करी जा सके।
1: उसको स्पेसिफिक महिला को सुरक्षा प्रदान की जाएगी, माननीय न्यायालय का आदेश पारित किया जाएगा। और इसमें अगर कोई आदेश का पालन नहीं होता है तो पति जो है आरोपी उसको कार्रवाई की जाएगी थाने के विरुद्ध में, और थाने थाने में उसको कस्टडी में रख दिया जाएगा, ऐसी
0: अच्छा
1: व्यवस्था की जाएगी।
0: एक जहन में बात ही रह जाए
1: जी जी
0: कि चूंकि अभी भी हमारी बहन इतनी आत्मनिर्भर नहीं है भाई परिवार में पति का द्वारा ज्यादातर पैसों आवज और बहन घर चलावज अब अगर ऐसा कोई घरेलू हिंसा हुई गई उनके साथ में तो उनकी आमदनी रुकी जाए तो कई पति का द्वारा उनका भरण पोषण का लेन या उनकी आमदनी का लेन कभी कभी बच्चा भी साथ में रहे छोटा रहे तो कोई वो भी उनका आर्थिक तौर पर अपनी जीविका यापन का लेन कोई प्रावधान छे।
1: देखिए धारा 20 के अंतर्गत एक इंट्रीम होता है जिस इंट्रीम में उनको भरण पोषण की तरह एक आर्थिक सहयोग के तौर पे आर्डर किया जाता है। और आरोपी पति की जो भी अगर वो सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है या फिर वो बिजनेस करते हैं, उनकी जो आय के समानुपात है जिसके उनका घर चल सके, ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय आदेश पारित करता है और उनको केस चलते तक पैसा फिक्स मिलता रहता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ व्यवस्थित हो सके, जिसमें बच्चों के शिक्षा से लगा के उनके घर खर्च लगा के और लालन पाषण में कोई प्रकार की कोई परेशानी नहीं आवे।
0: ये तो आपने बहुत अच्छे बताया।
1: जी
0: एक बात और जहन मेरी कि जनरली आपने कोई पति का द्वारा हो तो भरण पोषण मिल जाएगा अब हिंसा की जहां तक बात है तो कभी कभी सास का द्वारा प्रताड़ित हो नणन का द्वारा प्रताड़ित हो मतलब महिला महिला का द्वारा प्रताड़ित हो। अच्छा कई मामला ना अब यो भी देखना कई रोज कि सास बहू का द्वारा प्रताड़ित हुई रही चूंकि जहाँ नहीं नहीं बहू नहीं रही तो वृद्ध जो सास हुई गई या सास ससुर दोनों में से नहीं रहा है और एक व्यक्ति रहेल छे ससुर भी रहेल छे सास भी रहेल छे तो कहीं यहाँ इना तरीका न से भी कोई प्रावधान छे कि जहाँ पर सास का द्वारा प्रताड़ित हुई या बहू का द्वारा हुई रही तो वो भी घरेलू हिंसा का दायरा में आवेगा।
1: एब्सोल्युटली वो भी उसी के अंतर्गत आएगी, केवल पति के नहीं होता। कई बार क्या होता है विडो महिला रहती है, पति एक्सपायर हो जाते हैं लेकिन वो वहीं अपनी जीविका चलाती है, ऐसी स्थिति में ससुर जी कमा रहे हैं या सास है जो जो इनकम के सोर्स ज़्यादा उनके पास और उनके द्वारा अत्याचार किया जाता है तो भी वो महिला को संरक्षण के तौर पे घरेलू हिंसा उनके विरुद्ध में कर सकती है, उनके नाम पे कर सकती है वो कार्रवाई। जी
0: एक प्रश्न यो भी आई रोज
1: जी
0: कि चूंकि आपने बताया कि महिला का ये कानूनी अधिकार है अगर हम अधिकार न की बात करें कि सास करे तो बहू कचे बहू करे तो सास कचे पर कई बार हमको यो देखना में आई रहेल छे कि ससुर प्रताड़ित हो रहेल छे कई
1: अच्छा
0: बार तो यो को भी के दायरो बढ़ाए गए छे कि कोई भी व्यक्ति माने गए छे कि लिंग पर आधारित छे यो घरेलू हिंसा जो अधिनियम छी कहिए लिंग पर आधारित छे बहन नच का यो लाभ मिला है कोई भाई इना दायरा में नहीं आता है मतलब कोई पुरुष इना दायरा में नहीं आता है कहीं।
1: देखिए जो बैर एक्ट बनाया गया जिसमें स्पेसिफिक उल्लेखित घरेलू हिंसा महिलाओं

0: संरक्षण अधिनियम 2005, तो ये स्पेसिफिक हमारी बहनों और महिलाओं के लिए बनाया गया हुआ है। इस और जो भी पीड़ित जो है, जो आरोपी है पति जो उनके साथ शोषण कर रहा है, या ससुर जी कर रहा है, या फिर कोई अन्य कर रहा है परिवार का सदस्य,
1: अगर पुरुष
0: उसकी
1: व्यक्ति,
0: उसके संरक्षण के तौर पे इसको बनाया गया है।
1: बिल्कुल, तो यो हम सुनवाणा के जरूर करवांगे कि यो विशेष करी ने बैठ नकाले यो कानून छे और उनकी सुरक्षा नकाले ने यो कानून बनेलो छे। बच्चा ने की हमने बात करी कि कई बार कही कि संपत्ति की बात आवे, संपत्ति का बंटवारा की बात आवे, बच्चा ने की बात आवे, तो ओका में भी इना एको जो कानून छे एको लाभ बैठने का मिले कई
0: बच्चों के हिसाब से धारा 21 के अंतर्गत एक संरक्षण अभिरक्षा बच्चों के हिसाब से हो जाती है, जिसमें बच्चों को उनकी माता के संरक्षण में दिया जाता है। कई बार क्या होता है कि पुरुष जो कि आरोपी रहता है, अपनी पत्नी से बच्चे को जबरन बिना परमिशन के लेके चले जाता है, प्रेशराइज करता है, तो उस तौर पे धारा 21 के अंतर्गत तो उसको बच्चों के अभिरक्षा के अंतर्गत उसको रिलीफ दी जाती है और माँ को उन बच्चों के संरक्षण का अधिकार दिया जाता है।
1: अच्छा,
0: जी
1: कभी कभी कहे कि हम कानून में जो जिनका पर हिंसा हुएली छे या जो बहन छे वो केवल एकालेन कानून को सहारो नहीं ले पाती है कि हमका हमारे समस्या को समाधान हो गए या हमका जो मिलनो चाहिए वो लंबो खिंचाई जाए, समय बहुत ज्यादा हो जाए। तो यो कई समय आधारित भी छे कि इतना दिन में आवेदन करोगे तो इतना दिन में आपको सुरक्षा मिलेगा या आपकी समस्या को समाधान हो जाएगा।
0: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इस महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये है कि समय सीमा तय की गई है। इसमें तकरीबन आपने जो आवेदन लगाया माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष, 30 दिन के अंतर्गत उसकी कार्रवाई होती है, और 30 दिन से अगर डिले हुआ तो 60 दिन के अंतर्गत उस पर कार्रवाई हो जाएगी और उस पर आपको इंटीमेट सुरक्षा और आगे की प्रोविजन मिल सकता है। इसके साथ साथ धारा 23 के अंतर्गत उसको इंट्रिम चालू हो जाएगा, जिसमें भरण पोषण को जैसे बोल देते हैं, या फाइनेंशियली सपोर्ट बोल सकते हैं, या आर्थिक सहयोग बोल सकते हैं, वो धारा 23 के अंतर्गत तुरंत केस के बाद नोटिस होने के बाद उनकी इंट्रिम की व्यवस्था धारा 23 के अंतर्गत वो भी हो जाएगी। तो ज्यादा ऐसा नहीं कि उसको परेशान होना पड़े या फिर लंबा चले और तारीख पे तारीख परेशान हो, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। उनको केस के 60 दिन के अंतर्गत, मोस्ट प्रॉबली 30 दिन और उसके बाद ज्यादा हो तो 60 दिन के अंतर्गत उनको आरोपी से एक राहत मिल जाएगी और प्रक्रिया आगे जो है महिला के संरक्षण के लिए फायदेमंद रहेगा।
1: तो यो छे कि यो समय आधारित भी है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप हिंसा हुई रहल छे तो को निदान होना जरूरी छे और एक आवेदन आप डालोगा देगा तो समय आधारितों को जो भी प्रक्रिया होगा जिना तहत वो काम कार्रवाई जरूर से होगा। चलते चलते आप हमारी बहन के करना चाहो महिला कानून से संबंधित हम आपसे जानना चाहेंगे।
0: देखिए, इसमें एक अच्छी बात है, इसमें कोई रिलीजन का कोई मतलब नहीं है, इसमें सभी बहनें आ सकती हैं, इसमें पढ़े लिखे अनपढ़ उसका भी कोई विषय नहीं है। जागरूकता आजकल हमारी बहनें और महिलाएं बहुत जागरूक हैं, उनके तौर पे इस कानून में जहाँ कहीं आपको आर्थिक शारीरिक और मानसिक परेशानी हो इस कानून का उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ तक कि कोर्ट में भी आपको सरकारी वकील के तौर पर सरकार की तरफ से एक लीगल एक पैनल बनाया गया है, उसमें बिना फीस के भी आपको वकील मिल जाएगा और बहनों को पूरा सहयोग होगा, महिलाओं को पूरा सहयोग होगा। कभी कभी कि ऐसा होता है कि वकील साहब की फीस तगड़ी रहती है, इस तौर पे भी केस लन जाने में या वकील का नाम सुनने में महिलाएं वहां तक जाने जा नहीं पाती है। ऐसी स्थिति को करते हुए सरकार की तरफ से भी बहुत सहयोग किया गया है ताकि जागरूकता रहे और महिला पहले के अकेले परेशान ना हो और अपनी जीविका सुदृढ़ चलाए और आप कंधे से कंधे मिलकर अपनी जीविका और फाइनेंशियली मजबूत रहे।
1: बिल्कुल सही कहो, और हम सभी सुनने वाली बहनों को यो चाहें इना कानून को कभी उनको उपयोग करनो नहीं पड़े, पर कभी जिंदगी में ऐसी विषम परिस्थिति आई जाए तो घबराए नहीं, डटी ने जिंदगी में संघर्ष करा और आपका उन्हें संघर्ष में यो कानून पूरा तौर से आपको साथ देगा। मनोज सिंह सोनगरे, MK सोनगरे साहब, आप हमारी चौपाल पाया और हमारी बड़ी नख इना कानून के बारे में विस्तार से इतनी अच्छी जानकारी दी, एकालेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: घरेलू हिंसा, महिला कानून और अधिकार, इना बारा में अभी अपन ने भेंट वार्ता सुनी। भेंट वार्ता में मनोज सोनगरा, जो कि अधिवक्ता है उच्च न्यायालय इंदौर का, इनसे चर्चा करी रही थी बेन सुनीता पंडित। अन देखो विभिन्न कितनी अच्छी बात इन्हें बताई कि अपन बिल्कुल डरा नहीं, साहस का साथे अपन हर चीज़ को मुकाबलो करा। आना यदि अपने जानकारी हो कानून की तो अपन अपनी लड़ाई लड़ी भी।

लगता है। अने देखो जानकारी तो कई भी क्षेत्र में जरूरी है। अपन घर में काम काज करा उनमें भी यदि अपन जो मसाला हुन वापरी रिया है उनका बारे में अपन जानकारी रखा कि कौन सा मसाला में कौन सा पोषक तत्व है और भी अपनी जो शरीर है उनके किस तरह से फायदों पहुंचे सकता है, तो देखो यो भी अपना घना काम आवेगो। तो देखो आज अपन मसाला में खोलांगा हल्दी को डब्बो अने जानांगा कि अपन हल्दी से कौन कौन सा लाभ उठाई सकता है। भाई बहनों सर्दी जुकाम को मौसम चली रही है अने सर्दी जुकाम होवे तो हल्दी को दूध जिके कि गोल्डन मिल्क भी अपन का है इके अपन लांगा तो स्वास्थ्य के लिए यो बहुत फायदेमंद रहेगो। एक गिलास दूध में आधो छोटो चम्मच हल्दी को पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च डाली के रात में सोते समय थोड़ो कुनकुनो करके ने ले लो, इससे आराम मिलेगा। अने त्वचा के लिए तो हल्दी घनी फायदेमंद रेज है। बेसन और दही या दूध को पेस्ट बने लो और उमें चुटकी भर हल्दी डाली के चेहरा पे लगे लो, चेहरो चमकेगो और त्वचा संबंधी कोई छोटी मोटी परेशानी जैसे कि कोई कील मुहासा हुई रिया हो वे भी दूर हुई जाएगा। अने खांसी होए तो ऐसा में एक चम्मच शहद में थोड़ी सी हल्दी मिला के चाटी लो, खांसी से निजात मिलेगी। अने जो अपनी बहन होन है उनके मासिक धर्म का समय जो दर्द होवे उनकी पीड़ा बीत जाने अने उना दर्द से निजात पाने के लिए थोड़ी सी हल्दी गुनगुना पानी का साथे लेने से इना जो दर्द है इसमें राहत मिलेगी। पेट में दर्द हो तो एक गिलास गुनगुना पानी में आधो छोटो चम्मच हल्दी और थोड़ा सा कालो नमक डाली के इको सेवन कर लो, पेट दर्द से आराम मिलेगो। अने आजकल देखने में आवे कि जोड़ों को होन को दर्द हर घर में पायो जाइए, तो यदि जोड़ होन को दर्द हो तो सरसों का तेल में हल्दी मिला के अच्छी तरह से गर्म कर लो। अने जब यो तेल गुनगुनो रेवे तो इन्हें तेल से मालिश कर लो, इका से कहीं होएगो कि जो आपका जोड़ होन को दर्द है उससे आपके निजात मिलेगी। अने देखो भाई बहनों अब बखत हुई रही है कि एक लोकगीत और अपन सुना जी गाये है बेन शारदा पगारे ने।

बेनोन देखो त्योहार को समय चली रो है ना आप उपवास व्रत लगता ज रहेगा अने ना उपवास व्रत में अपन खोपरा का लड्डू बने के खेला तो देखो फरियाल भी हो जाएगो आना अच्छी चीज को सेवन भी हो जाएगो। तो क्यों नहीं अपन खोपरा का लड्डू बनानो आज अपन सीखला इका लिए अपने जरूरत पड़ेगी खोपरा को जो किसी हो वो खोपरो है वो ले लो 250 ग्राम, एक कटोरी दूध, आधी कटोरी शक्कर, आधी कटोरी मिल्क पाउडर, 2 से 3 चम्मच घी और इलायची को पाउडर, यो सगड़ो सामान अपन ले लो। अने फिर कढ़ाई में घी डाली के नारियल को बूरो डाली के दो ने फिर इका बाद धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट तक सेकी लो। फिर इना नारियल का बूरा में जो अपन ने दूध लियो थो वो दूध डाली के दूध ओटाने तक और अच्छी तरह से मिलाता रहो। जब दूध ओटाई जावे तो इमें शक्कर डाल दो और जब शक्कर पिघली के मिश्रण में अच्छी तरह मिली जावे तो इमें जो अपन ने मिल्क को पाउडर लियो है वो और इलायची को पाउडर मिलाई के अच्छी तरह से जब तक चलाता रहो जब तक कि वो मिश्रण है वो कढ़ाई छोड़ने नहीं लगे। जब मिश्रण कढ़ाई छोड़ने लगे तो आँच जो है वह बंद कर दो और यो कुनकुनो रे जदे हाथेली में थोड़ो थोड़ो सो घी लगाई के अच्छी तरह से लड्डू बांधी लो। अने इना लड्डू उनको सेवन आप भी करो अने पूरा परिवार के भी खिलाओ ने रिश्ता में मिठास घोलो। अने देखो अब मिठास घोलांगा अपन एक और लोकगीत की अपना कार्यक्रम में इना लोकगीत गाए हुए बेन हेमलता उपाध्याय ने।

भाई बहनों, बेन हेमलता उपाध्याय को गायो वो लोकगीत अपन ने सुनियो, अने लोकगीत का माध्यम से कितो अच्छो संदेश उसने अपने दियो है कि आप पेड़ लगाओ ने। अभी तो समय है झाड़ लगाने को, पेड़ लगाने को। तो भाई बहनों, इना बरसात का मौसम में आप खूब सारा पेड़ लगाओ और जिको फायदो हम लोग आगे चली के अपनी आगे वाली पीढ़ी के विरासत का रूप में दे सकांगा। अने देखो, बात तो करने के घनी सारी रे, पर देखो समय को मान तो अपने रखनो पड़े। समय को मान रखा और आज की चर्चा के यहाँ दा विराम। तमारी बेन मनीषा शर्मा के दोविदा, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुर्खियों में भोपाल से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण किर्गिस्तान गणराज्य यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का समसामयिक कार्यक्रम सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिज गणराज्य की यात्रा पर हैं, जहां वे बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत मध्य एशिया के साथ अपने रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बना रहा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के व्यापक कूटनीतिक और सामरिक महत्व पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राहुल मिश्रा।

0: राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सुबोध जी।
0: राहुल जी, सबसे पहले अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रधानमंत्री की जो किर्गिज गणराज्य यात्रा है, उसे आप भारत की विदेश नीति के हिसाब से किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि मध्य एशिया भारत के लिए अब लगातार ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
1: जी बिल्कुल, देखिए सुबोध जी, मध्य एशिया के जो तमाम देश हैं, ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे, और सोवियत संघ के विघटन के बाद ये सोवियत सेंट्रल एशिया या सोवियत मध्य एशिया के ये पांच गणराज्य बने, जिनके साथ भारत ने 1991 1992 से ही अपने कूटनीतिक संबंध, अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए। और भारत की बहुत प्रमुख नीतियों में से एक, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति के अलावा, अगर हम एक रीजन को लेकर के, एक खास क्षेत्र को लेकर के अगर भारत की कोई विदेश नीति को देखें, तो इस लिहाज से कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मध्य एशिया के देशों को भारत ने हमेशा से एक प्रमुख स्थान दिया है। इस संदर्भ में मध्य एशिया के देशों के साथ, हालांकि हमारी कनेक्टिविटी की जो डायरेक्ट लिंकेज की जो बात है, वो एक बड़ा प्रश्न है और एक अनसुलझा हुआ सवाल है। और इसी वजह से एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैंने अपने एक मित्र को दिया था कि दिल्ली से कोची जाने में आपको करीब करीब 3.5 घंटे लगते हैं, और इतना ही समय अगर आप दिल्ली से ताशकंद जाना चाहें तो आपको लगेंगे। तो सेंट्रल एशिया हमारे इतने नजदीक है, लेकिन भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से अब हमारे और उस क्षेत्र के बीच में इतनी कनेक्टिविटी नहीं। हजारों साल पुराना है हमारे संबंध जो है, वो इन भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से कहीं थोड़े से कमजोर हो गए हैं। कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के तहत और पिछले 12 वर्षों में अगर आप देखें, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य एशिया के तमाम देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने की बहुत कोशिश की। इसमें हम देख रहे हैं कि लगातार जो उनकी यात्राएं हैं इस क्षेत्र को लेकर, चाहे इस क्षेत्र में चाहे उज्बेकिस्तान हो या किर्गिस्तान हो या कजाकिस्तान हो, करीब करीब इन तमाम मध्य एशिया के देशों की उनकी यात्राएं 4 या उससे ज्यादा बार हो चुकी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट है जो कि किर्गिस्तान में हो रही है, वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
0: जी
1: लेकिन अगर द्विपक्षीय संबंधों को हम देखें, तो किर्गिस्तान के साथ भारत के संबंध बहुत मजबूत हैं, और उसमें रक्षा क्षेत्र बहुत ही आम लोगों में जानने वाली बात नहीं है, लेकिन किर्गिस्तान के साथ भारत के रक्षा संबंध भी बहुत मजबूत है, और वो मध्य एशिया में भारत को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ देते हैं।
0: जी जैसा आपने कहा अभी कि एससीओ का आपने उल्लेख किया, तो प्रधानमंत्री अभी 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और अब उसकी स्थापना के जो 25 साल पूरे हो गए हैं, तो भारत के लिए इस मंच की अभी क्या प्रासंगिकता है और भारत इसमें अपनी भूमिका को किस तरह देखता है?
1: एक उभरती हुई महाशक्ति के तौर पे भारत के लिए एससीओ एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। पहला इस वजह से कि ये पूरे जो कॉन्टिनेंटल एशिया, जिसको हम कहते हैं जो लैंड बेस, जमीनी जो एशिया है जो कि समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, उसके केंद्र में एससीओ है, और जिसमें चीन भी है, जिसमें रूस भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, और ये पांच जो गणराज्य हैं मध्य एशिया के, वो तो इसमें मेंबर्स हैं ही है। तो इस लिहाज से, और भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसमें सदस्य हैं, तो इस लिहाज से एससीओ की बड़ी केंद्रीय भूमिका है कॉन्टिनेंटल एशिया की जो भू राजनीति और उसके जो सामरिक और आर्थिक कनेक्टिविटी के जो सवाल हैं उनको सुलझाने के लिए। तो एक क्षेत्रीय संगठन के तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को ये इस क्षेत्र में, खास तौर से चीन और रूस के साथ मिलकर, इस क्षेत्र में आतंकवाद, अलगाववाद जैसी चुनौतियों से निपटने के साथ साथ कैसे हमारे तमाम देशों के बीच में आर्थिक सहयोग बढ़े, और इस पूरे क्षेत्र में भारत की भूमिका और तमाम देशों की भूमिका जो है वो प्रासंगिक रहे, इसके लिए एससीओ बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ एक अलग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये अगर हम उदाहरण या कंपैरिजन के तौर पे अगर हम क्वाड को देखें, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, उसके मुकाबले ये एक ऐसा संगठन है जिसमें कि वो देश हैं जिनके अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है, तो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट की जो नीति है उसको भी ये एक तरह से पूरी तरह से प्रोजेक्ट करता है। तो एससीओ इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत जो कि एक तरफ कॉन्टिनेंटल एशिया से जमीनी तौर पर जुड़ा हुआ है पूरे एशिया से, और दूसरी तरफ वो अपने हिंद महासागर और अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की वजह से समुद्रिक रास्तों से जुड़ा है, तो भारत जिसके पास ये दोनों ही एक तरह से कहें कि प्लस पॉइंट्स हैं, उस लिहाज से एससीओ की सदस्यता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की।
0: राहुल जी, भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच केवल रणनीतिक हितों तक ही संबंध नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है।

0: वो। और हमारे इन दोनों देशों के बीच शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क भी, ये भी आपसी रिश्ते का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन पुराने संबंधों को आधुनिक कूटनीति में किस तरह अब एक नई ऊर्जा दी जा सकती है?
1: किर्गिस्तान की जो एक बहुत ही खास बात है कि हमेशा से ही भारत और किर्गिस्तान के संबंध द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ, एक अगर हम इनको दो स्तंभ माने तो द्विपक्षीय के साथ साथ रीजनल जो संस्थान है, मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो SCO के जरिए हो या अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ हो, इन दोनों में ही भारत और किर्गिस्तान के बीच में संबंध इन दोनों ही तरीकों से बहुत आगे बढ़े हैं। दोनों देशों के बीच में व्यापार हालांकि 1 बिलियन के आसपास ही पहुंचता है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। किर्गिस्तान के साथ भारत के संबंध, जैसा कि सेंट्रल एशिया के बाकी देशों के साथ भी समस्या है, कनेक्टिविटी एक बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट ना होने की वजह से हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचता है एयर कनेक्टिविटी का। तो आर्थिक मामलों में मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी की वजह से बहुत सी दिक्कतें पेश आई हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत और किर्गिस्तान के बीच में पिछले बहुत वर्षों से खंजर नाम की एक्सरसाइज होती रही है, जिसका 13वां संस्करण अभी फरवरी 2026 में हुआ था। हाईटेक प्रोग्राम्स को ले लें, या जिसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं किर्गिज सिविल सर्वेंट्स की और उनके तमाम जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, या पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस को लेकर के, कल्चरल कनेक्ट को लेकर के दोनों ही देशों के बीच में सहयोग के बहुत सारे रास्ते तलाशे गए हैं। इसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक IT सुपर पावर के रूप में और खास तौर से ग्लोबल साउथ के देशों को अपने साथ लेकर चलने वाले IT सुपर पावर के तौर पे भारत ने अपनी एक बड़ी भूमिका तलाश ली है और दुनिया के तमाम देश उसको मान रहे हैं। तो इस लिहाज से भी किर्गिस्तान में एक IT सेंटर, भारत ने हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के तहत एक IT सेंटर बनाया है जिस पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। एग्रो प्रोसेसिंग, हायर एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल तो खैर बहुत बड़ा क्षेत्र दोनों देशों के बीच में हमेशा से रहा है। तो ये तमाम क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देशों के बीच में सहयोग रहा है, और मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि किर्गिस्तान के साथ भारत के संबंध आपसी विश्वास, परस्पर संबंधों में एक अटूट विश्वास के साथ साथ दोनों देशों के हितों में और उनकी जो डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही प्रामाणिक दोनों देशों के बीच में दोस्ती रही है। तो हमेशा से ही किर्गिस्तान को भारत ने मध्य एशिया के एक महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर देखा। हालांकि दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग उतना बड़ा नहीं है, लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग की वजह से इस देश की महत्ता भारत के लिए बढ़ती है। एक बड़ा एंकर है ये, जिसे कहते हैं कि भारत को मध्य एशिया के क्षेत्र में स्थापित करने के लिए एक बड़े दोस्त, एक बड़े एंकर, एक बड़े होस्ट के तौर पर किर्गिस्तान को आंका जा सकता है।
0: जी, आपकी इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं थोड़ा, तो क्या लगता है कि जो मध्य एशिया के अन्य देश हैं उनको मिलाकर भारत एक अपनी मध्य एशिया की अलग रणनीति विकसित कर रहा है? अभी जो हर देश के साथ एक द्विपक्षीय संबंध अलग अलग है, उससे परे है जो सभी देशों के साथ मिलकर काम करने की बात है, क्या ऐसा कुछ भविष्य दिखाई देता है आपको?
1: जी बिल्कुल, भारत की एक बहुत ही स्पष्ट और एक बहुत ही दीर्घकालिक रणनीति है मध्य एशिया के देशों के साथ मिलकर काम करने की, जिसको हम कनेक्ट सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं। लेकिन कनेक्ट सेंट्रल एशिया के साथ साथ भारत ने यह भी कोशिश की है कि हम सिर्फ कनेक्टिविटी, कॉमर्स, काउंसुलर रिलेशंस और कम्युनिटी, ये जो 4 C's हैं, इनसे बाहर निकलकर हम उस क्षेत्र को ही इस ढंग से रखें अपने विदेश नीति के दीर्घकालिक जो हमारे गोल्स हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रखें तो सेंट्रल एशिया को कैसे इस डायरेक्शन में लाया जाए कि दोनों ही पक्षों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर संबंध बने और दोनों ही पार्टीज इसमें प्रॉस्परस और ज्यादा स्टेबल और ज्यादा म्यूचुअली एडवांटेजियस सिचुएशन में पहुंचे। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि इस कनेक्ट सेंट्रल एशिया के माध्यम से भारत ने ये एक रणनीति बनाई तो बहुत साल पहले थी, और 90 के दशक से ही भारत ने इस पर काम करना शुरू किया, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे जो मेजर फंडामेंटल किस्म के जो हमारे पास समस्याएं हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको दूर करने में थोड़ी सी हमें दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण समस्या है कनेक्टिविटी, डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। तो ईरान की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, रूस के साथ मिलकर भी हमने कोशिश की कि सेंट्रल एशिया के क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए और भारत की एक नई रणनीति बने। बहरहाल भारत की कोशिश ये है कि मध्य एशिया के देशों को हम आइडियोलॉजी के तौर पर, एक विचारधारा के संदर्भ में हम उसे ग्लोबल साउथ के साथ जोड़ें, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का जिक्र अपनी उज्बेकिस्तान की यात्रा में पहले ही कर दिया है। दूसरी बात यह है कि भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे कि हम रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं, या सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो जिसमें डिजिटल पेमेंट्स या IT कॉपरेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जो लिंकेजेस हैं, इंटरनेट, टेलीफोनी और तमाम चीजों के जो सॉफ्ट कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और तीसरी चीज है कि वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें मध्य एशिया के देश एक विकसित भारत 2047 का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में जिम्मेदार दोस्त की
0: जी
1: भूमिका निभा सकते हैं, और उसमें क्रिटिकल मिनरल सेक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल
1: मध्य एशिया के तमाम देश हैं जो क्रिटिकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में काफी बड़ा हिस्सा रखते हैं, उनके पास बहुत सारे ज्ञात और अज्ञात सोर्सेज हैं
0: जी
1: पोटेंशियली, जिसमें बहुत सारे सोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। चीन ने इसमें तमाम कोशिश की है। तो भारत की अब ये रणनीति है, जो सवाल आपने पूछा उसका अगर मैं एक लाइन में जवाब दूं, तो भारत की रणनीति ये है कि विकसित भारत 2047 के संदर्भ में मध्य एशिया के देशों को कैसे अपनी नीति से ऐसे अलाइन किया जाए कि उनका भी भला हो और भारत का विकास हो, और 2047 में हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें।
0: जी, मतलब भारत के व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और निवेश, इन सब के लिए इस क्षेत्र में भी प्रबल संभावनाएं हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। मैं ये मानता हूं कि 90 के दशक से ही मध्य एशिया ऐसे तमाम जंजालों में उलझा रहा, जियोपॉलिटिकल, जिसमें अफगानिस्तान की भी समस्या है, मध्य एशिया के तमाम देशों की अंदरूनी बहुत सी समस्याएं रहीं। तो ये सही समय भारत और मध्य एशिया के बीच में संबंधों का जो सही उसका जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने का नहीं आया। बट मुझे लगता है कि आगे आने वाले 10 सालों में हम देखेंगे कि मध्य एशिया की वाकई में कितनी बड़ी भूमिका इस भू राजनीतिक व्यवस्था जो एशिया की है उसमें है, और SCO जैसे संगठन के माध्यम से कैसे उनकी एक तरह से केंद्रीय भूमिका होती है जब वो महाशक्तियों के साथ, भारत, चीन और रूस के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और तीसरा, भारत का जब विकास हो रहा है इतनी तेज रफ्तार से और भारत एक विकसित महाशक्ति बनने की राह पर है 2047 तक, तो हम आगे आने वाले 10 सालों में देखेंगे कि मध्य एशिया कैसे इसमें एक बड़ा योगदान देता है, और जो हमारी 1000 साल का जो एक बहुत समृद्ध इतिहास रहा है दोनों ही पक्षों के बीच में संबंधों का, मुझे लगता है इस पूरी यात्रा के दौरान, 10 और आगे आने वाले समय की यात्रा के दौरान, इन तमाम बातों को फिर से हम रेखांकित कर पाएंगे और अपने इतिहास को फिर से पुनर्जीवित कर पाएंगे।
0: जी, राहुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किर्गिज गणराज्य यात्रा, SCO की भूमिका और भारत मध्य एशिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर अपने सार्थक विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी, बहुत धन्यवाद।
0: इसके साथ आज के सुर्खियों में कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण किर्गिस्तान गणराज्य यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम।
5: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

जिसे देखा नहीं उसने दिखा दी सारी दुनिया, जिससे मिले नहीं उसने बसा दी दुनिया। बिन देखे उसके पास आने का एहसास करता है बेचैन मुझे हर रात। होश कहाँ रहता है मुझे, दिल कहता है प्यार हुआ है मुझे। मन उसी ओर जाता है, खुद ब खुद कदम बढ़ जाते हैं प्यार की दुनिया में। दिल की आवाज़ कुछ यूं आती है, होठों पे ये नगमा लाती है। बड़े अरमानों से रखा है बलम, तेरी कसम प्यार की दुनिया में ये पहला कदम।

गुम हो जाती हूँ मैं उसके ख्यालों में। सांसें तेज और धड़कन बढ़ जाती है। ये गुदगुदाता एहसास हमें और करीब लाता है, जैसे पानी किसी रंग में मिल जाता है। हम भी मिलते हैं उसी तरह, सिर्फ ख्यालों में। मस्ती भरा तराना फिर रात गाती है, आंखों में नींद आकर दूर चली जाती है। बेताब हो जाता है दिल मचल मचल के, रात बीतती है करवट बदल बदल के। भीगी हुई हवाएं, मौसम भी है गुलाबी,

क्या चांद क्या सितारे, हर चीज है शराबी। धीरे से कोई नगमा कोई सुना गया है, वो कौन है जो ख्वाबों पे छा गया है।

पत्थर तराश के मैं मूरत नहीं बनाऊंगा, पूजा करूंगा उसकी, गीत उसी के गाऊंगा। ये मूरत मेरे मन की है, ये सूरत मेरे दिल की है, तराशा है क्या अब ये दिखलाऊंगा, पूजा करूंगा उसकी, गीत उसी के गाऊंगा। पत्थर जो मैंने देखा, जाने क्यों दिल मेरा धड़का, सोचा सीने से लगा लूं ये भी पिघल जाएगा, फिर दूंगा आकार जो मेरे मन को भाएगा, तराशूंगा कुछ इस तरह से करिश्मा खुदा का हो जाएगा, देखने वाला देखता ही रह जाएगा। रूप की चांदी होगी, प्यार का सोना होगा, रंग वफा के भरूंगा और करता हूं वादा, कभी प्यार न दूजा करूंगा।

मुझे अपने दर्द का हमदर्द बना लो, दिल में नहीं तो ख्यालों में बैठा लो, सपनों में नहीं तो आँखों में सजा लो, अपना एक सच्चा एहसास बना लो, बन जाओ हम सफ़र हम डगर हम राज बना लो, मुझे कुछ इस तरह से अपना लो कि अपने दिल की धड़कन बना लो, मुझे छुपा लो सारी दुनिया से ऐसे कि अपना गहरा राज हो जैसे, करो मुझसे मोहब्बत।

अपनी अपनी हर एक चाहत का अंजाम बना लो। रख दो अपना हाथ मेरे हाथों में इस तरह कि मुझे अपने जीवन का हम सफ़र बना लो।

एक अदा आपकी दिल चुराने की, एक अदा आपकी दिल में बस जाने की, चेहरा आपका चांद सा और एक हसरत हमारी उस चांद को पाने की। जब दो दिल प्यार में होते हैं तो सारी रात आँखों में निकल जाती है, मस्ती भरी हवाएं चलती हैं, कली कली खिल जाती है, दिल कहता है बस उसी का हो ले, जिसके लिए कट रही ये रातें आँखों में, तारे भी संग जग रहे हैं हमारे, क्योंकि चांद भी खोया है उसके ख्यालों में।

हर प्रेम कहानी में एक प्रेमी जोड़ा होता है और हर प्रेमी जोड़े की एक कहानी होती है, किसी की पूरी तो किसी की अधूरी होती है। कहानी में रूठना, मनाना, मिलना, बिछड़ना सब होता है। प्यार करने वाले बादल और पानी की तरह होते हैं, जो मिलते हैं तो खूब बरसते हैं, या फिर दिए और बाती की तरह होते हैं, जो जले तो साथ, बुझे तो साथ। कुछ दूर चलो, कुछ दूर चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। समझे ना जिसे तुम, वो आँखों से कह देंगे। लबों पर जो रह गई प्रेम निशानी है तू, मेरे होठों की हंसी मेरी कहानी है तू।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब कार्यक्रम दिल्ली से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में FC Under-20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में

0: भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादुल जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली

0: उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री ने कहा कि समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
2: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए

0: और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of the current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900, over 4,000 remain missing. And in football, India begin campaign at under 20 Asian Cup qualifiers with 1-0 win over Syria at Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continue to scale new heights.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं।

0: इस गीत के साथ ही चित्रगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। पब्लिक स्पीक अब दिल्ली से रिले करेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

नमस्कार दोस्तों, चर्चा के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, एक दौर था जब बैंकों के बड़े बड़े दरवाजे देखकर आम आदमी हिचकिचाता था, साहूकारों के चंगुल में फंसकर पीढ़ियां कर्जे में डूब जाती थीं। लेकिन आज वक्त बदला है। आज आपकी जेब में रखा मोबाइल ही आपका बैंक खाता बन गया है, या कहें वित्तीय समावेशन का औजार बन गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन खाता हो, रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना हो, या छोटे कारोबार के लिए मुद्रा लोन हो, वित्तीय समावेशन ने आखिरी पायदान पर खड़े आदमी को भी ताकत दी है और उसे सशक्त बनाया है। जब एक महिला को स्वयं सहायता समूह से लोन मिलता है और वो अपनी सिलाई की दुकान या फिर बुटीक खोलती है, तो वो सिर्फ एक दुकान नहीं खोलती बल्कि एक पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनता चला जाता है। यही तो है असली नागरिक सशक्तिकरण, जब पैसा सीधा आपके खाते में आता है बगैर किसी बिचौलिए के, तो व्यवस्था पर भरोसा और बढ़ता है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक ऐसे बदलाव की जो देश के आम नागरिक के जीवन को और बेहतर और स्वाभिमानपूर्ण बना रहा है। और आज इसी बदलाव की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी को और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक और विशद अनुभव के

0: धनी रमेश कुमार अरोड़ा जी को। स्टूडियो में आप दोनों ही विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
0: और दोस्तों हम बताएं कि विषय जो है हमारा बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा। दोस्तों हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, नंबर हैं 0112331081 और 23717117 23717106 और 233144444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो भूलिए नहीं 011 जरूर डाल कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर की भी सुविधा है जिस पर आप हमें सवाल अपने भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। तो दोस्तों हम इंतजार करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का और बात करेंगे हम अपने विशेषज्ञों से भी। और मैं देख रहा हूं कि अंशु कुमार जी जुड़ रहे हैं हमसे पटना बिहार से, सुनते हैं उनका सवाल जी। जी अंशु कुमार जी बोलिए।
2: नमस्कार सर।
0: जी जी जी क्या है आपकी जिज्ञासा? हाँ हाँ स्वागत।
2: सवाल यही था जो हम लोग को जब दी ब्याज है हम लोग हेलो
0: जी जी
2: हम लोग जब दी ब्याज है तो हम लोग को जो पैसा मिलता है तो बैंक में पैसा निकालने से मिलता है, क्या क्या हम लोग को करना चाहिए, क्या हम लोगों को ओटीपी भी बताना चाहिए? अगर ओटीपी बताएंगे तो क्या क्या हो सकता है, और आधार कार्ड नंबर और खाता संख्या इसे हम जब बता देंगे तो क्या क्या होगा?
0: बैंक से पैसा निकालने के विषय में इनका ये सवाल है कि ओटीपी नंबर अगर कोई और पूछता है तो संभवतः मैं जितना समझ पाया इन्होंने पूछा है तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, क्या यदि कोई और पूछ रहा है तो क्या वो बताना चाहिए?
1: नहीं बिल्कुल नहीं, कभी भी कोई भी बैंक आपसे ओटीपी की जानकारी नहीं मांगेगा, ना आपकी पूरा आधार नंबर की कोई डिटेल मांगेगा। ओटीपी केवल आपका पर्सनल के लिए है, जब भी आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं ऑनलाइन निकाल रहे हैं तो आपको ओटीपी खुद आपको डालना है और उसी हिसाब से आपका पैसा ट्रांसफर हो पाएगा। या निकालना है एटीएम पर जा रहे हैं तो आपको अपना पिन जो है अपने आप कॉन्फिडेंशियल रखना है, ना कि किसी को बताना है, किसी को बताएंगे तो फ्रॉड होने के चांस पूरे हैं।
0: जी हाँ ओटीपी तो दरअसल आपके पास है और उसे यदि आप किसी के साथ साझा करते हैं तो उसमें बेहद जोखिम है। और जैसा कि आपने बताया हमें महाप्रबंधक आप रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रमेश कुमार अरोड़ा जी बता रहे थे, तो आप इस सलाह को जरूर आप फॉलो कीजिए, इस पर अमल कीजिए और अपना ओटीपी जो है किसी को बताइए नहीं। और अब मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूं शुभमोय भट्टाचार्य जी से जो आर्थिक विश्लेषक हैं कि आप हमें बताइए, कृपया हमारे श्रोताओं को और हमें समझाइए कि ये जो वित्तीय समावेशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन है दरअसल कैसे इसे समझा जाए कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी?
3: सबसे पहले आकाशवाणी को नमस्कार मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
0: नमस्कार जी।
3: मैं वित्तीय समावेशन बहुत बड़ी शब्द है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस पर भी हम बहुत सारे शोध पत्र लेख वगैरह प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा उदाहरण देता हूं। आज किसी भी भारत के कोने में कोई भी खुदरा दुकान में आप जाइए, सबसे पहले दुकानदार आपको किसी भी चीज के बिक्री के लिए सबसे पहले वो QR कोड सामने पकड़ा देगा। उनको पता भी नहीं है कि QR कोड कैसे चलता है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनको ये भरोसा है कि ग्राहक जब उनसे कोई सामान खरीदते हैं QR कोड से पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट बिल्कुल कंफर्टेबली उनके पास उनके बैंक खाते में चला जाता है। वो भी अपना जब कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं उसी QR कोड के जरिए UPI में अपना पैसा अपना खाता देख लेते हैं और खाते और खुश होकर अपना जो भी खरीदारी वगैरह है उसका निपटाना करते हैं
0: जी।
3: ये जो चीज हुआ है लोगों को पूछने की जो

0: जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो मिल गया है उनको, जो जो अधिकार मिल गया है, मैं इसी को ही फाइनेंशियल इंक्लूजन मानूंगा कि लोग जानते हैं, समझते हैं कि बटुए में पैसा रख कर या कहीं पे कुछ भी चीजों का जो पुराने समय का, जो और पुराने समय कह रहा हूं मतलब कुछ ही साल पहले का
1: जी जी,
0: जो ये अनुभव था वो बिल्कुल लोगों के दिमाग से मानो बिल्कुल हट गया है, बिल्कुल इरेज हो गया है। मैं इसी को ही वित्तीय समावेशन मानूंगा। इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे इसके स्टेप्स हैं, बहुत सारे इसके टेक्नोलॉजी है और इन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है कि भाई हम पैसा कहीं से भी ले सकते हैं, किसी तरीके से मिल सकता है, बस हमें एक QR कोड सामने होगा, वो हमारा पूरा सब काम के लिए अवेलेबल है। आज रुपये का शायद तो रुपये का चेहरा शायद बहुत जगह पे लोगों को याद नहीं होगा कि रुपये का सिंबल क्या है, लेकिन QR कोड क्या है ये बच्चा बच्चा तक समझता है। और मैं समझता हूँ ये भारतीय फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश का ये सबसे बड़ा और सबसे पुष्ट उदाहरण है।
1: जी शुक्रिया। मैं मुखातिब होता हूं अब अरोड़ा साहब से, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, और उनसे मैं खास तौर पर ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए देखिए जनधन योजना, मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि जैसी कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, तो आपका जो ये वर्षों का अनुभव है वो क्या बताता है कि इन योजनाओं में जमीनी स्तर पर आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को किस तरह से प्रभावित किया है? तो ये तो है हमारा आपसे सवाल, लेकिन एक और सवाल हमारे पास एक श्रोता का दिखाई दिया था अभी, लेकिन शायद अभी लाइन पर नहीं है। जी हाँ, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को इन योजनाओं ने प्रभावित किया है?
2: जैसा कि अभी भट्टाचार्य जी ने बोला है, वित्तीय समावेशन का केवल ये नहीं है कि हम एक बैंक में खाता खोलें। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि बैंक में अकाउंट हो, उसे हम क्रेडिट सुविधा दें, छोटे जो हमारे लोग हैं या जो भी बैंक में आ रहा है उसको इंश्योरेंस की सुविधा दें, पेंशन की सुविधा दें और डिजिटल पेमेंट कराएं, तो तब हम ये मानेंगे कि हमारा वित्तीय समावेशन, केवल बैंक खाता ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये सारी फैसिलिटी भी हम दें। जहां तक बात है कि कितना बेनिफिट हुआ है सब लोगों को इसे वित्तीय समावेशन से, तो सबसे बड़ी बात जो है मिडिल मैन का, इनका निवारण हुआ है। जैसे गवर्नमेंट की कोई एलपीजी की है, फर्टिलाइजर है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये पैसा जो है डायरेक्ट खाते में जमा हो रहा है, मिडिल मैन इसमें से बिल्कुल हट गया। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा एक फायदा ये हुआ है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो गांव में लोग हैं, जो बीच में, उन्हें मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा उनके खाते में जा रहा है। दूसरा, जो इन्फॉर्मर मनी लैंडर्स हैं उनसे जो 40-50% 60% तक ब्याज पर पैसा उठाते थे, वो जब ये मुद्रा योजना आई, जब ये स्वनिधि योजना आई, इसके थ्रू क्या हुआ कि ये जो हमारे छोटे हैं, गांव में किसान हैं, जो रेड़ी पटली वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, इनको जो है मनी लैंडर के पास ना जाके सीधा बैंकों के साथ जोड़ा गया है वित्तीय समावेशन के थ्रू, तो उनको ये बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। साथ में डिजिटल फाइनेंस का, जैसे अभी बात बताया डिजिटल का, यूपीआई के थ्रू सारी पेमेंट आपका यूपीआई के थ्रू हो रही है, तो कैश का ट्रांजेक्शन जो है कम से कम हो गया। और जो रूरल क्रेडिट एसेस है वो हमारा बढ़ रहा है वित्तीय समावेशन के थ्रू। तो ये सारी चीजें होने के बाद साथ में हमें पेंशन की सुविधा मिल रही है, पेंशन की सुविधा अटल पेंशन योजना जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और इसी तरीके से हमारी इंश्योरेंस की स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके थ्रू पेंशन की सुविधा भी मिल रही है, साथ में इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है, और डिजिटल पेमेंट भी हो रहा है, क्रेडिट की सुविधा हमारी मिल रही है, और साथ में बैंक अकाउंट PMJDY के वो भी खुल रहे हैं।
1: जी, तो आपने इन तमाम सुविधाओं की जानकारी दी हमें, जनधन योजना, मुद्रा लोन और पीएम स्वनिधि के अलावा अटल पेंशन की और जो बीमा की भी जो योजना है उनके विषय में आपने चर्चा की। तो आज हम देखें तो यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग की वजह से वित्तीय लेन देन तो काफी आसान हो गया है, लेकिन साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड और

0: ताले भी काफी बढ़े हैं, तो डिजिटल रूप से सुरक्षित रहने के लिए आप क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को? क्योंकि प्राय ऐसी घटनाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं, प्रचार माध्यमों से सुनते हैं कि बहुत सारी धोखाधड़ी की जो घटनाएं हैं वो अप्रिय घटनाएं वो देखने में आती हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या आपकी सलाह होगी?
1: ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल पेमेंट यूपीआई के थ्रू जो हमारी पेमेंट हुई है इससे हमारा काफी सुविधा हुई है, लेकिन साथ साथ इसके साथ रिस्क भी हुए हैं जिसके लिए हमें सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ओटीपी आप किसी को शेयर ना करें, कोई अनजान कोई लिंक ना खोलें, ये सबसे जरूरी है, तभी आप इनसे बच सकते हैं। तो साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा आजकल प्रोग्राम है कि फाइनेंशियल लिटरेट करना बहुत जरूरी है, सभी को बताना पड़ेगा कि हमें जहां ये हमें फायदा हो रहा है यूपीआई से, क्योंकि डेली बेसिस पर 60 से 66 करोड़ का पर डे की जो है ट्रांजेक्शन हो रही है रफली।
0: जी जी,
1: और आप पर डे 20 ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, और 1 लाख की मॉनिटरी कैप रखी हुई है और 5 लाख की कैप रखी है अगर आप हॉस्पिटल को या कहीं टैक्स वगैरह के लिए या स्कूल वगैरह पेमेंट करें। तो जब इतना बड़ा लेन देन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो साथ में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।
0: बिल्कुल जरूरी है। और हमारे साथ एक श्रोता फिर बिहार सासाराम से जुड़ रहे हैं, अमित उपाध्याय। तो उपाध्याय जी, क्या सवाल है आपका, कहिए।
2: नमस्कार, जीते हुए विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बहुत बधाई कि हमारे जनधन खाता जो है खुले हैं 59 करोड़, ये बहुत अच्छा दिलचस्प है। इसमें भी मैं भी कोरेस्पोंडेंस नहीं चलाता हूँ, बीसी हूँ। और मेरा एक सवाल था सर कि जैसे अभी बजट में हम लोग जैसे कि यूपीआई से जो पेमेंट हम लोग करते हैं अभी, तो यूपीआई से जो बढ़ा हुआ है इसमें कुछ चार्जेस की कुछ बात हो रही थी कि इसमें घट रहा है या बढ़ा है, इस पर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा प्रकाश डाल देना कि इसमें बढ़ा है या फिर घटा हुआ है। जैसे हम लोग जितना ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर, जितना जिसे हम लोग क्यूआर कोड से जो हम लोग पेमेंट करते हैं, इसका इसमें हम लोग जो महीना मंथली बेसिस पे इसको हम लोग गणना करते हैं, तो उसके हिसाब से इसको कुछ चार्ज करते हैं या टैक्स वगैरह, इस पर थोड़ा सा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और हमारे विशेषज्ञ आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे जी।
1: हाँ, ये जो चल रहा है अब, ये न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, या बात अमित जी सही बात बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कस्टमर को कोई अलग से पेमेंट नहीं लगेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये अगर एमडीआर के जो चार्ज लग रहे हैं वो भी जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स के लिए है, वो जो जो जैसे दुकानदार वगैरह हैं उनके ऊपर चार्जेस लगने का प्लान है, अभी भी वो हुआ नहीं है फाइनल, इस पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन ये क्लियर कट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि आपको इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, यानी कस्टमर को इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई चार्ज नहीं देने पड़ेंगे
0: जी। तो उम्मीद है कि आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल हो गया है। और हमारे साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं MR चौधरी। कहिए चौधरी साहब, क्या है जी जी, कहिए सवाल।
3: ये मैंने फाइनेंस में भी सेक्रेटरी को चिट दिया, उसका कोई जवाब नहीं है
0: आपका,
3: आम पब्लिक के लिए
0: जी। तो लगता है संपर्क कट गया है। और आपसे हम, खैर, एक और हमारा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो हम अक्सर प्रायः लोगों से सुनते हैं वो ये है कि ऋण लेने के लिए व्यक्ति कहीं पर जाता है तो अक्सर उसका जो क्रेडिट स्कोर है या सिबिल स्कोर जो है वो बड़ा मायने रखता है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में जानते नहीं है कि कैसे एक आम आदमी अपने इस क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकता है। और ये जो स्कीम्स हैं, खासतौर पर ये जो समावेशन की जो है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की ये जो योजनाएं हैं, क्या इनमें भी ये स्कोर मायने रखता है? जैसे कि हम कोई फर्ज कीजिए कि वाहन लोन लेने के लिए या मकान बनाने के लिए जाते हैं तो वो देखा जाता है, तो इस विषय में क्या व्यवस्था है?
1: जैसे प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है, इसमें कोई भी सिविल वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई बैंक आपसे सिविल नहीं मांगेगा। इसमें जैसे फर्स्ट ट्रांच में 15,000 रूपये लोन मिलता है, सेकंड जो है 25,000 है, थर्ड ट्रांच में 50,000 है, तो इसमें कोई भी आपको जो है सिविल वगैरह की बैंक नहीं मांगेगा, नई सिविल की जरूरत पड़ती। हाँ, मुद्रा योजना में जरूर है कि उसको कोई डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिफॉल्टर है

0: तो उसमें मुद्रा योजना में अधिकतर हमारा
1: जी बिल्कुल आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि सिबिल स्कोर की कहां जरूरत है और कहां नहीं। एक सवाल हम ले रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं श्रोता शिमला से, और राकेश जी कहिए आपका क्या प्रश्न है।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हम दृष्टिहीन लोग हैं, हम बैंक नहीं जा सकते, हम अपना जो है बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, कृपया करके आप बताइएगा।
1: हम अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, तो इस विषय में तो जाहिर है चूंकि बैंकिंग से सीधे तौर पर हमारे विशेषज्ञ जुड़े रहे तो वो आपकी जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे। जी
0: ऐसा है कि बैंक में जो भी आपके साथ दूसरा अकाउंट अगर होल्डर साथ में आपने रखा हुआ है, कोई ट्रांजैक्शन होती है तो कभी दूसरा साथ में होगा तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं, और या आप अपना जो बैंक में जाके जो वहां का स्टाफ है उससे भी बैलेंस पता कर सकते हैं। तो यही एक तरीका है जिससे कि आप अपना बैलेंस पता कर सकते हैं।
1: शुभमोय सर, आपसे हमारी जो जिज्ञासा है वो ये है कि एआई की क्या भूमिका है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में, इसे एक विस्तार देने में, क्योंकि हमने अखबारों में पढ़ा था कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो काफी इस विषय में सक्रिय रहा, तो इस पर कुछ हो सके तो प्रकाश डालिए।
3: बिल्कुल, और सबसे पहले मैं कहूंगा कि एआई, आप अभी सवाल का डिस्कशन कर रहे थे किस हमारे प्रश्नकर्ता से कि सिबिल स्कोर जिसके पास नहीं है उनको कैसे लोन मिल सकता है। तो एआई, भारत सरकार ने एक नया आयाम शुरू किया है, वो है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस
1: जी।
3: ये एआई की मॉडल है, डिजिटल फुटप्रिंट, जिससे आम जनता जिनके पास सिबिल स्कोर नहीं है या सिबिल के किसी वजह से वो आए नहीं है, तो उनका जो पेमेंट, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो क्यूआर कोड से, यूपीआई से वो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है उनको, वो देखकर ही एआई एक यूनिफाइड लेंडिंग का सिस्टम समावेशन शुरू किया है। ये बहुत बड़ा आयाम है जिससे हम कह सकते हैं फ्रिक्शनलेस क्रेडिट अवेलेबल होगा भारत के हर नागरिक को, यानी कि एक वित्तीय समावेशन का ये एक इतना बड़ा चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि क्रेडिट लेंडिंग के मामले में ये एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये इतना बड़ा इसका प्रारूप तैयार हुआ है कि जिससे एपीआई बेस्ड फ्रेमवर्क से सबको सारे द लास्ट माइल जिसे हम कहते हैं जो भारतीय है उनको भी क्रेडिट मिलेगा सिबिल के ऊपर या क्रेडिट स्कोर के ऊपर, उनको निर्भरशील नहीं रहना पड़ेगा। तो ये आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी एक चीज है जो दुनिया में इसका कोई पैरेलल नहीं है, इस तरह का कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ है।
1: महत्वपूर्ण जानकारी शुभमोय जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक श्रोता दिल्ली से हैं लाइन पर, धर्मवीर जी कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
4: मुनीश जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ, हमारे एक्सपर्ट को मेरा नमस्कार। सर मैंने पिछले साल 2025 में 29 सितंबर को एक लगभग 30 लाख की पेमेंट एक सरकारी बैंक से मैच्योर हो गई थी, तो मैं अदर बैंक से प्राइवेट बैंक में जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, तो हमने वहाँ स्किप कर दिया था, पर वो 29 तारीख की बजाय वो हमारे को पेमेंट हमारी 3 या 4 अक्टूबर को वहाँ शो कर रही, तो ये 5 दिन हम परेशान रहे, ऐसे में हम किससे जानकारी लेते, क्योंकि वो कहते हैं कि पेमेंट तो आपकी यहाँ निकल गई है। फिर किसी ने बताया कि ये बीच में इसका एक नेटवर्क होता है जो चेक करता है कि ये फ्रॉड तो नहीं निकाली गई पेमेंट है, ऐसा भी होता है तो अच्छी बात है, पर हम लोग तो आम आदमी तो नहीं समझ पाता कि ये परेशानी हो गई है, तो टेंशन आम आदमी को ज्यादा बढ़ जाती है, इसके बारे में थोड़ा समझाएं और राय दें, धन्यवाद।
1: जी जरूर जरूर
0: धर्मवीर जी, ऐसा है कि जो भी अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप डायरेक्टली पहले बैंक को लिख सकते हैं, और अगर आपकी वहां से बैंक से शिकायत पूरी नहीं हो पा रही, ठीक नहीं हो पा रही, तो ओम्बड्समैन होते हैं बैंक में, आप उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर वहां से भी आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पाता तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन को

0: विषय पर चर्चा। और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभ मोए भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप हमारे एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी टैग Ask AIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम दोस्तों हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। शुभमोय जी, आपसे हम बात कर रहे थे कि AI ने जो भूमिका निभाई है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में से विस्तार देने में, तो उसमें आपने बताया कि किस तरह से जो लैंडिंग सिस्टम है उसमें किस तरह से AI मददगार हुई है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो AI ने संभव कर दिखाई हैं।
1: अभी जो आप प्रश्न ले रहे थे धर्मवीर जी से दिल्ली में
0: जी,
1: और जो सवाल कर रहे थे कि उनके अकाउंट में कोई कार्ड छुपी हुआ है या नहीं, कुछ कुछ कुछ इधर उधर हुआ है नहीं, इसको इस संभावना को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने MuleHunter.AI करके एक बहुत पावरफुल टूल निकाला है
0: जी।
1: और उस टूल का मुख्य उद्देश्य यही है कि बैंकों में कोई ऐसे अकाउंट्स जो साइबर क्राइम को प्रोत्साहन देने के लिए, साइबर क्राइम को मदद करने के लिए खुले गए हों, किसी तरीके से वो उनको ब्लॉक करना। और ये AIML पावर टूल ट्रांजैक्शन पैटर्न को, मतलब जो कि उस अकाउंट से जुड़ा हुआ जिस जो भी फंडिंग तो जा रहा है उसको रियल टाइम में निगरानी करते हैं, उसमें उसके ऊपर अपना रेड फ्लैग इश्यू करते हैं, जो कि साधारण दृष्टि से एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं, एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। बैंकर ट्रेंड होते हुए भी उनके लिए इतना डिटेल देखना इम्पॉसिबल रहता है। और इस चीज को कि किसके अकाउंट का पैसा किस वक्त कहां से अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते वक्त कोई वही न्यू अकाउंट या दूसरे अकाउंट में पहुंच ना जाए या उसके थ्रू से कुछ ट्रांजैक्शन ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, जो एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के थ्रू से, तो ये दोनों ही लोगों के लिए बहुत बड़ा जिसे कहते हैं आयामी
0: चीज
1: संभव होगा।
0: महत्वपूर्ण ये जानकारी है, बड़ी उपलब्धि है AIIC के माध्यम से। और हमारे एक और श्रोता सोलापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमसे, प्रकाश राउत। कहिए प्रकाश जी, क्या है आपकी जिज्ञासा?
2: मेरा यह प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड तो अच्छा है
0: जी,
2: क्रेडिट कार्ड अच्छा होता है, पर कोई कारण से वो उसकी जी किस्त बिल होता है जो बाउंस होगा उसके ज्यादा दंड होते हैं, ज्यादा चार्जेस लगते हैं, उस पर GST बहुत लगता है, इसके रिजर्व बैंक की क्या पॉलिसी होती है, इसके क्या कारण है?
3: प्रकाश जी, ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड में जब भी आपको काफी ग्रेस पीरियड मिलता है तो आपको जो ड्यू डेट है उस तक पूरा पैसा आपको जमा कराना आवश्यक है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो आपको बेटर है कि जो भी आपने क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है पेमेंट की, उस डेट तक आप पूरा पैसा जो है बैंक का जमा कीजिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है और ब्याज भी आपको देना पड़ेगा
0: जी। एक और सवाल हमारे पास आया है हमारे श्रोता मनोज पानसे जी का, और आप पूछ रहे हैं कि बैंकिंग में जो डिजिटाइजेशन आया है और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं हो रही हैं, उससे उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, क्रेडिट पाने के लिए किस प्रकार के उपाय और प्रयास हमें करने होंगे, ये इनका सवाल है।
3: ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, अपने कोई लिंक ना खोलें जो अननोन है या OTP किसी को शेयर ना करें, लेकिन फिर भी अगर फ्रॉड हो गया है तो उसके लिए 1930 एक 1930 साइबर हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अभी रिसेंटली ऐसा भी होने जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है आपको बतानी पड़ेगी कि इमीडिएटली क्रेडिट ना होके जाए, उसमें कुछ टाइम लग के आएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफी कुछ इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम जो है लोगों को इस दुर्घटना से बचाया जा सके, फ्रॉड से बचाया जा सके, लेकिन सावधानी आपको खुद को रखनी बहुत जरूरी है
0: जी।

0: देखिए, अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं इस विषय में वो ये है कि जैसे स्टार्टअप कोई अगर युवा करना चाहते हैं शुरू, तो शुभम मोय जी आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो वो किन दस्तावेजों के साथ तैयार रहें और बैंक से लोन लेने के लिए जब वो जाते हैं इस तरह के किसी उपक्रम के लिए, तो क्या चीजें जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए?
1: ये बहुत अच्छा सवाल है और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि नए उद्यम लेकर जब हमारे युवा पीढ़ी जब जाते हैं प्रोग्राम अपने अपने अपने स्कीम को साकार करने के लिए, सबसे पहले हालांकि बैंक और ने कहा था कि बहुत सारे जैसे मुद्रा स्कीम्स हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उससे भी पहले अपना जो QR कोड है उसके जरिए उनका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड लेकर अगर वो स्टार्टअप इंडिया की जो पॉसिबिलिटीज हो उसके तरफ अगर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सशक्त माध्यम आ गया है जो है UPI। दूसरा, इसी साल RBI और नीति आयोग दोनों ही एक बहुत बड़ा आयाम शुरू किए हैं, वो ये है कि मिशन डिजिटल श्रम सेतु
0: जी, जो जी
1: अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है,
0: महत्वपूर्ण है जानकारी। और शुभमोय जी, दरअसल समय की है थोड़ी सी सीमा, बहुत सुंदर आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और हम अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन और डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा ने हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की। आप दोनों विशेषज्ञों का भी धन्यवाद।
2: धन्यवाद
0: दोस्तों। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आपकी ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम हमेशा उनका इंतजार करते हैं, और आप हमें जरूर लिखिए AIRNSDtalks@gmail.com पर, और इसके साथ ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है आप ही के पत्रों द्वारा भेजी गई फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं, मन भवन कार्यक्रम में आपके पत्रों और आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों के साथ हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो सखी पूजा ठाकुर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर सिर्फ तुम फिल्म का ये गीत। स्वर है अमीन साबरी और जसविंदर नरूला के। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का। और इस गीत की फरमाइश की है हमें कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूराज श्रीमाली ने। मोटक्का माफी जिला खंडवा से सुनना चाहते हैं जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। सनावत से सुनना चाहते हैं हुकुमचंद कटारिया, पिंटू सेन, हरिनिवास खेड़े, दीपक, सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा, विराज, अर्णव एवं काव्यांशी कटारिया। घंटाघर चौक खंडवा से लिख भेजा है हमें संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र

और सनमति पंचोलिया ने। इसी कड़ी में जुड़े हैं औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनंजय, राहुल कुमार धनंजय, विशाल कुमार धनंजय, शीला धनंजय और गायत्री धनंजय। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। नावदाखेड़ी जिला देवास से प्रेम नारायण जाट, संजय जाट, पवन सिंह जाट, माही सार्थक, आदित्य जाट एवं समस्त जाट परिवार। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

कुर्बान। इस फिल्म का गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के स्वर में। बोल हैं समीर के और इस गीत की फरमाइश की है हमें प्रमीलागंज आलोर जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा ने। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतेरी से सुनना चाहते हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक और झावेंद्र कुमार वर्मा। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, मेंडी, सौरभ और शाइना। सुदामा नगर इंदौर से सुनना चाहते हैं अनिल भंडारे, उषा भंडारे, समता और चित्रा भंडारे। सुदामा नगर इंदौर से ही लिख भेजे हमें घनश्याम सिंह, मधु ठाकुर, सपना चौहान, ग्रंथ और शुभम सिंह ने। शिवमपुरी कॉलोनी खंडवा से सुनना चाहते हैं विजय महोविया, कविता, संजय, नंदनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज और भैयू दादा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतेरी से भागवत वर्मा, लवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। इसी कड़ी में जुड़े हैं हमारे साथ जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमरीन, परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर। इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। यादव मोहल्ला से सनावत से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान मालाकार। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जेतक और मिका बिरक। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता एवं समस्त बत्ता परिवार। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

सरगम इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, बोल हैं आनंद बख्शी और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत की फरमाइश की है हमें रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। सपना संगीता रोड इंदौर से सुनना चाहते हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से लिख भेजे हमें कमरुला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान। पोत्रा से मुस्तबा खान और रव भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। मुखर्जी नगर इंदौर से सुनना चाहते हैं जगदीश चौहान, ललिता चौहान, अनु, विशाल, उर्वशी, कुमारी प्रियंका, प्रियांशी, रितिक, लक्की, शौर्य, मुकु, बसंतीबाई, किशनलाल और महेंद्र मालती चौहान। बहरामपुर टेमा से डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, अभिषेक, सीमा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, सुभाष, संतोष, दिनेश, मास्टर समरराज आर्यन, बेबी आरोही, इशिका, अंजलि और श्वेता वर्मा। ओम रेडियो श्रोता संघ से सुनना चाहते हैं ग्राम कोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद, ओमकार और साईं गायकवाड़। सेक्टर माहौली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप और कालका से सुभाष चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गायन रामदेश पांडे का। राग है रागेश्री बहार, तबला संगत है योगेश की और हारमोनियम पर हैं अनंत जोशी।

0: अभी आप सुन रहे थे गायन रामदेश पांडे का, राग था रागेश्री बहार। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। हिंदी में समाचार होंगे जिन्हें दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्कीन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that India-Russia relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia today. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances. Tomorrow, on the final day of his visit to Kyrgyz Republic, Prime Minister Modi will address the 26th summit of Shanghai Cooperation Organization. In Uttar Pradesh, at least 11 people, including 2 children, were killed and 5 others were critically injured in a massive explosion at a firecracker factory in Kaushambi. The firecracker manufacturing unit was reportedly being operated from a house situated in agricultural fields. President Draupadi Murmu has expressed grief over the loss of lives in the accident that occurred in Kaushambi. In a social media post, she conveyed condolences to the families of those who